FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के ठीक 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

आस्था के स्वर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है कविता कृष्णमूर्ति और ए हरिहरन के स्वर में ये

आप सुनिए ये पारंपरिक भक्ति रचना। स्वर अनूप जलोटा और देवयानी का है।

0: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
1: सच है, इसे और सुहाना बना रही है निमाड़ की सुरीली धड़कन।
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।

0: श्रोताओं, यह है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन, आलेख सुरेंद्र कुमार जैन का और निवेदक स्वर है रवि कुमार सोनी।
1: हम सभी ये विचार करें कि हमें आखिर करना क्या है, हमारा हित आखिर किस में है। हम जादू की छड़ी की कल्पना नहीं करें कि जादू की छड़ी घुमाएंगे और हमारी सभी समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। हमारे पास अपनी प्रगति का एक ही उपाय है और वो है पुरुषार्थ। हमें पुरुषार्थ करना है। हमारे पास एक व्यापक दृष्टि है, उस दृष्टि का बाहर ही नहीं बल्कि अपने अंतर में भी प्रक्षेपण करें। हमको ऐसा लगेगा मानो हमने विस्तृत सृष्टि देख ली है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए उपयोगी है। इसमें हमको दुख कम, सुख अधिक नज़र आएंगे। इस सृष्टि के स्वप्न को सच में बदलने के लिए सही शिक्षा, सही विवेक, सही आचरण, सधे कदम, साहस और संतोष की आवश्यकता है। क्या हमारे पास ये गुण हैं? यदि हैं तो इनका उपयोग करें, और नहीं हैं तो इन्हें प्राप्त करने का प्रयास करें। हमारे अपने स्वयं के भी अनुभव हैं जिनसे हमने शायद लाभ ना उठाया हो, लेकिन उठाते तो लाभ में रहते। हम ये मान लेते हैं कि हमारे अंतर में हमारे अनुभवों का जो विस्तृत संसार झलक रहा है, वही हमारे लिए विकास की संभावना के द्वार खोलता है। प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति अपने आप को चतुर मानता है, चपल मानता है, किंतु तभी तक जब तक वो कोई कार्य नहीं करता, किंतु उस मान्यता से काम बनने वाला नहीं है। जब हमको प्रतीत होता है कि हम सक्षम हैं, योग्य हैं, हमारे पास हुनर है, तो प्रश्न ये भी उठेगा कि हमने इस सक्षमता, योग्यता या हुनर का किया क्या है। अतः ज़रूरी है कि जो हमारे पास है उससे कुछ नया उत्पन्न करके दिखाएं। प्यास लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। प्यास लगने से पहले कुआं खोदें ताकि प्यास लगने पर एक क्षण भी पानी से दूर ना रहना पड़े। परीक्षा के लिए घड़ी का इंतजार ना करें, हमेशा ये सोचकर अपनी तैयारी रखें, न जाने कब परीक्षा की घड़ी आ जाए। इस तैयारी के साथ परीक्षा देंगे तो परीक्षा की कसौटी पर सदैव खरे उतरेंगे। इंसान के व्यक्तित्व विकास के मूल में उसकी आशाएँ होती हैं। विकास की धारा इन्हीं आशाओं के केंद्र से निकलती हैं। जिसके पास आशाएं हैं उसके लिए संभावना के द्वार सदैव खुले रहते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी आशाओं, कल्पनाओं का उपयोग करें, जिम्मेदारी को समझें और जो श्रेष्ठतम अपने जीवन में कर सकते हैं उन्हें करने का प्रयास करें। सभी प्राणी आत्महित चाहते हैं, आत्मसम्मान से सिर उठाकर जीना चाहते हैं, किंतु वे अपने आप को कितना जानने का प्रयास करते हैं, कितना अपने आप को सहेजने और बनाने का प्रयास करते हैं। जिन्होंने अपने आप को जाना, सहेजा और बनाया, वे सभी संसार के सफल प्राणी हैं, महान इंसान हैं। संसार में उन्हीं की प्रतिष्ठा है। हम भी चाहें तो इन्हीं की श्रृंखला में एक और हो सकते हैं। हम अपने अंदर विश्वास जगाएं, यह विश्वास हमारा साथ देगा। जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए हम विचलित न हों। जब भी विचलन का अवसर आए हम आत्मसंयम का परिचय दें। आत्मसंयम के बिना न जीवन ठीक से चल सकता है और न जीवन में सहायक कोई गाड़ी। हमारा जीवन अपना जीवन है, उसे कैसे परम प्रसन्नता या संतोष के साथ जिया जा सकता है, ये विचार हमको ही करना है। हम ऐसा कर सकेंगे ये मुझे विश्वास है, ये कोशिश तो करें। दुनिया की हर बुराई पाप की श्रेणी में आती है, भले ही वो हमें आज अच्छी लगे, अतः

0: से छोड़ें, हमें विकट से विकट परिस्थिति में भी शुभता का ध्यान रखना चाहिए। जो अपने जीवन में शुभता का ध्यान नहीं रखता, उसे विपदा से कौन बचा सकता है। अतः शुभ संस्कार, शुभ कामना और शुभ प्रभात की भावना का सदैव स्मरण कर रखें। हमको नित नई ऊर्जा मिलेगी और हम भी गर्व से कह सकेंगे, हाँ मैं इंसान हूँ।
1: ये था आज का चिंतन।

0: सुबह बनारस, शामे अवध और शबे मालवा की तो क्या बात है।
1: लेकिन जब साथ में हो निमाड़ की सुरीली धड़कन, तो यहाँ की सुबह भी किसी से कम नहीं है ना।
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: श्रोताओं, यह है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज।

जनकपुर में अपने चारों पुत्रों के विवाह का शुभ कार्य संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ सभी सगे संबंधियों सहित अयोध्या लौटे। राजकुमारों की बारात की वापसी का समाचार पाकर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भेरी और शहनाई, नगाड़े और ढोल तथा शंख की मंगल ध्वनियां चारों दिशाओं में गूंजने लगीं। प्रसन्नता से झूमते नगर निवासियों ने घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों तथा नगर द्वारों को तोरण और ध्वज पताकाओं से सजाया। घर घर मंगल कलश सजाए गए। अयोध्या का ये सजा संवरा रूप देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं। राजमहल की रचना कामदेव के मन को भी मोहित करने वाली है। सामूहिक उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धारण करके राजा दशरथ के महल में सर्वत्र छा गया है।

अभी श्री रामचरित मानस गान प्रसारित किया गया। गायक स्वर वाणी जयराम और उत्तरा केलकर का, और इस प्रस्तुति के संगीत निदेशक श्री सतीश भाटिया।

0: सुहानी सुबह हो चुकी है और इस सुबह का आनंद लीजिए निमाड़ की सुरीली धड़कन के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
1: और श्रोताओं, आकाशवाणी खंडवा से अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा। कृषि चर्चा में आज का विषय है कपास की उन्नत तकनीक और खेती। वाचक स्वर स्मिता बरोले का।
2: भाई बहन नहुणी राम राम। आज की कृषि चर्चा को विषय छे आधुनिक तकनीक अरु कपास की खेती। वाचक स्वर स्मिता बरोले। भाई बहन नहुणी, खरीफ की फसल में सोयाबीन की तरह कपास भी हमारा यहाँ की मुख्य फसल छे। न बहुत बड़ा क्षेत्र में कपास की खेती की जाए, न कपास की खेती की आधुनिक तकनीक कई छे ई जाना। कपास की खेती का लेना गर्म एवं शुष्क जलवायु अधिक उपयोगी छे। न एका लेना 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। साथ एक ही खेती बस तो कोई सी भी मिट्टी में की जा सकज, पर एका लेना काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाए। साथ लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में भी एक ही खेती की जा सकज। साथ सिंचाई की सुविधा होना पर बलुई दोमट न दोमट मिट्टी में भी एक ही खेती करी सकाज। कपास की खेती का लेना मिट्टी को पीएच मान 5.5 से 6.0 का बीच में होनु चाहिए। अब हम बात कराज खेत की तैयारी के बारे में। खेत ख तैयार करते समय ये बात को ध्यान रखा कि खेत बिल्कुल समतल होनु चाहिए, जेका से मिट्टी की जल धारण क्षमता और जल निकास क्षमता दोनों अच्छा से हुई सके। न खेत की सिंचाई बाद 1 से 2 गहरी जुताई न 3 से 4 हल्की जुताई करी न पाटो लगाई लेवा। उसका बाद कपास की बुआई करा। अब हम बात करें कपास का प्रकार का बारे में। तो कपास का 4 प्रकार हुए। एमा अमेरिकन कपास ये सबसे ज़्यादा उगायो जाए। दूसरो मिश्रित कपास, ये टिकाऊ कपास छे। न तीसरो एशियन कपास, न चौथो छे वन कपास। न कपास की उन्नत किस्म नामा बीटी कपास कीट रोधी किस्म छे। साथ जल्दी पकड़ वाली किस्म भी छे। न हमारा यहाँ खंडवा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की परियोजना छे। हमारे यहाँ कई उन्नत किस्म न भी हो न जेमा रंगीन कपास हमारे यहाँ सबसे पहला लगायो गयो थो। अब हम बात करें सिंचाई।

0: निमाड़की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवानी सुनी लेती है जब तक तमख चैनन नहीं मिलतो है। तो आप भी सुनी लेओ निमाड़की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: श्रोताओं, यह है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। आइए अब हम आपको आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

तो श्रोताओं, आज के शेष कार्यक्रमों में आपसे कुछ ही देर बाद सुबह 7 बजे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा विशेष वार्ता, विश्व ग्रामीण विकास दिवस। इस विषय पर चर्चा की है CEO पुनासा श्री अभिषेक त्रिवेदी ने। सुबह 7:20 पर होगा हमारा साप्ताहिक गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम। निमाड़ी लोक संगीत का आनंद लीजिएगा 8:15 पर। आपकी फरमाइश करेंगे पूरी और सुनवाएंगे आपकी ही पसंद के फिल्म नग में आपके मीती गीत कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर। दिन में 10 बजे जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। सुबह 10:05 पर होगा ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम। इसमें होगी चर्चा, वार्ता, घरेलू नुस्खे, व्यंजन, टिप्स और निमाड़ी लोकगीत। 10:40 पर लुत्फ उठाइएगा सुगम संगीत का। शाम 5:30 होगा हमारा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 6:00 युवावाणी कार्यक्रम में आज का क्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत। फिल्म संगीत शाम 6:30 पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

श्रोताओं, हम आपको जानकारी दे रहे हैं आज के शेष कार्यक्रमों की। तो आज शाम 7:20 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम में होगी कृषि उपयोगी जानकारी, भेंटवार्ता, निमाड़ी लोक संगीत, कृषि समाचार, मौसम की जानकारी और मंडी भाव के साथ होंगे निमाड़ी लोकगीत। रात्रि 9:15 स्पॉटलाइट हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम।

0: 6 लाख रुपए और 2 सफाई मशीन भेंट की। अब जानकारी खेल जगत से। फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अंतिम 16 मुकाबले में फ्रांस ने पराग्वे को 1-0 से हराया। वहीं क्रिकेट में महिला T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से इंग्लैंड को हराया। और अब एक नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। आज भी शहर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल दिन का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये थी आज की ताजा खबरें। खबरों का संकलन किया विद्या मुकेश चौहान ने।
1: आज की ताजा खबर

0: FM 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 7 बजे हैं। 6 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व ग्रामीण विकास दिवस। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। ये केवल एक कथन नहीं बल्कि हमारे देश की वास्तविक पहचान है। आज भी देश की बड़ी आबादी गांव में रहती है और कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग तथा पारंपरिक हस्तशिल्प के माध्यम से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाती है। इसलिए कहा जाता है कि यदि गांव समृद्ध होंगे तो भारत भी समृद्ध होगा। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अब सुनिए विश्व ग्रामीण विकास दिवस पर केंद्रित विशेष वार्ता। वार्ताकार हैं।
1: नमस्कार आदरणीय श्रोताओं, मैं अभिषेक त्रिवेदी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुनासा, जिला खंडवा। आज विश्व ग्रामीण विकास दिवस के अवसर पर अपने सभी ग्रामीण भाइयों बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सुबह की पहली किरण जब खेत की मेड़ों पर बिखरती है, बैलों के गले की घंटियां बजती हैं, पक्षियों का कलरव गूंजता है और किसान अपने कंधे पर हल या आधुनिक कृषि उपकरण लेकर खेतों की ओर जब बढ़ता है, तब यह महसूस होता है कि भारत की असली धड़कन उसके गांवों में बसती है। यही कारण है कि वर्षों से यह कहा जाता रहा है कि भारत की आत्मा यदि कहीं है तो उसके गांव में है। आज विश्व ग्रामीण दिवस हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी देश की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब उसके गांव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़े। शहर देश की आर्थिक गति को तो तेज करते हैं, लेकिन गांव उसी गति को आधार देने का काम करते हैं। खेतों में उगने वाला अन्न, पशुओं से मिलने वाला दूध, फल, सब्जियां और अनेकानेक आवश्यक वस्तुएं आज भी हमारे गांवों से ही आती हैं। ग्रामीण विकास केवल सड़क, पुल और भवनों का निर्माण नहीं है, इसका अर्थ है हर किसान के चेहरे पर मुस्कान, हर बेटी के हाथ में शिक्षा, हर युवा को रोजगार, हर घर तक स्वच्छ पेयजल, हर परिवार तक जब स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचती हैं और आधुनिक सुविधाएं गांवों के हर घर तक पहुंचती हैं, तब ग्रामीण विकास का जो सपना है वो वास्तविक रूप से पूर्ण होता है। आज का गांव पहले जैसा नहीं रहा है। आज डिजिटल तकनीक, मोबाइल इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग, बेहतर सड़कें, बिजली, आधुनिक सिंचाई और वैज्ञानिक खेती ने ग्रामीण जीवन को नई दिशा दी है। किसान मौसम की जानकारी आज मोबाइल पर प्राप्त कर रहे हैं, नई नई कृषि तकनीकों को अपना रहे हैं और अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार तलाश कर रहे हैं। महिलाएं भी पीछे नहीं है, वो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से

आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं, और वहीं ग्रामीण युवा भी उद्यमिता की भावना को अपने अंदर विकसित कर रहे हैं। फिर भी चुनौतियां कम नहीं हैं। कई क्षेत्रों में आज भी पानी की कमी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता, बेरोजगारी, पलायन जैसी कई समस्याएं मौजूद हैं। इन चुनौतियों का समाधान तभी संभव है जब सरकार, समाज और आम नागरिक एक साथ मिलकर कार्य करें। ग्रामीण विकास में जल संरक्षण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जल संकट ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में हर जगह अपना पैर पसार चुका है। ऐसे में वर्षा जल का संचयन, तालाब कुओं का संरक्षण, वृक्षारोपण और जल का विवेकपूर्ण उपयोग विशेषकर खेती और पर्यावरण दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। एक एक बूंद पानी बचाना भविष्य की पीढ़ियों के लिए अमूल्य निवेश है। गांवों की महिलाएं आज विकास की मजबूत साझेदार बन चुकी हैं। वे केवल परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि खेती, डेयरी, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं। उनकी सफलता पूरे समाज को एक नई प्रेरणा देती है। ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण आधार शिक्षा है। आज गांव का हर बच्चा विद्यालय जाएगा, डिजिटल शिक्षा से जुड़ेगा और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, तब वह केवल अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का भविष्य बदलेगा। प्रिय श्रोताओं, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि गांव केवल उत्पादन के केंद्र नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, लोकगीत, लोक कलाओं, मेलों, त्योहारों, परंपराओं की अमूल्य धरोहर भी हैं। यदि गांव सुरक्षित और समृद्ध रहेंगे तो हमारी सांस्कृतिक पहचान भी सुरक्षित रहेगी। हम सभी का एक दायित्व है स्थानीय उत्पादों को अपनाना, किसानों का सम्मान करना, स्वच्छता बनाए रखना, जल संरक्षण करना, पर्यावरण की रक्षा करना और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देना। ये जो छोटे छोटे कदम है ये बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। आइए विश्व ग्रामीण दिवस पर आज हम यह संकल्प लें कि हम अपने गांवों को स्वच्छ, शिक्षित, स्वस्थ, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में अपना योगदान देंगे, क्योंकि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब हर गांव विकास की नई कहानी लिखेगा। अंत में बस इतना ही कि जब गांव मुस्कुराएंगे तब भारत खिल उठेगा, जब किसान समृद्ध होगा तब राष्ट्र समृद्ध होगा, और जब हर ग्रामीण परिवार आत्मनिर्भर बनेगा तभी विकसित भारत का सपना सच होगा। इन्हीं प्रेरणादायी शब्दों के साथ आपसे विदा लेने का समय है। धन्यवाद। नमस्कार।

विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये विशेष वार्ता विश्व ग्रामीण विकास दिवस पर केंद्रित रही ये वार्ता, और वार्ताकार जनपद पंचायत पुनासा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक त्रिवेदी जी।

0: तू है तो
1: हम हो चुके आपके। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा। FM 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रादेशिक

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा आज से शुरू। 40 वर्षों बाद होगी न्यूजीलैंड की पहली द्विपक्षीय यात्रा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में करेंगे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी में रखी अदाणी डिफेंस फैक्ट्री की आधारशिला। रक्षा क्षेत्र में मिलेगी मजबूती। और प्रदेश में मॉनसून की जोरदार बारिश जारी। सागर, दमोह सहित 9 जिलों में आज अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में वे इंडोनेशिया पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर भी जाएंगे। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड में होंगे, जो पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। तीनों देशों में प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल के सतगढ़ी में 173 एकड़ में विकसित होने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। इस परियोजना में 10,000 क्षमता वाला विश्व स्तरीय कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर भी विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम में देश प्रदेश के करीब 200 से अधिक उद्योगपति और निवेशक शामिल होंगे। इस परियोजना से 15,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का

0: अनुमान है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल शिवपुरी जिले के पाली में लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ग्रुप के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
1: मध्यप्रदेश में निवेश का एक नया मार्ग खुला है। ग्वालियर अंचल में हमारा डिफेंस कॉरिडोर का पहला प्रोजेक्ट लगभग 2500 करोड़ से 3000 करोड़ का, जहां मिसाइलें बनेगी, मिसाइल से लगा करके सारे प्रकार के आर्म्स की जो आवश्यकता है वो सारे विकास के साथ साथ यहां पर रोजगार भी मिलेगा। साथ साथ 211 करोड़ के अलग अलग विकास कार्यो का लोकार्पण भूमि पूजन भी यही सम्पन्न हुआ। सब मिला के 4-5 हजार करोड़ के काम यहाँ लगातार प्रारंभ होने की स्थिति में आए हैं।
0: वहीं श्री सिंधिया ने कहा कि यह प्लांट भारत की रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा और हजारों युवाओं को रोजगार देगा। इस मौके पर शिवपुरी जिले के लिए करीब 211 करोड़ रुपए की लागत के 38 विकास कार्यों का ई लोकार्पण और ई भूमि पूजन भी किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत जी राम जी योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने योजना के संचालन के लिए 25,863 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी की। उन्होंने बताया कि मनरेगा से इस योजना में ट्रांजिशन पूरी तरह सहज और सुचारू रहा है, अब तक कोई तकनीकी शिकायत नहीं मिली है। श्री चौहान ने कहा,
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए इसमें 2 हिंदू सदस्यों को भी शामिल किया है। अधिकारियों के अनुसार वक्फ अधिनियम संशोधित 2025 के तहत गठित ये देश का पहला राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड है जिसमें हिंदू सदस्य शामिल किए गए हैं। इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी कर सनवर पटेल को 10 सदस्यीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को हिंदू सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश नया अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेहनत, आधुनिक तकनीक और सामूहिक प्रयास से खेती की तस्वीर कैसे बदल सकती है, इसकी मिसाल खंडवा जिले का जावर गांव बन रहा है। यहां किसान उत्पादक संगठन यानी FPO के माध्यम से उगाया जा रहा खीरा और टमाटर अब दुबई तक निर्यात हो रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं खंडवा से हमारे संवाददाता हीरा लाल लोंगरे।
4: खंडवा जिले के जावर गांव के किसान अश्विन बादल सिंह रावले ने 4 वर्ष पहले मात्र 2 एकड़ में खीरा और टमाटर की खेती शुरू की थी। बेहतर उत्पादन मिलने पर उन्होंने गांव के किसानों को जोड़कर FPO का गठन किया। आज इस संगठन से 160 किसान जुड़े हैं जो करीब 400 एकड़ में टमाटर, खीरा, करेला, लौकी और नींबू जैसी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। इनकी उपज देश के बड़े बाजारों के साथ साथ दुबई तक पहुँच रही है।
5: मैं अश्विन सावले, ग्राम जावर, जिला खंडवा से हूँ। सोलर ड्राई के माध्यम से सब्जियों का मूल्य संवर्धन कर किसानों की आय बढ़ा रहे हैं। किसान संगठित होकर वैज्ञानिक तरीके से खेती करे तो बेहतर आमदनी और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँच सकते हो आप।
4: उद्यानिकी विभाग के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के कारण जावर का FPO आज क्षेत्र के किसानों के लिए एक सफल मॉडल बन चुका है। उद्यानिकी विभाग के उप संचालक श्री अजय चौहान ने बताया कि
6: शासन का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि किसान की आय में वृद्धि हो, इसी तारतम्य में उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषकों को उद्यानिकी की ओर प्रेरित किया जा रहा है। किसान की आय परंपरागत खेती की तुलना में उद्यानिकी फसलों से अधिक प्राप्त होती है।
4: आकाशवाणी समाचार के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे।
0: प्रदेश पुलिस की राज्यव्यापी सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत प्रदेश भर में साइबर जागरूकता गतिविधियां जारी हैं। कल इंदौर पुलिस

मिशनरेट ने 6,000 से अधिक नागरिकों के साथ साइबर जागरूकता मैराथन आयोजित की। भोपाल में आरडी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में करीब 1500 छात्र छात्राओं को डिजिटल अरेस्ट और फिशिंग जैसे साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। वहीं खंडवा, राजगढ़, टीकमगढ़ सहित कई जिलों में स्कूलों, पंचायतों और सरकारी कार्यालयों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल के शौर्य स्मारक में कल अंतर्राष्ट्रीय अनघ मंच द्वारा आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देश मेरे तुम भूल न जाना वन वीरों का बलिदान थीम पर आधारित यह कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई में हजारों आदिवासी क्रांतिकारियों के बलिदान को इस महोत्सव के जरिए याद किया जाएगा। कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कल बैतूल में आयोजित स्कूल बैग विद एजुकेशनल डेस्क वितरण कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। मंत्री उइके ने कहा कि डेस्क युक्त स्कूल बैग बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी और नवाचारपूर्ण पहल है ताकि बच्चे कहीं भी सुविधापूर्वक बैठकर अध्ययन कर सकें। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून जमकर बरस रहा है। अब तक औसत 6.4 इंच पानी गिर चुका है। मौसम विभाग ने आज सागर, दमोह, बैतूल सहित 9 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रतलाम, उज्जैन सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले को वर्ष 2027 तक पूर्ण साक्षर बनाने के लक्ष्य को लेकर डायट कल्याणपुरा में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अमृत 2.0 योजना के तहत सांसद रोडमल नागर ने कल आगरमालवा में पौधरोपण की शुरुआत की। भोपाल शहर के जहांगीराबाद स्थित बापू कॉलोनी से 70 श्रद्धालुओं का एक जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। नर्मदापुरम जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट दामिनी की शुरुआत की है, जिसके तहत जिले के प्रत्येक गांव के घरों तक आकाशीय बिजली से बचाव का संदेश पहुंचाया जाएगा। खंडवा में मॉनसून अवधि के दौरान प्रभावी आपदा प्रबंधन हेतु आज से 12 जुलाई तक 7 दिवसीय सिविल डिफेंस वॉलेंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी में जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव के केशव सभागार में करियर गाइडेंस कार्यशाला का आयोजन किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड पहली बार महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम।

0: गुड मॉर्निंग खंडवा,
1: गुड मॉर्निंग खंडवा। गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम में स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम के आज के अंक के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं विद्या सिंह। आपको हमारा नमस्कार और गुड मॉर्निंग।

जाइए भाई, सुबह हो गई है। ये अंगड़ाई और जमाई लेने का वक्त नहीं। जल्दी जागिए, गर्मा गर्म चाय आपका इंतजार कर रही है।

सुबह जल्दी जागना एक बेहतरीन आदत है जो आपको मानसिक और शारीरिक ताजगी से भर देती है। कभी आपने अल सुबह के अद्भुत माहौल का आनंद लिया है क्या? सुबह सवेरे चलने वाली सररर हवा इतनी शुद्ध होती है कि आपको एक नई स्फूर्ति देती है।

से आती मंदिरों की घंटियां टन टन टन और शंखनाद कितना सुखदाई लगता है, वहीं किसी मस्जिद से आती अजान की आवाज एकदम साफ सुनाई देती है प्रातःकाल में। इस समय जागकर कभी आनंद तो लीजिए, हमें थैंक यू थैंक यू।

दूर से आती मंदिरों की घंटियां, टन टन टन और शंखनाद कितना सुखदाई लगता है। वहीं किसी मस्जिद से आती अजान की आवाज एकदम साफ सुनाई देती है प्रातः काल में। इस समय जागकर कभी आनंद तो लीजिए। हमें थैंक यू।

हाँ, सुबह पत्तियों पर ओस की चमचमाती बूंदे, ताजा ताजा अतखिली कलियां, आपाधापी में इधर उधर चहचहाते पक्षियों का कलरव, मानो अपनी नींद पूरी कर वो भी काम पर निकल रहे हो। सुबह सवेरे घर के आंगन बुहाती स्त्रियां। कहीं हाथ में जल लिए मंदिर जाते भक्तगण, तो कभी सब्जियों के ठेले जोर से चलाते हुए निकलते हमारे सब्जी वाले भैया, कहीं दूध लेने के लिए आपके दरवाजे पर घंटियां बजाते हमारे दूधिया भैया लोग, और वहीं गली के मुहाने से ही आती आवाज पर अपने घर का कचरा लेकर निकलते हम सब आर आवाज क्या आती है।

0: पवित्र सी हवा।
1: सुबह सवेरे स्वच्छता प्रहरी भी चले आते हैं अपनी ड्यूटी निभाने। सच हमारे आस पास का वातावरण साफ सुथरा रखने में कितना योगदान है हमारे इन स्वच्छता मित्रों का। कभी आपने कांधे पर बोरा टांगे, कचरे में अटाला, प्लास्टिक, लोहा बिनने वालों को ध्यान से देखा है? अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ही सही, ये कचरे में से कांच, प्लास्टिक, लोहा, लंगर और वो वस्तुएं इकट्ठा करके ले जाते हैं जो ठोस अपशिष्ट होती है। सोचिए अगर ये ना हो तो शहर में इधर उधर जाने कितने घातक कचरे का जमवाड़ा हो जाएगा। इनकी अहम भूमिका है हमारे जीवन में और हमारे आसपास के कचरे को साफ करने में। हम इन्हें दिल से धन्यवाद करते हैं।

0: स्वच्छता बनाए रखने और कचरे के प्रबंधन के लिए एक अभियान चल रहा है। आपने ध्यान दिया है क्या? सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखने के लिए प्रेरित करने के लिए कचरा वाहनों के साथ एक स्वच्छता मित्र दिया गया है हमें, तो हमने सोचा क्यों ना हम इनसे भी बात कर लें और थोड़ी सी जागरूकता भरी जानकारी आप तक पहुंचा दें। आइए करते हैं बातचीत।
1: सब दीदियों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सुशीला चौहान है और मैं स्वच्छता मिशन में काम कर रही हूँ नगर निगम की ओर से। मैं सुबह 7 बजे डोर टू डोर पे जाती हूँ और वहाँ सबको ये समझाती हूँ, भाई मोहल्ले में जाके बोलती हूँ कि गीला सूखा कचरा अलग दो, दो डब्बे रखो, एक नीला एक हरा, हरे में है तो गीला कचरा देना और नीले में तो सूखा कचरा डालना। तो सभी महिलाएं डालती है, खास तो पॉलीथिन का बोलते हैं कि पॉलीथिन मत वापरो या रखो भी मत, क्योंकि पॉलीथिन से बहुत नुकसान होता है, गाय वगैरह खाती है उनके गले में अटक जाता है। और कचरा हम लेके टीचिंग ग्राउंड पे जाते हैं और वहाँ पे गीला कचरा अलग करते हैं जिसका खाद बनता है, खाद बेचते हैं, हम भी बेचते हैं, वहाँ से ले भी जाते लोग, बहुत सारे लोग ले जाते हैं। इस तरह से हम लोग काम करते हैं और हमारे साथ में जो ड्राइवर वगैरह भी है वो भी बहुत अच्छे हमारे साथ में रहते हैं, वो भी काम करवाते हैं हमारे से, बात अच्छी करते हैं। 50 महिलाएं काम कर रही है स्वच्छता मिशन में, समूह सहायता की ओर से हम लोग काम कर रहे हैं।
0: स्वच्छता मिशन में आप काम कर रही हैं, आपको मोहल्लों में महिलाओं को किस तरह से समझाना होता है और क्या उनमें सुधार आ रहा है?
1: जी हाँ, ये आपने अच्छी बात पूछी कि महिलाएं सुधार ले रही हैं और काम भी अच्छा कर रही है, हम जैसे बताते उनको वैसे वो कर रही है, गीला सूखा कचरा भी अलग दे रही है, हम समझाते से समझ में भी आ जाता है उनको।
0: बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू दीदी।
0: तो श्रोताओं, गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम में हम जोड़ रहे हैं हमारी दीदी को जो स्वच्छता मिशन में सजग प्रहरी की तरह काम कर रही है। सबसे पहले हम जान लेते हैं उनका परिचय।
2: नमस्कार मैडम, मैं अरुणा खरारे खंडवा मध्य प्रदेश से। नगर निगम में ये महिलाओं द्वारा सेग्रीगेशन का कार्य किया जा रहा है, उसके अंतर्गत इनकी प्रभारी अधिकारी हूँ। मैडम हम इनको प्रेरित करते हैं कि गीला सूखा कचरा अलग अलग करें और अपने घरों के आसपास सफाई रखें। हर मोहल्ले में जा जाकर समझाइश देते हैं, जो नहीं समझते हैं या मिक्स कचरा देते हैं तो उनके चालानी कार्रवाई वगैरह भी होती है। इस प्रकार से हम जैसे उनको समझाइश देते हैं दो बार चार बार तो फिर कचरा गीला सूखा अलग अलग रखने लगते हैं। इस प्रकार से हमारा ये सेग्रीगेशन का कार्य चल रहा है।
0: जी, अब ये कचरा जैसे आप वहां से कलेक्ट करते हैं गीला और सूखा, तो इसका प्रबंधन किस तरह से करते हैं, इसका निपटान किस तरह से करते हैं?
2: ये इसका निपटान हमारे ग्राउंड पर ले जाकर जो पॉलीथिन है पॉलीथिन को अलग करके पॉलीथिन से भी जैसे उसको गलाकर ईटे वगैरह बनाई जा रही है हमारे यहाँ पर खंडवा में टेंचिंग ग्राउंड पर। और जो कचरा है गीले कचरे का ढेर अलग करवाते हैं और सूखा कचरा अलग करते हैं, जो कि खाद के लिए बाहर बेचा जाता है, बाहर जाता है तो उसके थ्रू उसका आदान प्रदान होता रहता है।
0: ये स्वच्छता मिशन में इस तरह का कब से काम चल रहा है?
2: ये स्वच्छता मिशन में तो मैडम पहले हमेशा से कार्य कर रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल ये नवम्बर माह से कार्य चल रहा है, जो कि लेडीजों को नियुक्त किया गया है और डोर टू डोर वाहन पर महिलाएं जागरूक होकर ये अभियान चला रही है। सभी महिलाएं सुबह 7 बजे आती है, हर वार्ड में जो भी समस्या रहती है या कुछ परेशानी आती है तो कॉल करके हमें बताती है, फिर हमको जाना पड़ता है, फिर उनको समझाइश देना पड़ता है ऐसा नहीं ऐसा, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमें, कई तरह के लोग मिलते हैं वार्ड में, कई लोग लड़ाई झगड़ा करने पे उतारू होते हैं, उनको भी हमको अच्छे से टैकल करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, महिलाओं को समझाइश देना पड़ता है कि सभी से अच्छा व्यवहार करो, अच्छी बातचीत करो, तो हमें कई जगह से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।
0: ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अच्छा रिस्पांस मिलने लगा है। और अब की स्थिति में और पहले की स्थिति में कितना सुधार आया है?
2: पहले कई लोग जानते नहीं थे गीला कचरा किसको कहते हैं और सूखा किसे कहते हैं, जैसे कि गीले कचरे में फल फ्रूट वगैरह, नारियल पानी और सब्जी के छिलके वगैरह, इस तरह से ये गीला कचरा होता है, और सूखे में पन्नी वगैरह, कागज वगैरह और घर का कचरा जो भी रहता है वो सूखा कहलाता है, ये रिस्पांस मिल रहा है। दूसरा, हमारे नगर निगम ने एक और स्वच्छता के तहत पहल की है, जो कि हमने लार्वा युक्त केमिकल यानी सड़ावा ऑयल जो कि हमने मिक्स करके वेस्ट मटेरियल जो कि वेस्ट कपड़े आते हैं उनके बॉल बनाए, उन्हें रात भर हमने ऑयल और लार्वा युक्त केमिकल में भिगो के रखे और बारिश के जो गड्ढे जगह जगह भरे जा रहे हैं वार्डों में, तो नगर निगम ने एक पहल चालू करी है कि वो गड्ढों में एक एक बॉल डालना है हमको।

0: तो उसके जरिए क्या रहता है कि जो ऑयल ऊपर तैरता रहता है, जिससे कि मच्छर मक्खी वगैरह और गंदगी नहीं होती है, तो हम वो कार्य भी कर रहे हैं।
1: अब आप हमारे जो श्रोता दूर दराज तक सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने घरों के आजू बाजू साफ सफाई रखे, स्वच्छता से रहे, स्वच्छ वातावरण रखे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए। जो भी आपके वार्ड में सेग्रीगेशन वगैरह या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने आते हैं, उनका सम्मान करें, उनसे अच्छे से जानकारी सुने। बस हमारी यही एक छोटी सी पहल है और एक छोटी सी समझाइश है।
1: इतनी बढ़िया बातचीत की आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम में स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। और श्रोताओं, गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम में आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं जिन्होंने शिक्षा, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह व्यक्तित्व है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आइए उनके जीवन के बारे में और अधिक जानते हैं हमारी मेहमान साथी वंदना मिश्रा से।
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, भारत का इतिहास ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने विचारों, साहस और कर्मों से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे ही एक विलक्षण व्यक्तित्व थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वे एक प्रखर शिक्षाविद, कुशल प्रशासक, राष्ट्रभक्त और सिद्धांतों के प्रति अडिग रहने वाले नेता थे। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि यदि लक्ष्य राष्ट्रित हो तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ। उनके पिता का नाम आशुतोष मुखर्जी और माता का नाम जोगमाया देवी था। उनके पिता को बंगाल का बाघ भी कहा जाता था। उनके पिता कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। माता योगमाया देवी धार्मिक और संस्कारवान थी। परिवार का वातावरण शिक्षा, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम से ओतपोत था। यही संस्कार आगे चलकर डॉक्टर मुखर्जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बनी। उन्होंने कम उम्र में ही अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे कानून के क्षेत्र से जुड़े और शीघ्र ही शिक्षा जगत में भी अपनी विशिष्ट पहचान बना ली। सन 1934 में मात्र 33 वर्ष की आयु में वे सबसे युवा कुलपति बने। यह उपलब्धि उस समय पूरे देश के लिए गौरव का विषय थी। उन्होंने

शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं माना, बल्कि चरित्र निर्माण, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व का आधार माना। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय देश अनेक चुनौतियों से जूझ रहा था। डॉक्टर मुखर्जी ने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। स्वतंत्रता के बाद वे देश की पहली केंद्रीय मंत्री परिषद में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने। उन्होंने औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की। उनका मानना था कि आर्थिक प्रगति ही राष्ट्र को सशक्त बना सकती है, किंतु जब कुछ राष्ट्रीय नीतियों पर उनके मतभेद सामने आए तो उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय मंत्री पद से इस्तीफा देना ही उचित समझा। यह उनके नैतिक साहस और सिद्धांत निष्ठा का उदाहरण था। इसके बाद उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। वे हिंदू महासभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य और संविधान सभा के सदस्य भी थे। उनका उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए एक वैकल्पिक राजनीतिक विचारधारा प्रस्तुत करना था। उनके भाषणों में राष्ट्रप्रेम, सांस्कृतिक चेतना और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्पष्ट झलक दिखाई देती थी। डॉक्टर मुखर्जी का नाम विशेष रूप से जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों के संदर्भ में भी याद किया जाता है। वे पूरे देश में समान अधिकारों और राष्ट्रीय एकता के समर्थक थे। उनका प्रसिद्ध नारा एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे आज भी व्यापक रूप से उद्धत किया जाता है। यह उनके राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रतीक माना जाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का व्यक्तित्व केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, वे एक विद्वान लेखक, उत्कृष्ट वक्ता और संवेदनशील विचारक भी थे। उनका मानना था कि राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके जागरूक नागरिकों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुदृढ़ लोकतांत्रिक संस्थाओं में निहित होती है। आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो हमें अनेक प्रेरणाएं मिलती हैं। शिक्षा का महत्व, सिद्धांतों के प्रति निष्ठा, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान और कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना। उनके जीवन से यह संदेश भी मिलता है कि महानता केवल बड़े पदों से नहीं बल्कि बड़े विचारों और निस्वार्थ कर्मों से प्राप्त होती है। आइए हम सब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से प्रेरणा लें और अपने दायित्वों का निर्वाह ईमानदारी से करते हुए एक सशक्त, समृद्ध और एकजुट भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

हमारे क्षेत्र में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। ऐसे में हमने देखा है हमारे बहुत सारे साथी रोड पर घूमने निकल जाते हैं, यहाँ तक कि दूर तक लॉन्ग ड्राइव पर भी निकलते हैं बारिश का आनंद लेने के लिए, और कहीं कहीं पर तालाब, सरोवर या बहते हुए झरनों के पास सेल्फी भी ले लेते हैं। भाई आज का जो दौर है ना, उसमें सेल्फी केवल एक तस्वीर ही नहीं बल्कि हमारे यादों को संजोने का एक लोकप्रिय माध्यम बन गई है।

किसी नई जगह की सैर हो, दोस्तों के साथ खुशी के पल हो या कोई खास अवसर, सेल्फी लेना अब हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या एक अच्छी सेल्फी की चाह कभी कभी हमारी सुरक्षा से बड़ी हो जाती है? नहीं ना भाई, हर साल ऐसी घटनाएं सामने आती है जहां केवल एक परफेक्ट सेल्फी लेने की कोशिश में लोगों ने अपनी जान तक गवा दी है। ये बेहद दुखद है कि कुछ सेकंड की लापरवाही जीवन भर का पछतावा बन जाती है। सेल्फी लेते समय

0: सबसे पहले अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे। कहां कहां सेल्फी लेना खतरनाक है, इस विषय में और जानने के लिए हमने आज गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम में शामिल किया है हमारी इन साथी को।
1: एक तस्वीर की खुशी लेकिन जिंदगी से बड़ी नहीं। नमस्कार साथियों, मेरे पति अरोरा। आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी सेल्फी न ली हो, किसी खूबसूरत जगह पर पहुंचे नहीं कि मोबाइल हाथ में और कैमरा ऑन, दोस्तों के साथ हो, परिवार के साथ हो या अकेले। एक क्लिक में उस पल को हमेशा के लिए यादगार बनाने की चाह हर किसी में होती है। सेल्फी आज केवल एक तस्वीर नहीं रही बल्कि हमारी यादों, भावनाओं, सोशल मीडिया पर हमारी पहचान का हिस्सा बन गई है। लेकिन एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या एक सेल्फी हमारी जिंदगी से ज़्यादा कीमती है? दुर्भाग्य से इसका जवाब हमें आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से मिलता है। सिर्फ एक बेहतरीन तस्वीर लेने की कोशिश में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कहीं पहाड़ की चोटी पर से गिरने की घटना, कहीं नदी या झरने में बह जाने की खबर, तो कहीं चलती ट्रेन या सड़क पर हादसा। ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक पल की लापरवाही जीवन भर का दुख बन सकती है। आज हम बात करेंगे कि सेल्फी लेते समय किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली और महत्वपूर्ण बात, कभी भी खतरनाक जगह पर सेल्फी न लें। पहाड़ की ऊंची चट्टान, नदी का तेज बहाव, झरने का किनारा, समुद्र की ऊंची लहरें, रेल की पटरियां या ऊंची इमारतों की छतें, ये जगह देखने में आकर्षक जरूर लगती है लेकिन जरा सी चूक जानलेवा हो सकती है। दूसरी बात, चलते वाहन में सेल्फी लेना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। चाहे बाइक हो, कार हो या ट्रेन, चलते वाहन में ध्यान कैमरे की तरफ रहता है और खतरा सामने से आता है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न केवल आपकी बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डाल सकता है। तीसरी सावधानी, सड़क पर सेल्फी लेते समय ट्रैफिक का पूरा ध्यान रखें। कई लोग बीच सड़क पर या चौराहे पर खड़े होकर फोटो लेते हैं, कुछ सेकंड की ये लापरवाही बड़ी दुर्घटना बन सकती है। चौथी बात, प्राकृतिक स्थानों पर चेतावनी बोर्डों का सम्मान करें। यदि किसी स्थान पर नो सेल्फी जोन, खतरा, आगे जाना मना है जैसे बोर्ड लगे हों तो उनका पालन अवश्य करें। ये बोर्ड आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाए जाते हैं। पांचवी बात, बिजली के खंभों, हाई टेंशन लाइनों या रेलवे ट्रैक के आसपास सेल्फी लेने से बचें। कई बार लोग रोमांच में ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं लेकिन बिजली का करंट या ट्रेन की रफ्तार किसी को मौका नहीं देती। साथियों, सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट्स पाने की होड़ में भी कई लोग जोखिम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। याद रखिए, लाइक्स 2 मिनट की खुशी दे सकते हैं लेकिन परिवार का साथ पूरी जिंदगी की खुशी देता है। यदि आप बच्चों, किशोरों के साथ हो तो उन्हें भी सुरक्षित सेल्फी लेने की आदत सिखाइए। माता पिता और शिक्षक को समय समय पर इस विषय पर चर्चा अवश्य करनी चाहिए। बच्चों को समझाइए कि बहादुरी का मतलब खतरा मोल लेना नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना है। यात्रा के दौरान भी सेल्फी लेते समय अपने आसपास के वातावरण पर नजर रखें। किसी भी वन्य जीव के करीब जाकर फोटो लेने की कोशिश न करें। जानवर कब आक्रामक हो जाए इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। रात के समय सुनसान स्थानों पर भी सेल्फी लेने से बचें। ऐसे स्थानों पर सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि समूह में सेल्फी ले रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि सभी लोग सुरक्षित स्थान पर खड़े हो, किसी को भी पीछे हटने या किनारे पर जाने पर मजबूर न करें। याद रखिए, सेल्फी तभी सुंदर है जब आप सुरक्षित हो। एक अच्छी तस्वीर फिर से ली जा सकती है लेकिन खोई हुई जिंदगी कभी वापस नहीं आती। आइए आज हम सभी एक छोटा सा संकल्प लें, मैं कभी भी खतरनाक जगह पर सेल्फी नहीं लूंगी और न ही किसी दूसरे को ऐसा करने के लिए प्रेरित करूंगी। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, तस्वीरें यादें संजोती है लेकिन जिंदगी उन यादों को जीने का अवसर देती है। इसलिए हमेशा सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, समझदारी से सेल्फी लें। बहुत बहुत धन्यवाद।

और श्रोताओं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम में आज शामिल करेंगे। जिला चिकित्सालय में ओपीडी पर्ची बनवाने के लिए अब आपको लंबी

0: और श्रोताओं, आज है 6 जुलाई और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे और हमारे परिवार की सेहत से सीधे जुड़ा है। जूनोसिस बीमारियां, ये वे बीमारियां हैं जो पशुओं या पक्षियों से मनुष्यों में फैल सकती है। इसके फैलने का कारण वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या फफूंद हो सकता है। जूनोसिस बीमारियां क्या है, इस विषय में हम जानते हैं डॉक्टर साहब से।
1: आकाशवाणी खंडवा के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेश शर्मा, जिला महामारी विशेषज्ञ, जिला खंडवा। 6 जुलाई को हम विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाते हैं। जूनोसिस मतलब जानवरों से इंसानों में होने वाली बीमारियां, जिन्हें हम जूनोटिक डिसीजेस कहते हैं। 6 जुलाई को जूनोसिस दिवस मनाने का मुख्य कारण है, 6 जुलाई 1885 को फ्रेंच साइंटिस्ट लुई पाश्चर द्वारा रेबीज का पहला टीका एक बच्चे को सफलतापूर्वक लगाया गया था। इसी कारण से 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में जितने भी संक्रामक रोग हैं, उसका लगभग 60% जूनोटिक डिसीजेस से आता है, यानी कि वर्तमान में जो संक्रामक बीमारियां इंसानों में हो रही हैं, उसमें से 60% के करीब जानवरों से इंसानों में आई हुई बीमारियां हैं। इसके अतिरिक्त जो इमर्जिंग पैथोजेंस हैं, उसमें 75% के करीब जूनोटिक डिसीजेस वर्तमान में आती हैं। हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है यदि हम बीमार जानवरों के संपर्क में आ रहे हैं अथवा हम लोगों ने पालतू जानवर अपने घरों में पाल के रखे हुए हैं, तो यदि हम जानवरों को टच कर रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, उन्हें खाना दे रहे हैं या उनको नहलाना धुलाना कर रहे हैं, उनकी टेक केयर कर रहे हैं, तो उसके पश्चात हमें अपने हाथों को साबुन पानी से अच्छे तरीके से धोना है। नंबर 2, पालतू जानवरों को हमें उनकी हाइजीन का विशेष ध्यान रखना है, उन्हें साफ सुथरा रखना है। इसके अलावा जानवरों का जो टीकाकरण है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के द्वारा, समय समय पर उनका टीकाकरण करवाया जाना आवश्यक है, जिससे जानवर बीमारी से बचे रहेंगे और उनसे होने वाली बीमारियां हमें न होंगी। साथियों, जो जूनोटिक डिसीजेस हैं, मैं मुख्य रूप से उसमें आपको बताना चाहूँगा रेबीज, इबोला, क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर, निपा, हंता वायरस, मंकी पॉक्स, लिशमैनियासिस आदि प्रमुख बीमारियां हैं जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। रेबीज रोग ऐसा घातक या जानलेवा बीमारी है, यदि ये एक बार हो जाता है तो फिर इसका कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। इसलिए कुत्ता, बिल्ली, बंदर या और कोई जंगली जानवर यदि हमें काटता है तो हमें तुरंत नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाना है और वहाँ पे कैटेगरी के अनुसार रेबीज का उपचार मुफ्त में उपलब्ध है। ये हमारे सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक निशुल्क लगाया जाता है। रेबीज के लिए मुख्य रूप से ARV और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिनकी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक सुनिश्चित की गई है। धन्यवाद।

तो ये था आज का गुड मॉर्निंग खंडवा कार्यक्रम। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा अपने ईमेल्स, खतों, चिट्ठियों, पातियों के माध्यम से। हम इंतजार करेंगे। फिलहाल विद्या सिंह को इजाजत दें। नमस्कार।

FM 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजे हैं समाचार प्रभात, बस कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्य

0: कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
4: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि नए साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
5: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्यागपत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद

0: मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
2: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारी

0: की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों की यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी FM 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं।
3: FM 101.2 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का खंडवा केंद्र। सजन रेडियो।
4: जी हाँ साथियों, तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन
3: आकाशवाणी खंडवा।
2: और श्रोताओं, निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से अब प्रस्तुत है निमाड़ी लोक संगीत। तो निमाड़ी लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे धर्मेंद्र सरमंडल और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। आरंभ कर रहे हैं गुरुवंदना से।

0: अरे वाह, आइए आइए आइए, आप सभी का स्वागत है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा में एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
2: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
1: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
2: क्यों?
1: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
2: वो कैसे?
1: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
2: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
1: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
2: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
1: आप कब आ रहे हैं
2: आकाशवाणी खंडवा पर?

सुरीला संगीतमय सफर कारवां इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।

संगीत और निमाड़ी लोक संगीत में आज के कलाकार हैं धर्मेंद्र सरमंडल और साथी। सुनिए इनका गाया वर्षा गीत।

आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से आप सुन रहे थे निमाड़ी लोक संगीत। निमाड़ी लोक संगीत में आज धर्मेंद्र सरमंडल और साथियों के गाए लोकगीत आपने सुने। ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। दिल से दिल तक पहुंचती आवाज आकाशवाणी खंडवा की।

0: है तो
1: हम हो चुके आपके। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा। श्रोताओं, सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है आपके मीतिये गीत कार्यक्रम।
2: आपके मीत ये गीत।
1: आपके मीत ये गीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम के साथ आज मैं हूँ विद्या सिंह। तो एक बार फिर आप सभी को हमारा नमस्कार। और अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुछ शानदार गीतों से। आपको बता दें कि आज है हमारी फिल्मी दुनिया की सबसे एनर्जेटिक कहे जाए ऐसे अभिनेता जो जन्मे थे 6 जुलाई 1985 को मुंबई में, वो अभिनेता हैं रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह का आज है जन्मदिन, तो सारे ही गीत हम उन पर केंद्रित सुनवाएंगे आपको। पहले थोड़ी बातें कर ले।

कहते हैं उनके बारे में, ये हिंदी सिनेमा का जो सबसे ऊर्जावान, बेहतरीन और बहुमुखी कलाकारों में इनका नाम आता है। अपनी दमदार अदाकारी, अनोखे फैशन, जोशीले व्यक्तित्व और हर किरदार में पूरी तरह से ढल जाने की कला के कारण रणवीर सिंह ने बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है श्रोताओं। तो उनकी ही फिल्मों से लिए गए कुछ गीत हम सुनवाएंगे। पहले बता दें कि पसंदकर्ता कौन है हमारे साथ। ग्राम नाईवाला, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलिका मिठा, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन रिकस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस ठाकुर, राजन सिंह भदौरिया, श्रीमती ज्योति भदौरिया, उदयराज सिंह भदौरिया, अश्विनराज सिंह भदौरिया और इनके परिवार के सदस्य भी पसंद करते हैं रणवीर सिंह को। और मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनवाज, नवेद हसन, सुहेल रसीद वारसी, अनाम यशप अब्बासी, ग्राम जाखो से हैं शमुदाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा, मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी और ऋतिक बलवीर भी है। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, गुजरात गांधी धाम से है प्रवीण सोनी, पूजा सोनी, पायल और जगदीश, बस्तर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, आसमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर वलीउल्ला अंसारी, सोनम अदीबा, दानिश सलीमपुर बक्सर से एसडी अंसारी, असलम अंसारी, गोलबाजार बक्सर से ही है श्रद्धानंद आर्य और अभ्यानंद आर्य, घंटाघर चौक खंडवा से है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया, सेक्टर आय 8 बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से है श्याम कुंवर परिवार के सभी सदस्य, तो इसमें है अशोक, प्रमिला, आसमा, दीपक, अनुश्री और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, अरुणा वर्मा। तो सबसे पहले हम सुन लेते हैं रणवीर सिंह अभिनीत लगभग पहली फिल्म का गीत जो हमने लिया है बैंड बाजा और बारात फिल्म से। इस गीत को संगीत से सवारा सलीम सुलेमान ने, गायक स्वर स्वयं सलीम मर्चेंट का है और इनका साथ दिया है सुनिधि चौहान ने, शब्दकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य।

श्रोताओं, आपके मीते गीत कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं एक एनर्जेटिक अभिनेता रणवीर सिंह की। आपको बता दें कि वो सबसे पहले विज्ञापन एजेंसी में काम कर रहे थे, लेकिन उनका सपना तो फिल्मों में अभिनय करने का था। कई ऑडिशंस और संघर्ष के बाद उन्हें पहला बड़ा अवसर मिला और रणवीर सिंह ने अपनी पहली ही फिल्म बैंड बाजा बारह से साबित कर दिया कि वे एक लंबी पारी खेलने आए हैं। इस फिल्म में उनकी स्वाभाविक अदाकारी ने दर्शकों को खूब मोहा है।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अरे हो गोरिया कहाँ तेरा देश रे, गोरिया कहाँ तेरा देश।
6: जी हाँ, गोरिया के देश पहुंचेगा इस बुधवार एक ही फिल्म से कार्यक्रम का कारवां।

0: सुरीला संगीतमय सफर कारवां इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।
1: सो योर प्लेस और माइन।
2: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
1: कॉन्डम? लेकिन हम तो
2: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
1: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
3: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

अरे जनाब, गिले शिकवे छोड़िए और मजा लीजिए आकाशवाणी खंडवा के शानदार प्रसारण का। साथ ही अपने पसंदीदा गाने सुनने के लिए हमें मेल कीजिए। मेल एड्रेस तो आप सभी जानते ही हैं। आपका मेल हमें मिलेगा और हम आपका पसंदीदा गाना सुनवाएंगे, तभी तो हम कहेंगे।

आपके मिति गीत कार्यक्रम में स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। और हम आपको बता दें कि आज हम आपको सुनवा रहे हैं अभिनेता रणवीर सिंह पर केंद्रित कुछ फिल्मी नगमे। पसंद है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड की श्रीमती नंदा हनुमान और उत्तम जमदाड़े, कासिम कॉलोनी मसनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रिस खत्री, नूर मीना, इरफान मीना, कासिम मीना और दत्रेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखिलाल वर्मा। बड़ाबम चौक खंडवा से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बीबी किट्टू। शिव कोठी ज्योतिलिंग ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, श्रीमती निशा सपना, ओम सेन, द्वारकीबाई सेन, इंदौर लिंबोदी से गिरधारी लाल चौधरी, मनीषा भाई चौधरी, दगड़ूजी सेन, धर्मेंद्र जी सेन, राम सेन, कलाबाई, सावित्री, निशा, आयुष, दीपांशु, आरुषि और लक्षिता, ये सब है खंगवाड़ा ग्राम के। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जय नारायण, तरुण चौहान और प्रतीक। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजभिये, राजकी का, बेबी अनिष्का और तन्मय। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना ताई, प्रणय, प्रसिद्धि और हीरामन शेंडे। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति और सावित्री देवी पिता प्रतीक कुमार। झिरनिया रतनपुर से जितेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह और सचिन, प्रीति, भावना, अंतिम, पलक, श्रुति, यशराज सिंह, दिव्या सिंह और बेबी किट्टू। परी और सावी भी हैं इनके साथ। जेल रोड दिल्ली से है लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, उमारा और इनके साथ ही। महनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवहानकर, सरिता गवहानकर, प्रणीता, अर्जुन और टुक टुक प्रिंस, एकांश और इनके गवहानकर परिवार के सभी सदस्य। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, सौभाग्यवती, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल, निवृत्ति और शिरसागर। पद्मा टॉकी नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी, फाल्गुनी जोशी। मजनुआ के टिल्ला से है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिंग, आकांक्षा मलिक। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सुहेल हसन और रसीद वारसी, अनम और यशप अब्बासी। और सुनते हैं ये गीत। श्रोता, हम आपको बता दें कि रणवीर सिंह की सबसे बड़ी खूबी है कि वे हर किरदार में पूरी तरह से ढल जाते हैं, चाहे रोमांस हो, कॉमेडी हो, ऐतिहासिक चरित्र हो या कोई भी भूमिका है। जैसे लेडीज़ वर्सेस लिकी बहल में उन्होंने कई लेडीज़ को ठगा था। सलीम सुलेमान ने इस फिल्म में संगीत दिया, विशाल ददलानी और श्वेता पंडित ने आवाज़ दी है इस गीत को जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, और फिर से अमिताभ भट्टाचार्य का रचा गीत है।

0: भाई खंडवा वाले हमेशा इतने खुश क्यों रहते हैं?
1: खंडवा वाले इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि वो सुनते हैं
2: निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
3: समझे?
4: श्रोताओं, रणबीर सिंह ने कई ऐतिहासिक भूमिकाएं की है और उनमें बाजीराव मस्तानी में उनका जो पेशवा बाजीराव की भूमिका थी वो बहुत ही उम्दा, उन्होंने अपना अभिनय से सबका दिल जीता है और इस अभिनय ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। उनकी संवाद अदायगी और व्यक्तित्व आज भी दर्शकों को याद है। हमने तो ऐसा लगा कि शायद बाजीराव कुछ ऐसे ही होंगे। तो सुन लेते हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गीत।

कुछ फरमाइश आपने जो लिख भेजी है, धर्मपुरी से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर, अयान और फैज़ान, ग्राम महसवाड़ी, तहसील मरकापुर, महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी, स्वप्निल, अस्पताल रोड सागर से है चंद्रेश गोहर, वंदना गोहर, मयंक, तनवी और जयपाल यादव, संभाजी नगर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से सुषमा बोरागांवकर, प्रकाश बोरगांवकर, प्रांजलि सोहम, सदानंद विरास विटी और अंशुमान बेबी ओवी, सौराष्ट्र राजकोट से जुड़ी जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, नारगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण गोस्वामी, जोगेशपुरी और ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी।

तो श्रोताओं, बाजीराव मस्तानी फिल्म के बाद उनकी फिल्म आई पद्मावत, और पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका उन्होंने क्या गजब की निभाई है कि दर्शकों को उनका अभिनय बहुत भाया, और उन्होंने एक भी कोई ऐसा दर्शक नहीं होगा जिन्होंने खली बली फिल्म के गीत को, उस फिल्म के गीत को सराहा नहीं और उनकी तारीफ़ नहीं की हो। तो खली बली गीत हम आपको सुनवाएंगे। पहले बता देते हैं कि पसंद करने वाले श्रोता कौन हैं। कुड़ी सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान और इनका परिवार, मोटका माफी जिला खंडवासी किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति शुभम, देवी किशन, भावना मनमाना, सौर कनिका, राज पैलेस, मौनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक, आर्यन, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना, एयरपोर्ट रोड बंदरनगर से इंदौर के हैं ये, नारायण खर्चे, लेता खर्चे।

गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देविका चौधरी और मालती चौधरी कुम्हार गली कोलगांव से है। पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश चंदन और पांडुरंग कुम्हार। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, ऐशु वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुडाना, आदलपुरा गोवा से संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा। जिला मुरादाबाद दुल्हापुर के मोहम्मद फरमान और सलमान। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा और परिधि के साथ है मायरा। तो खली बली गीत हम आपको सुनवाते हैं पद्मावत फिल्म से। साथियों, शिवम पाठक ने इस फिल्म में अपनी आवाज़ दी है इस गीत को। AM तुराज ने इस गीत को रचा है और संगीत दिया संजय लीला भंसाली ने।

श्रोताओ, रणवीर सिंह अपनी ऊर्जा, हजे जवाबी और सकारात्मक सोच के लिए भी जाने जाते हैं। मंच हो, कैमरा हो, वे हर जगह उत्साह का माहौल बना देते हैं। आज सिर्फ रणवीर सिंह एक अभिनेता नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास की प्रेरणा भी हैं। आज उनके जन्मदिवस पर हम उन्हें बधाई देते हैं और उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं, और ये भी कहते हैं कि ऐसी ऊर्जावान, रंग बिरंगे कपड़े पहने आप हम सभी का मनोरंजन करते रहिए। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, एक और गीत सुनवा देते हैं आप सभी को। तो ये है जामनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक स्वाति गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, ये भी श्रोता हैं जो गीत को सुनना चाहते हैं। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला विशाल मलकापुर से नारायण इंगले, मंगला इंगले और आशीष मुहर्रेकर, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी।

मधु, आशी और शिवन्या बोरखेड़ा पित्रामा जिला उज्जैन से, विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मुणत, चेतन नाहटा और दीक्षा मुणत, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार हेपी राय, दुबिहा नेवदा गाजीपुर से है प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम कुम्हारेड़ा छाहनपुर के हैं, वडिंग चरा पंजाब से विंटू थॉमस, पंकी लवली, जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई, धनुरी तेलीवाला से निसार सलमानी और महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी और इनका परिवार। सिम्हा फिल्म का ये गीत सुनवाने के लिए आप सभी ने कहा था, नेहा कक्कड़, मिक्का सिंह, कुमार सानू की आवाजें हैं, तनिष्क बागची का संगीत है और

और आपको एक और फरमाइश हम बता दें, ये सनावत के हमारे श्रोता हैं हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हनीवास खेड़े, दीपक, सचिन और श्रीमती प्रभा कटारिया।

0: और श्रोताओं, सिम्हा फिल्म के इस गीत के साथ ही समेटते हैं आज का आपके मिति गीत कार्यक्रम। हम यहीं पर आज्ञा दें विद्या सिंह को, नमस्कार।
1: आपके मीत ये गीत।
0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी नगमे आपके मीत ये गीत कार्यक्रम में एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अब हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर स्वागत आप सभी का। ये है राजनीति फिल्म का गीत। मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाजें। प्रीतम का संगीत, इरशाद कामिल ने बोल लिखे।

0: राजनीति फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहित चौहान और अंतरा मित्रा की आवाजें थी, इरशाद कामिल के बोल थे, प्रीतम का संगीत था।
1: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
2: जब पेशेंट आता है एकदम से, तो उसको लैप्रोस्कोपी, IVF या IUI हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, टेट्रोजोल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
1: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आज 6 जुलाई है, आज वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जा रहा है। हर वर्ष ये 6 जुलाई को मनाया जाता है। इसे मनाने का ये उद्देश्य उन बीमारियों के प्रति लोगों को सचेत करना जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। इस दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि 6 जुलाई को लुई पाश्चर ने रेबीज के टीकेकरण का पहला सफल प्रयोग किया था। जूनोटिक रोगों के उदाहरण हैं रेबीज, बर्ड फ्लू, कोविड 19 और आदि आदि बीमारियां, जिसकी उत्पत्ति को लेकर अभी भी वैज्ञानिक का अध्ययन जारी है। इससे बचाव के उपाय हैं पालतू पशुओं का समय समय पर टीकाकरण, सुरक्षित भोजन और बीमार पशुओं की तुरंत जांच कराना। विश्व जूनोसिस दिवस हमें ये याद दिलाता है कि पशुओं से फैलने वाले रोगों से हम बचे रहें, स्वच्छता का पूरा ध्यान दें, समय समय पर टीकाकरण बेहद ज़रूरी है, और सचेत रहें हमेशा।

बॉर्डर टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाजें दिलजीत दोसांझ, परंपरा टंडन, सचेत टंडन की आवाजों में ये गीत आपने सुना। कौसर मुनीर ने इस गीत को लिखा था और सचेत टंडन, परंपरा टंडन ने मिलकर संगीत तैयार किया था। चित्रलोक कार्यक्रम आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आपको गीत सुनवाएंगे।

सब कुशल मंगल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सोनू कक्कर और वंदना सक्सेना की आवाजें थी। समीर अंजान ने इस गीत को लिखा था। साथियों, हरे भरे लहलहाते पेड़ पौधे, सुंदर बहती पुरवैया, ये सभी कितने सुंदर लगते हैं ना। और इन पेड़ पौधों की छाँव में बैठने और इन्हें निहारने में बड़ा अच्छा लगता है। बैठकर देखिए साथियों, इन दिनों 1 से 7 तारीख तक वन महोत्सव मनाया जा रहा है। वन महोत्सव सप्ताह हमें प्रकृति के प्रति अपने जिम्मेदारी का एहसास कराता है। और इस वर्ष केवल पौधा ही न लगाएं, बल्कि उसके संरक्षण का भी संकल्प लें, यानी उनके देखभाल के, उन्हें सींचना, उन्हें संवारना, उन्हें निहारना, सब कुछ करते रहिए। एक पेड़ स्वच्छ हवा, शीतल छाया और आने वाली पीढ़ियों का सुरक्षित भविष्य है। तो आइए हरियाली बढ़ाएं और धरती को मुस्कुराने का अवसर प्रदान करें।

लापता लेडीज फिल्म का ये गीत आपको श्रेया घोषाल की आवाज में सुनवा रहे हैं। स्वानंद किरकिरे गीतकार हैं और राम संपत संगीतकार।

धीमे धीमे चले पुरवैया लापता लेडीज फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ों में सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे ने इस गीत को लिखा था और राम संपत ने इस गीत को संगीत से संवारा था।

एनिमी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें ऐश्वर्या कुमार, दर्शना मेनन और रीना गिलबर्ट और यशिका सिक्का की थी। अब इसी गीत के साथ ही सविता सिंह को आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप सकुशल स्वस्थ और सानंद रहिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: परीक्षित साहनी के नाम से दोस्तों यूं तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिल्मों में प्रवेश के समय उनका फिल्मी नाम था अजय साहनी। परीक्षित से अजय बनने की कहानी आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: जब मैं अनोखी रात में काम कर रहा था तो संजीव ने कहा, यार मेरा नाम दरअसल है हरी भाई जरीवाला, और अगर मैं अपना नाम हरी भाई जरीवाला दूं स्क्रीन पे तो मैं दो दिन नहीं चलूंगा। अगर तू ये नाम देगा तो तू नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोई प्रोनाउंस नहीं कर सकता। बंगाली में परीक्षित कहते हैं, पंजाबी में कुछ परीक्षित कहते हैं, यहाँ पे हिंदी वाले परीक्षित कहते हैं। ये नाम बड़ा मुश्किल है, और मैं सच सच आज कह रहा हूँ आपको, मैं अपने आप को बड़ा बदकिस्मत समझता हूँ कि मुझे पिताजी ने ये नाम दिया। ये नाम दरअसल दिया टैगोर साहब ने। टैगोर साहब वहाँ पे बैठे अपना क्या नाम है शांति निकेतन में, जब मेरी माताजी के गर्भ में था मैं, जब वो गर्भवती थी, जब मैं उनकी कोख में था, तो वो इम्तिहान दे रही थी बीए का, वही शांति निकेतन में। मेरे पिताजी और माताजी वहाँ काम किया करते थे एज प्रोफेसर, तो वो बीए का इम्तिहान दे रही थी। तो गुरुदेव टैगोर ने कहा, अभी ये इसके पेट में जो बच्चा है उसने भी दे दिया बीए का इम्तिहान, इसका नाम परीक्षित रखना अगर लड़का होगा तो।
0: अभिनेता संजीव कुमार ने परीक्षित को अपना मनपसंद नाम दिया अजय साहनी। उनकी शुरुआती कई फिल्मों में उनका यही नाम था अजय साहनी।
1: और उसके बाद फिल्म हिट हो गई तो पवित्र पापी हिट हो गई, फिर उसके बाद वो हिट हो गई क्या नाम है समाज को बदल डालो, फिर बस अजय साहनी शुरू हो गया। और मुझे लगे कि ये हो क्या गया दुनिया में,

0: परीक्षित साहनी की अधिकतर पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल्स में हुई। बाद में दिल्ली और पूना में उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करने वो रूस जा पहुंचे। हालात कहीं अकस्मत, जब वो लौटे तो डायरेक्टर बनते बनते इंडिया में आकर एक्टर बन गए।
1: कहानी बड़ी अजीबोगरीब है कि अपना आशीष सेन साहब मॉस्को आए थे, उनके साथ दोस्ती हो गई मेरी, और जब मैं वापस लौटा तो मैं ये पवित्र पापी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा था। हमने सुनील दत्त साहब को साइन कर लिया था, तनुजा को साइन कर लिया था, गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। मैं अपने आप को बड़ा इम्पोर्टेंट महसूस कर रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे कि मैं अपने डायरेक्शन करने जा रहा हूँ। तो बीच में एक थोड़ा वक्त था फिल्म शुरू होने में, तो आशीष सेन साहब एक दिन मिल गए, और मुझे याद आया कि तो मॉस्को में मुझे मिले थे, और उन्होंने कहा भी मैं एक छोटी सी फिल्म बना रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, हम 24 दिन में ख़त्म कर देंगे, और उसमें एक छोटा सा रोल है। तो मेरे एक आदत थी उसूलन, जब मैं बड़ा हो गया मैं झिझकता था पिताजी से पैसे मांगने में, इसलिए जब इन्होंने कहा कि भाई तुम्हें 10,000 रुपये देंगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी वो, तो मैंने हाँ कर दी वो अनोखी रात फिल्म के लिए। और फिल्म जब शुरू हुई तो एक हफ्ता नहीं हुआ था कि प्रोड्यूसर साहब ने डायरेक्टर साहब को कहा कि इस शख्स को निकाल दो इस फिल्म से। वो दरअसल बात ये थी कि मैं 6 साल रूस में रह के आया था, और उस ज़माने में मैं रूसी ही बोलता था, हिंदुस्तानी से वाकिफ़ नहीं था ज़्यादा, डायलॉग बोलने में बड़ी तकलीफ़ हो रही थी मुझे। मैं आज तक कभी कभी अपने आप को अजनबी सा महसूस करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी के 6 साल जवानी के एक जगह में बिताना, और वो भी रूस जैसी जगह में, तो वापस लौटकर थोड़ा सा एक झटका लगता है आदमी को। और ये दादा मुनि हमारे अशोक कुमार साहब भी आखिरी दम तक कहते रहे तेरी डिलीवरी बड़ी अजीब है यार, तो गलत जगह पे पॉज लेता है, ये गलत सेंटेंस को स्ट्रेस करता है। तो उस वक्त फिर आशीष सेन साहब ने कहा प्रोड्यूसर को कि ये जिस तरह से बोल रहा है ऊटपटांग, लोगों को पसंद आएगी, इसको अभी मत निकालो। और यही हुआ। मैं तो सोचता था कि फिल्म आएगी और जाएगी और लोग भूल जाएंगे कौन हूँ मैं, मगर पता नहीं सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश फिल्म बड़ी हिट हो गई। मनोखी रात

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने अजय साहनी के नाम से कई फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई थी। हालांकि बचपन में भी दो तीन फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार की भूमिका अदा की थी, लेकिन उनके पिता महान कलाकार बलराज साहनी साहब चाहते थे कि उनका बेटा पहले तालीम हासिल करे और बाद में कुछ और बने। आपको याद होगा, राजश्री प्रोडक्शन की मशहूर फिल्म तपस्या में परीक्षित साहनी ने अभिनेत्री राखी के साथ एक बेहतरीन भूमिका अदा की थी। आइए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गाना।

मैं उस जमाने में भी ज्यादा रुचि मेरी पेंटिंग वगैरह में थी, मैं पेंटिंग बहुत करता था, फोटोग्राफी, ये ब्रॉडकास्टिंग में बड़ी बड़ी दिलचस्पी थी मेरी। मैं मॉस्को रेडियो के लिए काफ़ी साल काम करता रहा एज एन अनाउंसर। ये रेडियो मॉस्को है, अब आप देश विदेश के समाचार सुनिए। ये स्क्रीन कैमरे के सामने एक्टिंग करना किसी हद तक ज़्यादा आसान है। पिताजी भी मेरे यही कहा करते थे, वो भी मुझे कहते थे कि बेटे मैंने एक्टिंग अगर सीखी है तो रेडियो पर सीखी है। जो मैं बीबीसी में माइक्रोफोन के सामने बैठ के एक्टिंग किया करता था, वो प्लेस किया करते थे उस ज़माने में, और जो उससे मेरा तलफ़ुज़ ठीक हुआ, उससे मैंने बोलना सीखा, उससे मेरी आवाज़ ठीक हुई। और ये जो स्टूडियो में बैठकर श्रोता तो हमें सुन रहे हैं सिर्फ, बहुत दूर है मुझसे, उन्हें महसूस कर रहा हूँ मैं, मुझे देख नहीं सकते वो, इसलिए मैं सिर्फ अपनी आवाज़ के ज़रिए उन्हें मुतासिर कर सकता हूँ।

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने तमाम फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं और उनके अभिनय को आपने टीवी के पर्दे पर भी कई सीरियल्स में जरूर देखा होगा। उन्होंने अपने हर किरदार को साकार किया है और हम भी उनको यही शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपनी अभिनय यात्रा को निरंतर जारी रखें और अपने चाहने वालों का दिल बहलाते रहें।

0: दोस्तों, आज के फनकार थे फिल्म अभिनेता परीक्षित साहनी।
1: आज के फनकार।

अभी विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जा रहे थे। एफएम एंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं, जिले की चिट्ठी बस कुछ ही पलों में आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील पांडे, वाचन स्वर दीपा सिंह। छतरपुर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले के विकास कार्यों की एक एक कर समीक्षा की गई। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने, हर घर नल जल योजना पूरी होने पर पंचायतों को हैंड ओवर करने और नियमित पानी सप्लाई के निर्देश दिए गए। जनप्रतिनिधियों से भी अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की लगातार निगरानी करने को कहा गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने जिले में पल्स पोलियो अभियान चलाया। पहले दिन पोलियो बूथों पर और उसके बाद घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जिले में करीब 3,04,000 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए 2,000 से ज्यादा बूथ बनाए गए। अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने की। जल संरक्षण को लेकर चल रहा जलगंगा संवर्धन अभियान भी अब सम्पन्न हो गया है। समापन कार्यक्रम मोटे के महावीर परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार शामिल हुए। उन्होंने प्राचीन बावड़ी के जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया और लोगों से बारिश के पानी को बचाने, जल स्रोतों की सफाई और खेतों में मेड़ बंधान तथा तालाब बनाने की अपील की। जिले के युवाओं के लिए जिला प्रशासन ने लोक सेवा गुरुकुल और सेंट्रल लाइब्रेरी की शुरुआत की है। यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग मिलेगी। आज से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी खुद विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। दूसरी तरफ जिले के सरकारी स्कूलों में नए शिक्षा सत्र की पढ़ाई भी नियमित रूप से शुरू हो चुकी है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। शिक्षकों को समय पर स्कूल पहुंचने और बेहतर पढ़ाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं लापरवाही मिलने पर कुछ शिक्षकों के वेतन काटने और समूहों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई भी की गई। छतरपुर में बन रहा मेडिकल कॉलेज अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने निर्माण स्थल का निरीक्षण

कर हॉस्टल, ऑपरेशन थिएटर, क्लासरूम, इमरजेंसी और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। किन बेतवा लिंक परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास को लेकर कलेक्टर पार्थ जायसवाल और पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने करोंदिया पहुंचकर विस्थापित परिवारों से मुलाकात कर सुविधाओं का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त बोरवेल कराने के निर्देश दिए और विस्थापित परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर आयोजित करने को कहा। उन्होंने डोढ़न और खरियानी गांव का भी दौरा कर उन ग्रामीणों से चर्चा की जिन्होंने अभी तक अपने आवास खाली नहीं किए हैं। मानसून की दस्तक के बाद जिले में किसानों ने खरीफ की बुआई तेज कर दी है। अब तक 70% से ज्यादा रकबे में बोनी हो चुकी है। किसान मूंगफली, उड़द, सोयाबीन की फसल लगा रहे हैं। कृषि विभाग और किसान FPO के माध्यम से उन्नत बीज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिले के जरूरतमंद मरीजों के लिए भी राहत की खबर है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित 7 लोगों को मुख्यमंत्री स्वच्छानुदान मद से इलाज के लिए कुल 3.5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। प्रशासन ने अवैध खनिज परिवहन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। खनिज विभाग ने 5 मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 17,45,300 रुपए का जुर्माना लगाया है। छतरपुर के लक्ष्मण कॉलोनी सटई रोड में बाल विभाग की सूचना मिलने पर महिला बाल विकास, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रुकवाया। टीम ने दोनों पक्षों को समझाते हुए बाल विवाह करने पर कानूनी कार्रवाई और सजा के प्रावधानों की जानकारी भी दी। छतरपुर के मऊ सहानिया में 2 दिवसीय विरासत महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें महाराजा छत्रसाल के शौर्य वीरता ने दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। समापन दिवस पर मुस्कान चौरसिया ने बुंदेली गायन और संप्रिया पूजा ने पनभानी शैली में महाभारत का प्रसंग प्रस्तुत किया। अंतिम प्रस्तुति सुमित मिश्रा द्वारा संयोजित धन्य धन्य बुंदेल धरा रही, जिसमें कविता शर्मा के गीतों के साथ 16 लोक नृत्य कलाकारों ने बुंदेलखंड की गाथा प्रस्तुत की और अंत में बात विश्व योग दिवस की। जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह परिसर में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 2,000 से ज्यादा लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार भी शामिल हुए और प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण भी लोगों ने देखा। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी छतरपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील पांडे का था, वाचन था दीपा सिंह का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: FM 101.2 MHz पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। दिल से दिल तक पहुंचती आवाज आकाशवाणी खंडवा की।

0: है तो
1: हम हो चुके आपके। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा। तो श्रोताओं, यह है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण बहनों का अपना पसंदीदा ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहनों को स्वागत छे। आज कार्यक्रम में आपका साथ छे आपकी बहन मनीषा चौबे। तो स्वीकार करो मारी राम राम बहन हो। अभी बारिश यानी मानसून अब आई गयो ज न, इनी बारिश को हम सब बड़ा आनंद लेवा। जमा जम बारिश हो तो आनंद भी दुगनो हुई जाए न, फिरी गरमा गरम पकोड़ा ने भजिया न चाय ने वो भी मसाला न अदरक वाली। बारिश में आनंद तो लेवा पण इनी बारिश में अपना स्वास्थ्य को भी ध्यान रखा।

न कुछ सावधानी न भी रखा। उमस नरु चिपचिपी गर्मी न तापमान में बार बार उतार चढ़ाव, बारिश पसीनों नरु शरीर पर लंबा समय तक भीगा हुआ कपड़ा, ये सब रहना सी त्वचा संबंधी संक्रमण हो सके। नमी नरु पसीना का चलता शरीर सी लईकन माथा की त्वचा मत चिपचिपोपन, जलन रुसि रेसेज खुजली महसूस होने लगी जाए, न परेशानी न बढ़ी जाए। बहन होन हम इना दैनिक जीवन में कामकाज पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक छे। ये बात भी छे कि इना समय हवा में मौजूद नमी त्वचा का रोम छिद्र क खोली देज, एकासी ई रोम छिद्र में गंदगी जमना न को खतरो बढ़ी जाए, नी बैक्टीरिया न फंगस क पनपना देज, ओका बढ़ना का लेन अनुकूल परिस्थिति न बने देज। असो मुश्किल स्थिति क संभालना का लेन जरूरी छे कि आप इना मौसम में त्वचा की देखभाल क सही तरीको जाने लेवा। साथ ज ई आदत न से भी दूर रमा जो त्वचा क गंभीर नुकसान पहुँचाई सकज। बहन होन हमारा जैसे कि माथा में रूसी बढ़ी जाए, माथा में जो बाल का अंदर एक ऊपर से चमड़ी निकलज तो वो भी त्वचा संबंधी रहे, यानी ओका स्केल पकड़े तो हमारा माथा की वो त्वचा जेका पर बाल उगज ध्यान रहे कि ओकी सफाई नहीं हो तो इना मौसम में बाल का गिरना रूसी जेका आजकल बच्चा डेंड्रप का नाम से जाने तो ये सब संक्रमण की आशंका बढ़े दे। यदि आप रोजाना तेल लगाओ तो स्केल्प का रोम छिद्र बंद हो सके या फोड़ा फुंसी को कारण बने छे। तो नमी भरेल मौसम में तो ये खास ध्यान रखा कि माथा पर जमेल उनी चमड़ी को पपड़ी को साफ करा, रूसी का कारण एक बढ़ना नहीं देवा या आज गंभीर संक्रमण या खुजली भी करी सकज। यदि तेल लगाना जरूरी छे तो बाल का निचला हिस्सा में लगाना का कुछ दिन बाद ओका अच्छी तरह से धोए लेवा, क्योंकि भाई बहन हो हम माथा में तेल तो लगावा नहीं, फिर बरसात का दिन छे तो माथो गीलो हो जाए तो वो सूखी नहीं पाओ तो है तो हम का ही करा कि भाई अभी बारिश हो रही है तो 8 दिन में एक बार माथो धोवांगा क्योंकि बाल खीरज, तो ऐसो नहीं है। बाल बारिश का कारण नहीं खिरी रहे हैं, नमी का कारण ओमा गंदगी उत्पन्न हो गई क्योंकि तेल का कारण पसीनो जमज धूल मिट्टी न उड़ी कर वो भी जमज, तो ओका से हमको रूसी की शिकायत हो सकज, तो एका से वो हमारी त्वचा का खराब कर सकज। तो हर तीसरा दिन हम माथो भी धोवा न साथज पसीना सुखाड़ न कलेन कई भाई बहन हो मतलब सभी अधिकांश पाउडर को खूब प्रयोग करें, जहाँ भी गर्मी लगी तो हम शरीर का ऊपर पसीनो निकले रहे तो पाउडर मुड़ो धोयो कि पाउडर चोपड़े, मतलब पाउडर को इतना उपयोग करा कि हमारा अंदर को शरीर में रोम छिद्र वो बंद कर दे, तो एको प्रयोग भी हम कम मात्रा में करा। अतिरिक्त पाउडर जो रहे त्वचा से निकलने वाले प्राकृतिक तेल का सोखी ले, एका से हमारा मुड़ा पर जो मुहावसा रह नाक का ऊपर जो काला काला ब्लैकहेड्स हो जाए ये समस्या ओका कारण हो तो त्वचा का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ी सके, तो एकालैंड अत्यधिक ये त्वचा हमारी रुकी हुई जाए तो पाउडर का कण फेफड़ा में भी चले जाए तो सांस की भी समस्या हो सके। तो बहन होन हम पाउडर को उपयोग करा लेकिन समय समय पर ज़्यादा नहीं, न स्वस्थ त्वचा का लेन भोजन में सभी पोषण युक्त भरपूर खाद्य को प्रयोग करा, संतुलित भोजन करा और न साथ में फल फ्रूट को भी प्रयोग करा, दही छाछ लस्सी को सेवन तो हम हमेशा करा, ये कही छे कि हमारी आँत का स्वास्थ्य का संतुलित रखज, न सूजन न एक्जिमा मुहासा ये संबंधी समस्या न कभी कम करज। तो हमारा घर में छाछ तो बना जैसे तो हुकामा अरु छाछ में दही में पानी अच्छो ना खिलेवा, दूध में भी पानी ना खिले न लस्सी बनाई कर न पीवा। न आपने ये नाम भी सुने होगा ये ओमेगा, ओमेगा का ही आए यह अलसी का बीज आए तो एको भी हम भरपूर प्रयोग करा, एका उपयोग करने से हमारी जो त्वचा छे ओका मतलब लालिमा छाई जाएगा, ये लालिमा का कम करने में सहायक है। यह अलसी का बीज अखरोट न मछली का सेवन से हमको बहुत ही भरपूर

काम लालिमा बढ़ेल रहे ओको ओका सेवन करने से हमको प्राप्त हो। नया खास बात कि बाहर को खाना तो हम तले गुले खाद्य पदार्थों को प्रयोग कम से कम करा, ध्यान रखा क्योंकि बारिश का दिन छे तो ई दिन में हम खुले हुए खाद्य को प्रयोग उपयोग नहीं करा क्योंकि इना दिन में मक्खी मच्छर कीड़ा मकोड़ा बहुत हो, आसपास पानी जमेल रहे तो इना मक्खी मच्छर का हम ओका से बचे नहीं सकता है खुली हुई चीज न से, तो वो बीमारी फैल ही सकज। एका से हम कोशिश करा बाहर को खानो कम से कम उपयोग करा, घर को बनेल खाना को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करा, न हमारा हाइड्रेशन को ध्यान रखा, विटामिन सी न बीटा केरोटीन युक्त खाद्य पदार्थ को सेवन करा। एका सी त्वचा संबंधी हमारो स्वास्थ्य ये त्वचा अच्छी बनेल रहेगा। तो ई तो थी आपसे हमारी बातचीत, खास एक और बात ये छे कि कमर पैर बगल इना हिस्सा अक्सर गीलो रह जाए, नहाना का बाद एक अच्छी तरह से सुखाणु नहीं भूलना। ई दिन में मौसम में नमी रह तो कपड़ा भी बिल्कुल सूखी जाए, तो हर तीसरा दिन कपड़ा मतलब पेरा जो आज धोयो कपड़ों काल सूखी सूख तो नहीं क्योंकि बारिश छे ना नमी का कारण हमको लगे कि सूख ही गयो, पर सूख ही जाए अच्छो ओका बाद जो को हम कपड़ा का पेरा। ई चीज को विशेष ध्यान रखा, न ढीला डाला सूती कपड़ा को प्रयोग करा, त्वचा का रोम छिद्र का बंद होना सी ये रोकी दे, ये हवादार हो एका से पसीनो आसानी से सूखी जाए का सूती कपड़ा जो ढीला ढाला छे। तो बहन होन ई बात को विशेष ध्यान रखी का ना अब कार्यक्रम में आगे बढ़ाए न मनोरंजन का वाटा सुना योनी माड़ी लोकगीत।

0: बिनहोण, अभी हम सुनी रहा था साधना उपाध्याय को गायो यो निमाड़ी लोकगीत। अब चलें जल संरक्षण का बारे में जानकारी का लें, तो जानकारी दे रही सेतु शर्मा। तो आओ सुना ये बात।
1: मानव, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे सभी के अस्तित्व के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें से केवल लगभग 2.5% जल ही पीने योग्य है और उसमें से भी बहुत कम हिस्सा सीधे उपयोग के लिए उपलब्ध है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण और जल के अंधाधुंध दोहन के कारण आज विश्व जल संकट की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। ऐसे में जल संरक्षण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। जल जीवन का मूल तत्व है। यह न केवल पीने के लिए आवश्यक है, बल्कि कृषि, उद्योग, बिजली उत्पादन, सफाई, परिवहन और अनेक दैनिक कार्यों में भी इसकी आवश्यकता होती है। मानव शरीर का लगभग 60-70% हिस्सा जल से बना है। पौधों के विकास, मिट्टी की उर्वरकता और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए जल अनिवार्य है। जल के बिना फसलें भी नहीं उग सकती, पशु जीवित नहीं रह सकते और मनुष्य का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है, जल ही जीवन है। आज पूरी दुनिया जल संकट से जूझ रही है। भारत जैसे देश में यह समस्या और भी अधिक गंभीर हो रही है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है और जल संसाधनों का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। जल संकट के मुख्य कारण हैं जनसंख्या वृद्धि। बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की मांग तेजी से बढ़ रही है। भूजल का अत्यधिक दोहन, लोग जरूरत से ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं जिससे जल स्तर नीचे जा रहा है। वर्षा का असमान वितरण, कहीं अधिक वर्षा तो कहीं कम। जल प्रदूषण, नदियों, तालाबों और झीलों में गंदगी और रसायन डालने से पानी प्रदूषित हो रहा है। वनों की कटाई, पेड़ों की कमी से वर्षा चक्र प्रभावित हो रहा है। जल का दुरुपयोग, लोग बिना सोचे समझे पानी बर्बाद कर रहे हैं। भारत में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी की भारी कमी है। गर्मियों के मौसम में कई शहरों और गांवों में पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कुछ क्षेत्रों में लोग कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाते हैं। भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश।

देश जैसे राज्यों में नदियां भी धीरे धीरे सूखती जा रही हैं या फिर प्रदूषित हो रही हैं। जल प्रदूषण जल संकट का एक बहुत बड़ा कारण है। जब नदियों झीलों तालाबों में कचरा प्लास्टिक रसायन औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज डाला जाता है तो पानी प्रदूषित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पानी पीने योग्य नहीं रहता, जल जीवों की मृत्यु होती है, बीमारियां जैसे डायरिया हैजा टाइफाइड आदि फैल रही हैं। जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि हम अभी भी नहीं जागे तो भविष्य में जल की भारी कमी हो सकती है। भविष्य की पीढ़ियों को बचाने के लिए जल संरक्षण बहुत आवश्यक है। सूखा और अकाल जैसी समस्याओं से बचने के लिए जल संरक्षण बहुत आवश्यक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जल संरक्षण बहुत आवश्यक है। जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल संरक्षण बहुत आवश्यक है। वर्षा जल संचयन यह सबसे प्रभावी तरीका है। इसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करके जमीन में या टैंक में संग्रहित किया जाता है। इससे भूजल स्तर बढ़ता है। पानी का सही उपयोग करना, नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ब्रश करते समय नल बंद रखना चाहिए, बाल्टी से स्नान करें, शावर का कम उपयोग करें, लीकेज को ठीक करते रहना चाहिए। टपकते नल और पाइप से पानी बहुत अधिक बर्बाद होता है, इसे तुरंत सुधारना चाहिए। कृषि में जल संरक्षण ड्रिप सिंचाई से करना चाहिए, स्प्रिंकलर सिस्टम, इन तकनीकों से कम पानी में अधिक फसल उगाई जा सकती है। वृक्षारोपण करके पेड़ वर्षा को आकर्षित करते हैं और जल चक्र का संतुलन बनाए रखते हैं। गंदे पानी को साफ करके दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे बागवानी में इसे पुनर्चक्रण कहते हैं। जल स्रोतों की सफाई रखना चाहिए, नदियों तालाबों झीलों को साफ सुथरा रखना चाहिए। लोगों को जल के महत्व में शिक्षित करना जरूरी है, जागरूकता फैलाना जरूरी है। सरकार भी बहुत अहम कदम उठा रही है, जल संरक्षण के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे जल जीवन मिशन, नमामि गंगे योजना, विभिन्न जल संचयन परियोजनाएं। सरकार को चाहिए कि जल संरक्षण के कानून को बनाए, उद्योगों पर नियंत्रण रखे, ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुविधाएं बढ़ाए। प्रति व्यक्ति जल संरक्षण में अपनी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रूप से अदा कर सकता है। पानी का दुरुपयोग ना करें, दूसरों को भी जागरूक करें, जल संरक्षण के उपायों को अपनाएं। विद्यालय में बच्चों को जल संरक्षण के बारे में सिखाया जाना चाहिए। समाज में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा सकता है। जल और पर्यावरण का संबंध बहुत अधिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि जल स्रोत सूखते हैं तो पर्यावरण भी असंतुलित हो जाता है। जंगल खत्म हो जाएंगे, वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, जलवायु परिवर्तन भी बढ़ेगा। भविष्य की चुनौतियों में यदि जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम भविष्य में पीने के पानी की कमी हो जाएगी, खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा, संघर्ष और युद्ध भी हो सकते हैं। जल हमारे जीवन का आधार है, इसका संरक्षण हमारी बहुत अधिक जवाबदारी है। यदि हम पानी आज से ही बचाना शुरू करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि जल सीमित संसाधन है और इसका सही उपयोग करना आवश्यक है। बूंद बूंद से सागर बनता है, इसी तरह छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिणाम ला सकते हैं। हमें जल का सम्मान करना चाहिए, इसे बचाना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। यही हमारे जीवन और पृथ्वी के भविष्य के लिए सबसे बड़ा योगदान होगा। जल संरक्षण में तकनीकी नवाचारों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के आधुनिक युग में तकनीक ने जल संरक्षण को अधिक प्रभावी और सरल बनाया है। नई नई तकनीकों के माध्यम से हम जल स्तर का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत उपयोग हो रहा है, जिससे पानी की बर्बादी को रोका जा रहा है। ये सेंसर पाइपलाइन में लीकेज का पता लगा देते हैं और समय रहते उसे ठीक करने में मदद करते हैं। डेसिलेशन समुद्री जल को मीठा बनाया जा रहा है। हालांकि यह प्रक्रिया महंगी है, लेकिन भविष्य में यह एक महत्वपूर्ण समाधान बन सकती है। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट शहरों में गंदे पानी को साफ करके दोबारा उपयोग में लाया जा रहा है। इससे ताजे पानी की मांग बढ़ रही है। डिजिटल जागरूकता अभियान सोशल मीडिया और इंटरनेट के

माध्यम से जल संरक्षण के बारे में जागरूकता तेजी से फैलाई जा रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब और कुओं का निर्माण हो रहा है, वर्षा जल संचयन हो रहा है, पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियों का प्रयोग हो रहा है और शहरी क्षेत्रों पर छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अपार्टमेंट में पानी का पुनर्चक्रण और जल मीटर का उपयोग। भारत की पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियाँ बावड़ी राजस्थान और गुजरात में प्रसिद्ध हैं। जोहड़ वर्षा जल संग्रहण की प्रणाली, कुंड और तालाब ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन के साधन। ये प्रणालियाँ आज भी उपयोगी हैं और इन्हें पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। जल संरक्षण और सतत विकास का

0: भारत की पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियाँ बावड़ी राजस्थान और गुजरात में प्रसिद्ध हैं। जोहड़ वर्षा जल संग्रहण की प्रणाली, कुंड और तालाब ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन के साधन। ये प्रणालियाँ आज भी उपयोगी हैं और इन्हें पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। जल संरक्षण और सतत विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि हम जल का संतुलित उपयोग करेंगे तो हम विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना पाएंगे। इसका उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति को सुरक्षित और स्वच्छ जल उपलब्ध हो। जल संरक्षण में युवाओं की भी भूमिका बहुत अहम है। सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाना, जल संरक्षण अभियानों में भाग लेना, घर और स्कूल में पानी बचाने की आदत को डालना। जल संरक्षण के लिए जल है तो कल है, पानी बचाओ जीवन बचाओ, हर बूंद कीमती है। आज पानी बचाओ कल मिलेगी खुशहाली। व्यवहारिक जीवन में अपनाने योग्य आदतें हमें अपनाना चाहिए। वाहन धोने के लिए बाल्टी का उपयोग करना, बगीचे में सुबह शाम पानी देना, कपड़े धोने के लिए मशीन का पूर्ण उपयोग करना आदि काम से हम बहुत ज़्यादा जल संरक्षण कर सकते हैं। जल संरक्षण हमारी नैतिक जवाबदारी है। जल केवल संसाधन नहीं बल्कि प्रकृति का अमूल्य उपहार है। इसका संरक्षण करना हमारी नैतिक जवाबदारी है। जल संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। यदि हम अभी से प्रयास नहीं करेंगे तो भविष्य में स्थिति भयावह हो सकती है। हमें मिलकर संकल्प लेना होगा कि हम पानी की एक एक बूंद का सही उपयोग करेंगे, जल को कभी प्रदूषित नहीं करेंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे। अंत में यही कहते हैं कि जल ही जीवन है और इसका संरक्षण करना जीवन की सुरक्षा करना है।
1: बहनों, अभी आपने सुनी यह वार्ता जल संरक्षण, हमका जल बचाओ किसी भी तरह से। अब आओ चलो सुना एक और निमाड़ी लोकगीत।

बहनों, अभी आपने सुने हो योनिमाड़ी लोकगीत, एक गायो थो हेमलता उपाध्याय। अब गीत भजन तो हुई गया, अब अपन चला व्यंजन की विधि, मतलब हमारा आज का व्यंजन। ना आज का जो व्यंजन छे वो मौसम का अनुकूलित छे, यानी अभी बारिश को मौसम शुरू हुई हो। ना बारिश जहाँ रिमझिम हो कि घना घनघोर, पर तली गुली चीज को खाने को मन बहुत करज। पर मौसम का देखी का ना खावा, लेकिन भजिया पकोड़ा जो छे वो तो खाने को मन करज, वो भले ही कहीं का भी हो। तो आज हम बनावांगा गर्मा गर्म मूंग की दाल का पकोड़ा। न ये नाव सुनिश का ना मुड़ा में पानी आई जाए, पर आप एक बनाओ जो तो घर वाला कहीं बड़ा कहीं ना बच्चा कहीं सब बड़ा खुश हो जाएगा। तो मूंग की दाल छिलका वाली लेवा। न असीज अगर हम चना की दाल का भी बनावा तो चना की दाल भी लेवा। न ओका 2 घंटा भिंजाई देवा। सुबह अगर हमका 10 बजे तक बनावनो तो 8 बजे भिंजी देवा। न संजा का बनावनो हो तो 12-2 बजे भिंजी देवा। पानी में भिगई का न रखा छिलका वाले मूंग की दाल का। न फिर ओका 2 घंटा बाद पानी में से निकाली का न पीसी लेवा। थोड़ी देर ओका छलनी में रखी देवा, नहीं तो सीधा पानी में से निकाली का ना पीसा तो पेन होने ओम कही छे कि पानीश पानी हो जाए, फिर वो तलने में दिक्कत जाएगा क्योंकि वो तो पतलो पट हमारो घोल हो जाएगा। तो ओका पानी का में से निकाली का ना छन्नी में रखा, न जब पानी निकली जाए फिर ओका पीसी लेवा। न जब मूंग की दाल का पीसा तो साथ में ओका में हरी मिर्ची न अदरक ये भी पीसी लेवा। न फिर अगर मिक्सर में नहीं पीसणो हो तो हम सिलबट्टा पर भी पीसी सकान। न सिलबट्टो अगर हम चलावान तो बेन सिलबट्टा पर पिसेली दाल जो रज वो दरदरी और स्वाद भरेल रज। तो ओकाम फिरी स्वाद अनुसार नमक, हरी मिर्ची का बारीक कटका, जीरो, धनो, न हींग। हींग को स्वाद बहुत अच्छो आवज। हींग तो नाखा साथ में अगर हमारा घर में खड़ो हाड़ो धनियो छे तो वो भी नाखा। न थोड़ा थोड़ा सा पहले तो दाल का साथ पीसी ले, पर अदरक का थोड़ा टुकड़ा भी ओका अंदर नाखा। फिर मजेदार चटपटा मूंग का पकोड़ा बनाई लेवा। एक कही छे कि जरा सो चाखी का ना देखी लेवा कि नमक बराबर छे कि नहीं। फिर गर्मा गर्म तेल का अंदर डाला न बढ़िया चटनी का साथ मूंग का मंगोड़ा न को आनंद लेवा। ये भजिया असा का साथ चना की दाल का भी बना न चना की दाल का भी पीसा। एक आम एक बात छे कि आप प्याज को उपयोग नहीं करें।

ये बिना प्याज का उपयोग करे हुए ये मंगोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे छे। न अब समय छे आज का, ये एक तो एक टिप्स बता दें आपका कि जो एक कुरकुरा बनावनो छे तो कुरकुरा बनावना का लें एक आम तेल जरा सो नाखा, वो भी कढ़ाई में गरम हुए लो तेल, उना तेल का नाखी देवांगा तो पकोड़ा कुरकुरा बनागा। अब चलान ये तो हमारा व्यंजन बनी गयो, अब नुस्खा की तरफ। तो बहनों अभी मैंने आपका स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी थी, तो अब योज मानसून में त्वचा संबंधित कई तरह की समस्या न हो, जैसा कि स्किन एलर्जी रेसेस दाना मुआसा, ये सब में आयुर्वेदिक उपाय आपका लेन बहुत मददगार साबित हुई सकत। तो हमारा घर में सदियों से सौंदर्य बढ़ाना का लेन हल्दी न चंदन को उपयोग करो जाए, तो इनका सही तरीका से प्रयोग करना सी त्वचा स्वस्थ स्वच्छ नारु आकर्षक बनेल रहे। हल्दी में हमारा कई गुण रहे, मतलब ये कोशिका न का नुकसान होने से बचावज, न चंदन में शीतलता रहे, ये त्वचा का ताजगी देना नारु अतिरिक्त तेल नियंत्रित करने में सहायक छे। तो चंदन न हरु हल्दी को पेस्ट बनाकर ना त्वचा पर लगाई सको, या फिर अलग से मुल्तानी मिट्टी गुलाब गुलाब जल या बेसन में भी मिलाई कर ना त्वचा पर प्रयोग करी सको, के का हल्दी का एकासी त्वचा में प्राकृतिक चमक बनेल रहेगा। तो ई मतलब हल्दी न चंदन को प्रयोग हमारी त्वचा का निखारेगा, आप हमेशा युवा दिखाता रहोगे और चमक बनेल रहेगा। तो अब कार्यक्रम को समय पूरा हुई रोज, तो आज्ञा देव आपकी बहन मनीषा चौबे का।

निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से प्रस्तुत है सुगम संगीत। तो सुगम संगीत में आज सुनिए विभिन्न कलाकारों के गाए सुगम संगीत रचनाएं। शुरुआत में सुनिए एलिशा चिनाय के गाए इस गीत को।

जी हाँ श्रोताओं, आपने चुना है 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी खंडवा को। आपके प्यार का साथी, निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: सुरीला संगीतमय सफर कारवां इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।
1: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
2: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
1: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
2: क्यों,
1: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
2: वो कैसे?
1: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार

0: से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
1: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
0: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
1: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
0: आप कब आ रहे हैं
1: आकाशवाणी खंडवा पर?

सुरीला संगीतमय सफर कारवां इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आपकी खैरियत हमारा सुकून। निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं सुकून भरा सुगम संगीत।

0: सुरीला संगीतमय सफर कारवां इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।
1: दिल से दिल तक पहुंचती आवाज आकाशवाणी खंडवा की।

0: है तो
1: हम हो चुके आपकी। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा। सुगम संगीत में आप सुनिए हेमंत सरदेसाई की गाई ये रचना।

0: इस गीत के साथ ही सुगम संगीत अब संपन्न हुआ। एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। अब हम राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित करेंगे।
1: दोस्त नेहा शर्मा, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

शिव आराधना। इस एल्बम से आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में ये भजन, जिसे लिखा महेंद्र दहलवी ने और दिलीप सेन समीर सेन का संगीत इसमें आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती पर। आइए आपको सुनवाते हैं जगदीश सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में जावेद अख्तर का ये कलाम, कुलदीप सिंह का संगीत, फिल्म साथ साथ।

साथ साथ फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, कुलदीप सिंह का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: राजकुमार रिजवी की आवाज में आप सुन रहे थे उर्दू गजल मॉडर्न। इस एल्बम से ये गजल जिसे लिखा ताहिर फराज रामपुरी ने और बेनी का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। ओहो!

सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक के साथ साथियों की आवाजें बीवी नंबर वन फिल्म के इस गीत में सुखविंदर सिंह के बोल और उन्हीं का संगीत भी इस गीत में। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में ये गीत।

सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर के बोल आप सुन रहे थे। साजिद वाजिद का संगीत दीवाना एल्बम के इस गीत में और कार्यक्रम रंग तरंग विभिन्न भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं शंकर महादेवन को ब्रेथलेस में।

शंकर महादेवन की आवाज में ब्रेथलेस एल्बम से आपने ये ब्रेथलेस गीत सुना। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर महादेवन का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग में अब सुनिए ये गीत।

0: कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज में आप सुन रहे थे चालबाज फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: गणेश हेगड़े की आवाज में आप सुन रहे थे उन्हीं के एल्बम का ये गीत, जिसे मनोज संतोषी ने लिखा और गणेश हेगड़े ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, और आपको याद दिला दें कि शाम 4 सेहतनामा के अंतर्गत सुन सकते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। फिलहाल कार्यक्रम में सुनिए अगला गीत।

दर्दी रब रब इस एल्बम से आपने सुना दलेर मेहंदी को। जंगा नंदपुरी ने इसे लिखा और जवाहर वट्टल का संगीत इस गीत में आपने सुना। बस दो मिनट, ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये प्रहसन है जिसे आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। लेखन मदन बिहारी का, माफ कीजिएगा, लेखन मदन बिहारी शरणदीप का, निर्देशन श्याम सुंदर प्रसाद का। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस समय रंग तरंग। और आपको ये भी बता दें कि रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेता परीक्षित साहनी पर, ये आप सुन सकते हैं। और अब सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत।

सपने फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हेमा सर देसाई और मलसिया वासुदेवन की आवाज है, जावेद अख्तर के बोल, ए आर रहमान का संगीत। इसके साथ ही रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। बिहार में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव मौजूदा सांसद नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण हो रहा है। गुजरात में मंजलपुर विधानसभा सीट योगेश भाई नारंदास पटेल के निधन के कारण तथा मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण दतिया सीट खाली हुई थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम

0: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। रूस ने आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की आवाज में दीदार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। और आप समझ गए होंगे यादों की महफिल कार्यक्रम में याद कर रहे हैं अभिनेता परीक्षित साहनी को उनके जन्मदिन के मौके पर।

0: मुकेश की आवाज में आंसू और मुस्कान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे इंद्रवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संकेत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें याद कर रहे हैं अभिनेता परीक्षित साहनी को उनके जन्मदिन पर।

0: मैं क्या सोचती,
1: चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी, चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट जा।

पवित्र पापी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, प्रेम धवन के बोल और उन्हीं का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, और आज हम अभिनेता परीक्षित साहनी के जन्मदिन पर उन्हीं की फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं।

किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में आप सुन रहे थे एमजी हशमत के बोल। रविंद्र जैन का संगीत तपस्या फिल्म के इस गीत में आपने सुना।

पिछले दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें अब सुनवा रहे हैं अभिनेता परीक्षित साहनी के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों से गीत। आइए सुनते हैं वंदना फिल्म का ये अगला गीत, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत, आवाज लता मंगेशकर की।

असद भोपाली की रचना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, रवि का संगीत वंदना फिल्म के इस गीत में। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताते
0: हैं हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें हम याद कर रहे थे जन्मदिन पर अभिनेता परीक्षित साहनी को। कार्यक्रम के इस भाग में याद करते हैं निर्देशक चेतन आनंद को उनकी पुण्यतिथि पर।
2: हर तरफ अब

हिंदुस्तान की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज में कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल आप सुन रहे हैं और हम याद कर रहे हैं पुण्यतिथि पर निर्देशक चेतन आनंद को।

किशोर कुमार की आवाज में कुदरत फिल्म से गीत आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, राहुल देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

पाकिजा फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, कैफे आजमी के बोल गुलाम मोहम्मद का संगीत। और हमारे बहुत से श्रोताओं ने लिख भेजा है सही जवाब और ये भी कहा है कि उनके लिस्ट में तो ये गीत था ही। और ये जानकर हमें बड़ी खुशी है कि आपके लिस्ट और हमारी लिस्ट पहले गीत में ही मिल गई है। आगे ज़रूर देखा जाएगा कि कौन कौन से गीत आपके लिस्ट में से शामिल होते हैं आज के इस कार्यक्रम में। वहीं हमारी एक साथी लिख रहे हैं कि आज का गद्यांश जीवन में चलते रहने की बात लेकर आया है। जीवन का वास्तविक आकर्षण उसकी गतिशीलता में छिपा है। चलते रहने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को दबा दें या दुख महसूस ना करें, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि हम किसी भी पड़ाव पर ठहरे नहीं। चलते रहने की इस कला में धैर्य, आशा और स्वयं पर विश्वास सबसे बड़ा संबल है। आगे बढ़ते रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है स्वीकार्यता। वहीं हमारे और साथी ने लिखा है कि आज के सफर के मर्म को चरितार्थ करती भारत है। संस्कृत में चरैवेति चरैवेति यानी चलते रहो श्लोक की वास्तविकता है। बहता पानी रमता योगी, ठहर जाए तो विकार अवश्यंभावी है। जीवन सफर में चलते रहने वालों की ही प्रगति पथ प्रशस्त रहती है और अंततः लक्ष्य हासिल होता है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि सफर जिंदगी का ये कारवां यूं ही चलता रहा, जहाँ कुछ लोग दूर छूट जाते हैं और कुछ दिल के पास आ जाते हैं। कदमों की खूबसूरती भी ठहरने में नहीं बल्कि लगातार चलते रहने में ही है। जो रुक गए हम तो ये कीमती वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा, जो फिर कभी लौट कर नहीं आता। कुछ कदम आप चले, कुछ दूरी हमने तय की और इस तरह हमारी मुलाकात हो गई। हमारे एक और साथी का कहना है, चलते रहना नियति है और गुजरा वक्त अक्सर दोबारा कभी भी नहीं मिल सकता। जीवन का कटु और शाश्वत सत्य गतिशीलता ही है। इसे कर्मयोग, काल निरंतरता और पुरुषार्थ के रूप में गहराई से समझे जाने की जरूरत है। दूसरे गहन अर्थ में जीवन बहती नदियों सा या किसी चक्र जैसा है, जैसा कि इन दोनों से यही ज्ञान मिल रहा है कि निरंतर गतिशील रहने में ही उनका अस्तित्व बरकरार रहता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि चलते चलते हम किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हमारा मन करता है कि कुछ देर के लिए ठहर जाए। क्या ऐसी कोई जगह या कोई ऐसा समय आपके जीवन में आया, हमें बताइए। और ये भी बताइए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आया जिसमें आपको लगा कि भाई इनके साथ कुछ देर ठहर जाना चाहिए। तो आप हमें बताइए कि रुकने का मन कब किया आपका। और साथ ही हम नहीं रुक रहे हैं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। आपको बताना है कि किसकी आवाज़ में गीत, कौन से फिल्म से।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हसीना मान जाएगी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, और हमारे साथी कहते हैं कि गीत ही जीवन का आधार है, माफ कीजिएगा गति ही जीवन का आधार है, ठहराव तो बस एक हार है, संघर्षों से ही निखरता इस जीवन का श्रृंगार है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो कदम बढ़ाते रहते हैं, इतिहास वही रचते हैं जो लहरों से टकराते रहते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चलना ही जीवन का दूसरा नाम है, अब जब आपके कदम सही दिशा में उठते हैं तो चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, आपकी निरंतर मेहनत और सही दिशा उसे सच कर देती है। सफलता हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि आप रुकने के बजाय कितनी लगन से अपने रास्तों पर आगे बढ़ते गए। हमारे एक और साथी ने लिख भेजा है कि कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई, उसने कहा दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलें, मंजिलें प्यार की होंगी तय, चलते चलते तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रही ये जिंदगी, ऐसा इन्होंने लिखा। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि सफर में चलते ही तो जाना है, जीवन का नाम ही चलना है, जहां रुके वहीं सांसें रुक जाएंगी, हंसते मुस्कुराते जीवन के सुख दुख को भी चलते रहेंगे तो जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ये गीत इन्होंने लिखा। और साथ ही बहुत सारे गीत भी इन्होंने लिखे। एक और साथी लिखती हैं कि सचमुच जीवन आज फिर एक बार आपके साथ चलने का भाग्य मिल गया, सचमुच जीवन में हर घड़ी चलते रहने का बड़ा महत्व है, निरंतर चलते रहने से हर मुश्किलें और असफलता का डटकर सामना करने का दृढ़ मनोबल पाते हैं, नई संभावनाओं को अपनाकर पुरानी बातें छोड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इसी अर्थ का एक सुंदर मराठी कविता याद आ रही है, कायदा पाड़ा गतीचा काल मागे लागला, थांबला तो संपला, धावत्याला शक्ति यही आणी रस्ता साफ पड़े। आज की भारत बहुत प्रेरणादायी, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, ये मार्गदर्शक संदेश दे रही है। हम तो अपने साथी से कहेंगे कि जो भी वो दूसरी भाषा में लिखकर भेजते हैं कुछ कविताएं, तो उसका अर्थ भी जरूर लिख दें ताकि सभी को पूरी तरह से समझ में आ जाए। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं, लेकिन एक और बात हमारे साथियों ने कहा कि चलते चलते सफलता मिलती है, चलते चलते रास्ते मिलते हैं, लेकिन ये सोचिए कि मान लीजिए हमें सफलता मिल गई और चलते चलते कहीं किसी मार्ग पर कहीं रास्ते में हमें असफलता का सामना करना पड़ा, तो कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। फिल्म का नाम और नायिका कौन है बताइए।

अनामिका फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, और इस फिल्म में नजर आती है नायिका के रूप में जया भादुड़ी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन से शिष्य श्यामल बनी प्रकृति के सुंदर प्रसन्न सुहाने नजारे को देखकर दिल कहता है रुक जा रे रुक जा। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन पथ पर मेरी बेटी के आगमन ने जीवन सफर की दशा और दिशा बदल दी। उसकी एक मुस्कान में मानो जीवन लक्ष्य छुपा था। आज वो 37 साल की ही कार्यरत है, कल स्वयं ड्राइव कर दूर घुमाने ले गई। मेरी दैनंदिनी जीवन बेटी ही है। वहीं हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी है। हमारे साथियों ने कहा कि कह रहे हैं कि उन्होंने चलने के महत्व को बताते हुए एक बात लिखी और कहा कि चलते रहना तो जीवन का सफर है। जीवन की तुलना हमेशा बहने वाली नदी से की जाती है। एक नदी अविरल बहती है, समुद्र में लहरें लगातार गतिशील रहती हैं, हवा एक पल के लिए भी नहीं रुकती। प्रकृति का नियम है कि जो ठहर गया उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना, चुनौतियों को पार करना और हर बदलाव को स्वीकार करना ही वास्तविक जीवन है। मनुष्य का जीवन भी कर्म प्रधान है। जीवन के सफर में सुख दुख धूप छांव और उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यदि हम किसी एक पड़ाव पर रुक जाएं तो जीवन का असली उद्देश्य पीछे छूट जाता है। हमारे एक और साथी ने बताया कि मैं हर रोज शाम मेरी शॉप के आगे की खुली जगह में वॉक करता हूँ। संडे की शाम मेरे घर के पास वॉक करते करते घूम लेता हूँ। वॉकिंग टाइम मेरी जेब में मोबाइल में विविध भारती सेवा के गीत बजते रहते हैं। तो बिल्कुल हम भी आपके

यानी कि वॉक कर रहे हैं उसे भी नोट किया जाना चाहिए। जो भी उस वक्त आपके साथ हैं विविध भारती पर बने हुए, उन्होंने भी आपके साथ वॉक की है, ऐसा हम मानकर चलेंगे। और हमारे एक और साथी ने कहा कि भाई यूं ही कोई मिल गया था सरी राह चलते चलते, बहुत बार कुछ अनजान लोग चलते चलते मिल जाते हैं, उनके साथ चलना भी बड़ा सुखद होता है, ये जानते हुए कि शायद दोबारा फिर कभी उनसे मुलाकात नहीं होगी। राह चलते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने में उनका जो साथ रहता है वो हमेशा याद रहता है, और दिल से उनके लिए शुभकामना भी निकलती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप कई बार वॉक करने जब हम जाते हैं तो भी बहुत से लोगों से हमारी पहचान होती है, बहुत से लोग हमें मिलते हैं, तो उनके पास जाकर कैसा लगता है आपको? कभी कभी तो हम वॉक करने के बाद बैठकर कुछ देर बात भी करने लगते हैं और वक्त यूं गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके पास जाकर आपका वक्त यूं ही गुजर जाता है? हमें बताइए, और साथ ये भी बताइए कि जो गीत अब सुनवाने वाले हैं वो किसने लिखा है।

नीला आकाश फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़ें, राजा मेहंदी अली खां के बोल थे, जो जवाब हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही दिया। चलते रहने का नाम ही जिंदगी है, मंजिल मिले या ना मिले, हर कदम हमें कुछ नया सिखा जाती है। रास्ते बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन जो मुस्कुराते हुए चलता रहता है वही जिंदगी के हर सफर को यादगार बना लेता है। जिंदगी ठहरने से नहीं, चलते रहने से महकती है। हर नया कदम एक नई उम्मीद लेकर आता है और हर सफर हमें अपने बारे में कुछ ना कुछ बताता है। वही हमारे साथी ने बताया कि मेरी बेटी ने थोड़ी देर से चलना सीखा था, क्योंकि वो एक भरे पूरे परिवार में पली बड़ी है, इसलिए सब उसे दिन भर गोद में ही लिए रहते थे। फिर जब मेरे पापा उसके लिए एक तीन पहियों वाली गाड़ी लेकर आए, तब उसने चलना सीखा। उस यादगार दिन की तस्वीर आज भी मेरे पास है। वहीं हमारे साथी ने भी कथा ये याद किया कि हम जब छोटे थे तो लकड़ी की तीन पहियों वाली गाड़ी होती थी, एक खरीद ली जाती थी तो कई बच्चों के काम आती थी, बाद में तरह तरह के रंग बिरंगे वॉकर आने लगे। जिंदगी किसी मंजिल का नहीं बल्कि चलते रहने का नाम है, ऐसा हमारे साथी का कह

है और हर कदम हमें एक नई कहानी से मिलवाता है, हर मोड़ कोई नया एहसास दे जाता है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि निरंतर चलते रहना ही जीवन की रीत है, चलते हुए ही जिंदगी में अनेक मोड़ आते हैं जहां से जिंदगी का फलसफा बदल जाता है। चलते हुए जीवन के सफर में अनेक साथी मिलते हैं जो जिंदगी भर याद करते हैं या जिंदगी भर याद रहते हैं। और हमारे साथी ने बहुत से गीत लिखे हैं जिनमें से कुछ गीत तो शामिल हो गए हैं। हमारी एक और साथी कहती हैं कि जिंदगी सचमुच एक खूबसूरत सफर है जहां हर कदम हमें किसी नई मंजिल, नए रिश्ते और नए अनुभव की ओर ले जाता है। कभी चलते चलते कोई अपना मिल जाता है तो कभी वक्त हमें जीवन के अनमोल सबक सिखा देता है। राहें बदलती रहती हैं, मोड़ आते रहते हैं, लेकिन जो मुसाफिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहता है वही जीवन की असली खूबसूरती को महसूस कर पाता है। हर मुलाकात एक नई याद बन जाती है और हर सफर दिल में एक नई धुन छोड़ जाता है। इसलिए जीवन का संदेश यही है कि रुकना नहीं, चलते रहना है, क्योंकि मंजिल से अधिक खूबसूरत वो सफर होता है जो हर पल हमें कुछ सिखाता है। तो चलते तो रहना है, चलते चलते हमारे पांव की खूबसूरती देखना भी बहुत ज़रूरत है, खूबसूरती से ज़्यादा मजबूती। तो किस तरह से मजबूत बनाते हैं आप अपने पैरों को, चलते चलते तो बनाते ही हैं, और उनका ख्याल रखने के लिए किस तरह के जूते चप्पल आप लेते हैं ये बताइए। कभी कभी हम बहुत ही सुंदर दिखने वाले चप्पल जूते ले लेते हैं और उससे पाँव में होती है तकलीफ। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किस फिल्म का है।

ताजमहल फिल्म का ये गीत आपने सुना। और चलते रहने की बातें हो रही हैं आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में, क्योंकि चलना ही जिंदगी है ऐसा हमारे साथियों का भी मानना है। और हमारे साथियों से हमने ये भी पूछा था कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको देखकर या जिसके साथ थोड़ी देर बैठकर आपको वक्त का पता ही नहीं चलता और ऐसा लगता है कि भाई ये वक्त कहाँ चला गया। तो इस तरह के लोगों की बातें हमारे साथियों ने कही है। हमारी एक साथी कहती है, एक बड़ा ही प्यारा दोस्त जिसके साथ बात भले ही ना हो पर उसका साथ हमेशा साथ रहता है, मानो वो हमसे हर समय बात कर रहा हो। प्यारा सा एहसास ही इतना प्यारा होता है कि मानो वो हमारे आसपास ही है, और कभी कभी उसकी बातें इतनी अपनी सी होती हैं मानो वो हमारी ही बात कह रहा हो। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि जिंदगी का सफर यूं ही नहीं कट जाने वाला, हम सफर साथ हो तो रास्ते यूं ही कट जाते हैं। बहुत से मित्र छूट गए, कुछ राह बदल गए, सफर ये VBS के साथ सुहाना हो गया है। वहीं हमारे एक और साथी ने बताया कि कॉलेज के लास्ट ईयर में एग्जाम के बाद हमें सभी दोस्तों से बिछड़ने पर ऐसी ही इच्छा हुई थी कि काश ये समय और हम यहीं रुक जाएं, पर ऐसा संभव कहां, जीवन तो बहता पानी है, चलता रहता है। आज भी उन सबसे टच में है, कभी कभी मिलना जुलना हो जाता है। मोबाइल के आविष्कार को शत शत नमन की बातचीत होती रहती है। वाकई मोबाइल के जरिए तो हम अपने साथियों से सबसे मिल लेते हैं और बातें कर लेते हैं, कितना ही अच्छा ये वक्त होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जब कोई साथ बैठा है बातें कर रहा है तो वो ना जाए, कुछ देर के लिए रुक जाए, और ऐसे में हम उसे आवाज़ देकर रोकने की कोशिश भी करते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप किस व्यक्ति के साथ कुछ और देर बिताना चाहते हैं और उसे रोकना चाहते हैं और उसे आवाज़ देते हैं? कौन सा गीत गाते हैं उस वक्त, ये भी हमें बताइएगा। और हमारे साथी कह रहे हैं कि हम लोग सोमनाथ और द्वारिकापुरी की यात्रा पर गए थे तो हमारे साथ के लोगों से 7 दिन में इतना मेल मिलाप हो गया थी। यात्रा के बाद अलग होते समय बहुत दुख हो रहा था, करीब 80 लोग थे। तो ये भी एक तरीका होता है जब हम अलग अलग सफ़र के दौरान मिलते हैं, लेकिन इन दिनों तो आपस में बने रहना, आपस में मिलते जुलते रहना, बातें करना आसान है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर उत्तरदायित्व का बोझ है और राह में किसी खास व्यक्ति से सफ़र बाधित हो रहा है तो समझौता कर जाएं, त्वरित फैसले से नुकसान हो सकता है। हमारे एक और साथी को कछुए की याद आ गई, कछुआ और खरगोश की वो जो कहानियां हैं उससे उन्हें याद आ गया कि कछुआ निरंतर चलता रहता है और अंत में उसकी जीत होती है। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्या आप अपने जीवन में किसी व्यक्ति को रोकना चाहते हैं ज़्यादा देर और चाहते हैं कि कुछ पल ऐसा निकले जिसमें

उदित नारायण और साथियों की आवाज में आपने सुना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से ये गीत, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत। और हमने अपने साथियों से बहुत सी, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई इसमें तो रुकने की बात है, चलने की बात कहाँ है, लेकिन रुका कितनी अच्छी तरह से जा रहा है ये तो देखिए। और हमारे भारत में रुकने वाला शब्द भी तो शामिल है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ताजमहल को देखने के लिए

और चलना पड़ता है। ताजमहल फिल्म का ये गीत सुनकर उन्हें याद आया है। तो हम ये बताएं कि बहुत से जो ऐसे स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं, उनको देखने के लिए बहुत चलना ही पड़ता है। और जब भी हम सखी सहेलियां किसी कार्यक्रम में उसकी जानकारी देते हैं तो आपको बताते ही हैं कि एक आरामदायक फुटवेयर आप साथ में लेकर जाएं, क्योंकि बहुत चलना पड़ेगा। और कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं चले गए घूमने के लिए और आपको इतना ज़्यादा चलने का बिल्कुल भी मन नहीं था और किसी तरह से आप चल के जाकर देखने के लिए गए किसी नज़ारे को या किसी दर्शनीय स्थल को, और आपको बहुत आनंद आया और ऐसा लगा कि चलना हमारा सार्थक हो गया। या कभी ऐसा हुआ है कि आप चले ही नहीं और उस जगह की सैर ही नहीं की, तो दोनों बातें हुई हों तो हमें से साझा कीजिए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जूते अब हमारे शौक के अधीन नहीं है, उम्र के उत्तरार्ध में पापा ये पहनो ये वाला अच्छा लगता है कि उनकी मर्जी से शासित होते हैं। जितनी खर्च पोशाकों में उम्र भर की होंगी उतनी बच्चे मेरे लिए दो जोड़ी जूते पर कर देते हैं। भाई बड़े ही खुश नसीब हैं आप, ऐसा हम कहते हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि जूते और चप्पल अपने पैरों को फिट आए ऐसे लेने चाहिए, छोटी हाइट वाले हील लेने चाहिए जो चलने में दिक्कत ना हो। तो ऊंचे लोग टेपर हील वाले पसंद करते क्योंकि हाइट ज़्यादा ना दिखाई दे, ऐसा इनका कहना है। पर लेकिन हील वाले जूते लेने के लिए कह रहे हैं, मतलब छोटी हाइट जिनकी, उन्हें हील वाले जूते ले लेने चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मुझे कभी भी जीवन का या किसी समस्या का या बच्चों के विषय में कोई फैसला लेना होता है तो अपनी धर्मपत्नी के पास बैठता हूँ, सारी बात समझाता हूँ और साथ में दोनों अदरक इलायची वाली चाय पीते हुए सही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। अगर धर्मपत्नी कोई सही सुझाव देती है तो मैं यही कहता हूँ कि आपके बिना मैं अधूरा हूँ। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि मुझे लाइट वेट जो जूते होते हैं वो बहुत पसंद आते हैं। हमारे एक और साथी ने कहा कि सुबह 3 किलोमीटर पैदल घूमने जाते हैं और आते हैं, शाम को साइकिल में भी इतना ही घूम आते हैं। भाई हमारे श्रोताओं की सेहत का राज तो आज खुल रहा है क्योंकि वो बता रहे हैं कि कितनी वॉक कौन कर रहा है और सारे के सारे श्रोता वॉक करने पर जा रहे हैं, कोई साइकिल चला रहा है, कोई दौड़ने जा रहा है। भाई वाह, हमें तो आपसे सीख लेनी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बिल्कुल वॉक करने से ही बहुत से लोगों से जान पहचान हो गई है, बहुत ज़्यादा किसी के बारे में जान पहचान नहीं है, लेकिन हम टहलने के बाद कुछ देर बैठकर खाना बनाना, फल सब्जियों के भाव, घुटनों और पैर के दर्द के बारे में और भी कुछ बातें करते हैं, हंसते हैं, फिर ताजी स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ अपने अपने घर को लौट आते हैं। हमें तो पूरा यकीन है कि जब इस दर्द की बातें होती होंगी तो उसकी दवा भी समझ में आती होगी, बहुत से लोग सुझाव भी देते होंगे। हमारे एक और साथी का कहना है कि सुबह की वॉक सिर्फ सेहत ही नहीं, नए रिश्तों नई मुस्कानों का भी जरिया बन जाती है। राह चलते जब नए लोग मिलते हैं तो कुछ पल की बातचीत भी दिन को खुशनुमा बना देती है। कभी कभी अनजान चेहरे भी जीवन में अपनापन और नई सकारात्मक ऊर्जा भर जाते हैं। एक और साथी का कहना है कि मैं प्रतिदिन सुबह 1 से 1.5 घंटे तक हमारी क्रिकेट टीम के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। खेल पूरा होने के बाद हमारी टीम के कुछ खिलाड़ी रुकते हैं तो उनके साथ बातें करते करते वक्त कहाँ कट जाता है पता नहीं चलता। तो इस तरह से हमारे सभी साथी खेल से या फिर वॉक से सेहत से जुड़े हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है और आप हमें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि भाई समय तो बीतता ही जाता है और सही समय पर किया गया सही काम भी काम आता है। तो इस वक्त मुझे लगता है कि सही काम ये है कि एक गीत सुनवा देते हैं। बताइए किसकी आवाज़ में गीत है।

गोलमाल फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। आपने आवाज बिल्कुल सही पहचानी। हमारे एक साथी ने बताया कि माँ शारदा शक्तिपीठ मेहर गया था, वहां पर लगभग 1000 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बहुत थक गया था। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि मैंने अपनी मॉर्निंग वॉक साइकिलिंग से शुरू करते हैं, फिर मॉर्निंग वॉक करते हैं काफ़ी लंबे समय तक। अब रिटायर बैंकर हैं, 69 ईयर के हैं और उन्हें हमेशा अच्छा लगता है ये करना। वही हमारे एक साथी का कहना है कि उन्होंने 6000 स्टेप का एक बंधन रखा हुआ है। हमारे और साथी जो हैं वो भी बता रहे हैं, सब अपनी अपनी व्यायाम की बातें करने लगे हैं अब तो। ऐसा हमें लगा कि भाई आप इतनी अच्छे से चलते फिरते रहते हैं और वॉक करते हैं, योग करते हैं, ये सारी बातें हमारे साथी बताने लगे और स्वस्थ रहने के नुस्खे भी अब आने लगे हैं। अब हमें पता चल रहा है कि आपका जीवन इतना आनंदमय कैसे रहता है, किस तरह से इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप करते हैं। क्योंकि सुबह सुबह जब आप चलते हैं, जाते हैं, कहीं घूम फिर कर आते हैं तो आपके मन में भी एक अलग सी ऊर्जा रहती है, अलग सी सकारात्मकता रहती है जो हमें आपके कमेंट्स के जरिए मिलती है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चलते चलते जीवन हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, कुछ लगे लोग राह में मिलते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं, कुछ याद बनकर दिल में बस जाते हैं। सफर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, हर मोड़ पर कोई ना कोई एहसास हमारा हम सफर बन जाता है। वैसे हमारे एक साथी का कहना है कि भाई मैं तो सारे दिन चलती रहती हूँ और घर में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, रेडियो में गाने चलते रहते हैं और मेरा हाथ बराबर चलता रहता है, कुछ भी करते हुए उनका हाथ काम में लगा रहता है। हमारे एक साथी ने बताया कि मेरी बेटी पूना में पढ़ रही थी, जाते जाते ट्रेन में एक लड़के से उसकी मुलाकात हो गई, हम लोगों को बताया भी। वो अक्सर यूं ही ट्रेन में मिलते रहते और उन दोनों ने शादी करने का निश्चय कर लिया। हम लोगों के लाख विरोध के बाद भी शादी हो गई और दामाद बहुत ही अच्छा और शरीफ है। तो इस तरह से जो ट्रेन में हम सफ़र मिला वो जीवन में हम सफ़र बन गया, बहुत ही अच्छी बात। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम प्रतिदिन कम से कम 5 अधिकतम 8 किलोमीटर वॉक करते हैं, सुबह 5:30 से 8 बजे तक 5 तो कम से कम चलते ही है। और एक साथी कहने कि सुबह योग और रात को खाने के बाद टहलने जाते हैं। हमारे एक साथी ने बताया कि कनाडा में नायग्रा फॉल देखने के समय उन्हें ऐसा लगा कि उनका दिल ये कह रहा था कि वापस ही नहीं आना है, वहीं रुक जाएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैरों में हाई हील सैंडल किस उम्र तक पहननी चाहिए महिलाओं को। भाई ये सवाल तो किसी भी महिला के लिए पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जिसकी जितनी भी श्रद्धा भक्ति हो कह सकते हैं, या कहें कि जिसके पैर जितनी इजाज़त दें, जो अपने पैरों को अच्छी तरह से संभाल सकें वो

उम्र का तो कोई इसमें सीमा रही नहीं, आप अपनी मर्जी से पहन सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि मैंने ताजमहल 15 बार देखा है, तो अब तो आपको पूरा याद हो गया होगा ताजमहल की कहाँ जाने से क्या क्या होता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये जिंदगी बड़ी अजीब है, मंजिल का लालच देती है और सारी उम्र इंसान को सफर में रखती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गुरु जी के आश्रम में जाते हैं, वहाँ के वातावरण में ऐसी शक्ति होती है कि कुछ देर वापस लौटने का मन नहीं करता। एक साथी ने कहा कि उन्हें एक गाना मेरे दिल के बहुत करीब है और आपने पूछा कि किसी के साथ रहने से अगर वक्त ठहर जाए तो गाना जब भी आता है तो मुझे मेरे पतिदेव जो इस दुनिया में नहीं है उनकी याद आती है और मेरे लिए वो ये गाना हमेशा गाते थे। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इस गीत के जरिए उनकी याद एक बार फिर हमने दिलाई। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नाना नानी जब आते थे कुछ दिन रुकते थे और फिर जब वो जाने लगते तो हम बच्चे रोते थे, अगले दिन जब हम लोग स्कूल जाते तब वो चुपके से जाते थे। अच्छा ये बताइए कि नाना नानी के जाने से तो ऑलमोस्ट सभी रोया करते थे क्योंकि साथ में जाने का मन करता या एक अलग ही प्रेम जो मिलता था, लेकिन ये बताइए कि स्कूल जाने के लिए कितने लोग रोते थे, स्कूल जाने के लिए कितने लोग रोते थे और नहीं जाने के लिए कितने लोग रोते थे, ये बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गीत, हमें बताइए किसने लिखा ये गीत।

घर, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे गुलजार के बोल, और यही हमारे सवाल का सही जवाब जो आपने भी दिया। हमारे एक साथी कह रहे कि मेरे बचपन से एक हसरत थी कि गोलकुंडा हैदराबाद का किला देखूं और वो इच्छा पूरी हुई। वहां पर पहाड़ बहुत ऊंचा था, उस पर चलना आसान नहीं था, लेकिन मैं गया और प्राचीन कला को देख कर आनंद आया। वही हमारे एक साथी का कहना कि 11 गीत की लिखी हुई इबारत में से 9वां और 11वें नंबर पर लिखा गीत शामिल हुआ। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो स्कूल जाना बड़ा ही अच्छा लगता था, नहीं रोए कभी भी। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सरल सरल सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि कुछ हार्ड सवाल पूछें, सरल सवाल में इतना मज़ा नहीं आता। तो बिल्कुल आप बताइए कि कौन सा मुश्किल सवाल होना चाहिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक बार जब हम सब छोटे थे तब राजस्थान मामा जी के विवाह में कार्यक्रम में गए थे, तब माता चौमुंडा देवी के मंदिर के दर्शन के लिए गए। मंदिर इतना ऊँचा है कि सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बड़े बूढ़े तो थक गए थे, हम बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था। एक और साथी कहती हैं कि मैं रोज़ स्कूल जाती थी, चाहे बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, फुल अटेंडेंस होती थी मेरी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैरों में तकलीफ होने के बावजूद डॉक्टर चलते रहने की सलाह देते हैं, एक लोहे की मशीन अगर बहुत दिन तक चलाई न जाए तो उसमें जंग लग सकती है। इसी प्रकार यदि मनुष्य रुक गया तो धीरे धीरे पैर की हड्डियां जाम होने लगती है, इससे थोड़ा बहुत चलते रहना चाहिए। बिल्कुल सही सलाह आपने दी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उनके बचपन से हसरत थी घूमने जाने की, ये तो हमने पढ़ ली। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मसूरी यात्रा के दौरान मैंने लैंडोर तक करीब 11 किलोमीटर के पैदल चढ़ाई की। जब मैं वहां लैंडोर बैक हाउस पहुंची तो उसके मशहूर केक और पेस्ट्री खाए और स्वाद आज तक मुंह में बसा हुआ है। एक और साथी कहने कि मैंने मेरी दीदी की छोटी सी लड़की को बहुत चलाया जब वो 1-2 साल की थी। हमने किसके चलना सिखाया, हमारे चलते बोलते रहने की तब की गुरु तब माँ ही थी। माँ ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। जब बच्चे अचानक उठने की कोशिश करने लगते हैं तो माँ को ये समझ में आ जाता है कि वो चलना चाहते हैं और धीरे धीरे वो उन्हें पकड़ कर चलना सिखा देती हैं। एक साथी कह रहे हैं कि समय और बादल के अलावा कोई ईमानदारी से नहीं चलता। और हमारे साथी कह रहे हैं कि हम जीवन और उसके अंतर हमें निरंतर सक्रिय रहने, चलने फिरते रहना जरूरी है। वैसे तो चलते चलते रहने के बहुत से गीत हैं, कुछ याद आ रहे हैं, इन्होंने गीतों के नाम लिख भेजे हैं, हमें पूरी उम्मीद है उसमें से कुछ गीत तो शामिल हो ही गए हैं। अब कार्यक्रम का अंतिम गीत, हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत, किसकी आवाज़।

चलते चलते फिल्म से किशोर कुमार को आप सुन रहे थे और हम अलविदा नहीं कह रहे हैं, हालांकि वक्त हो गया है, लेकिन विविध भारती का सुरीला सफर तो रहता है आपके साथ दिन रात लगातार। इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत।

0: त्रिवेणी। श्रोताओं को नमस्कार। आज की त्रिवेणी रिश्ते नातों पर आधारित है। दोस्तों, रिश्ते नातों के बिना परिवार समाज की कल्पना नहीं कर सकते। हर व्यक्ति का व्यक्ति से कोई ना कोई रिश्ता जुड़ जाता है जब उनकी मुलाकात होती है। जब बच्चा परिवार में जन्म लेता है, पहला रिश्ता माता से, पिता से, उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों से जुड़ता है। दादी, बाबा, चाचा, चाची, नानी, नाना, मामा, मौसी, बुआ, भाई, बहन, सब रिश्ते करीब आ जाते हैं, जिनसे मिलता है अपार ममता, प्यार और दुलार। ये रिश्ते नाते विश्वास, प्यार, व्यवहार, सुरक्षा, भरोसे से निखरते हैं। इनमें सच्चाई का होना बहुत ज़रूरी है। बिना किसी भेदभाव के अपना पराया जैसी भावनाओं से परे मानसिकता का स्पष्ट होना आवश्यक है। इनमें मिलना मिलाना, आदर सम्मान का होना बहुत ज़रूरी है। आपसी बातचीत, संवाद, संतोष, धैर्य भी हो आपस में।
1: तेरा मुझे

दोस्तों, इन रिश्तों में प्रेम की धारा बहती है। रहीम जी ने भी कहा है कि रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रिश्तों में प्यार का होना बहुत ज़रूरी है। इनमें मतभेद हो जाए तो दूरियां बढ़ जाती हैं। ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। बरसों तक ये रिश्ते नाते फलते फूलते रहा करते थे, तब संयुक्त परिवार हुआ करते थे। बच्चे परिवार में कैसे बड़े हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। आज एकल परिवार हो गए हैं, बच्चों की संख्या भी कम हो गई है। ये रिश्ते नाते बुआ चाचा, भाई बहन, मौसी मामा सब खत्म होते जा रहे हैं। रिश्तों की रौनक त्यौहार, उत्सव और मांगलिक कार्यों में बड़ी अच्छी लगती है। आज इनमें भी कमी आ गई है, या सब अपने आप में इतने व्यस्त होते जा रहे हैं कि शामिल होने में असमर्थता दिखाते हैं।

दोस्तों, आजकल रिश्ते नाते डिजिटल हो गए हैं। फोन, वीडियो कॉल्स या मैसेज से बधाई संदेश, संवेदना प्रकट करना, बस दे दिया, उनका ये फर्ज पूरा हो गया। इनमें कितना अपनापन होता है या सिर्फ खाना पूर्ति, ये हम सभी अच्छी तरह से समझते हैं। जो पहले रिश्ते नातों का आपस में एक दूसरे से घर आना जाना होता था, मिलकर रसोई बनाना, एक साथ खाना, कितनी गप्पे मारना, सुख दुख में शामिल होना, परिवार को ताकत दे जाता था कि एक आवाज़ पर एक तार, टेलीग्राम, चिट्ठी मिलते सब आ जाएंगे। आज इनमें भी कमी आ गई है। लोग रिश्ते अब दिल से नहीं, ज़रूरत से बनाने लगे हैं। कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन वे तब तक आपके

साथ हैं जब तक उन्हें बदले में कुछ मिले। वक्त के बदलते दौर में हमें मिलकर इन्हें संभालना होगा। रिश्तों में फिर से मुलाकातों का, संवाद का दौर लगाना होगा। रिश्तों की मीठी यादों को साझा करें, वे फिर से लौट आएंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। राष्ट्रवादी चिंतक और भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह पार्क औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति देगा। लगभग 173 एकड़ में विकसित होने वाला यह स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का नया आधार माना जा रहा है, जिसमें आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, आईटी एवं एआई आधारित सुविधाएं और लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। यह परियोजना वर्क लिव ग्रो मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें उच्च मूल्य विनिर्माण, गारमेंट, टॉयज, आईटी और एआई से जुड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे।
1: सतगढ़ी में बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क, रोजगार के लिए जहाँ रहना, खाना, आराम करना, रोजगार पाना, समग्र रूप से भोपाल बदलते समय में एक अलग प्रकार की आर्थिक समृद्धशाली राजधानी बदलने के लिए जा रहा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर अगर कहीं बनेगा तो भोपाल में बनेगा। और रोजगार के लिए आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सबसे कम बेरोजगार की दर रही है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर में संभाग स्तरीय उन्नत कृषक संवाद सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ये आयोजन आज शाम राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित होगा। डॉक्टर यादव किसानों से संवाद कर उनके प्राकृतिक खेती के संबंधित अनुभव भी सुनेंगे। मुख्यमंत्री हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरिकल्चर गार्डन का भूमि पूजन भी इसी कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। इस हाईटेक नर्सरी और फ्लोरिकल्चर गार्डन के प्रथम चरण के कार्य के लिए सरकार द्वारा 13 करोड़ रूपये की धनराशि मंजूर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता स्थित प्रतिष्ठित प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। ये यात्रा भारत और इंडोनेशिया के बीच 1000 वर्षों से चले आ रहे गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर थे और ये भारत के बाहर भी भारतीय वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी 2026 परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा 7 जुलाई तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खातों के विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एनटीए ने बताया कि अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद इस वर्ष 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द होने के बाद एनटीए द्वारा रिफंड प्रक्रिया चलाई जा रही है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। आज प्रदेश के 23 जिलों में अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं रतलाम, उज्जैन, धार, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, गुना, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और पन्ना में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और शिवपुरी सहित प्रदेश के बाकी जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में अब तक औसत 6.4 इंच बारिश हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में कंठाल नदी पर सुसनेर बामनिया खेड़ी के बीच बनने वाले 50 मीटर लंबे पुल का भूमि पूजन कल सांसद रोडमल नागर ने किया। नर्मदापुरम में वन महोत्सव 2026 के तहत हर्बल पार्क से चौरे घाट तक वृहद पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल में कल से 21 दिवसीय संस्कृत रूपक निर्देशन राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत हो रही है, जिसका उद्घाटन कल सुबह 10:30 बजे भवभूति सभागृह में किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
3: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
3: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का

0: प्रदान देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
3: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

0: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
1: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
0: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलेजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में 3री बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभार

0: संख्या से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में, साहिल उद्यानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

गुलजार के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। बंदिनी फिल्म के इस गीत में संगीत सचिन देव बर्मन का। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

पारस मणि फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, फारूक कैसर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं हाफ टिकट फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।

0: वो गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया,
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशिक फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, मुकेश और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब आपको अंतिम गीत सुनवाते हैं, शमशाद बेगम और उषा मंगेशकर की आवाजें। ब्लफ मास्टर फिल्म का ये गीत सुनिए, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और इस गीत के साथ नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली का। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को और मंजरी आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: तो दीपा तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को भीगा भीगा सा नमस्कार। जहां पर गर्मी पड़ रही है वहां पर हम कहेंगे कि मेरी आवाज से दीपा की आवाज से और हमारे जो सखी सहेली में गाने बजेंगे उसको मिला करके एक भीना भीना सा प्यारा प्यारा सा नमस्कार।
1: बिल्कुल। और यहाँ तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है साथियों कि ऐसा लग रहा है कुछ हिस्सा इस बरसात का वहाँ चला जाए जहाँ अब तक बरखा रानी बरसी नहीं।
2: बिल्कुल है ना, जरूरी है सब जगह बैलेंस होता रहे बरसात का तो ज़्यादा ठीक है
1: जी,
2: क्योंकि यहाँ और पर तो लग रहा है बस अब रुक जाओ थोड़े दिन, सांस ले लें दो हमको, थोड़ा धूप हमें भी दे दो, ऐसी हाल
1: कुछ ऐसा ही हाल है। और इस बदलते मौसम में हम आशा करते हैं आप सब अपना बहुत अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, तो आप अपने परिवार का और अपना सभी का स्वास्थ्य का खूब अच्छा ध्यान रखिए।
2: बिल्कुल। और चलो दीपा हम बता देते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रादेशिक व्यंजन। सबसे पहले तो खान पान की बात, क्योंकि दीपा आ गई मंजरी आ गई है तो कुछ ना कुछ
1: कैसे
2: तो बने
1: नहीं हो कि बातें भोजन पान की होगी
2: बिल्कुल, क्योंकि पंजाबी छोले आजकल हम लोग बताने वाले हैं और भटूरे साथ में, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका। तो मेरे ख्याल से सबके लग रहा है सबको स्वाद आ रहा होगा छोले भटूरों का, है ना,
1: शायद आ रहा होगा। और ये देखिए ना इस मौसम में ऐसी कुछ चीजें चटपटी और कुछ तली भुनी चीजों का को हम उसका आनंद ले सकते हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो बिल्कुल लेना भी चाहिए,
2: लेना भी चाहिए। और अब हम बात उसके लिए बात करेंगे, अगला विषय मेरा है वन महोत्सव, तो जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चल रहा है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और आज है कथा सुधा
1: जी
2: में कहानी का दिन है, तो आज दीपा कौन सी कहानी हम लेकर आए हैं?
1: आज हम मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी दो बहनें इस कहानी का हम सुनेंगे भाग एक
2: जी।
1: और फिर देखो महीने की ये शुरुआत है, शुरुआत के महीने में तो ऐसा होता है ना जब सैलरी आती है या व्यापार में अगर आप हैं तो जो भी एक नियत आप पैसे जो घर पे लेके आते हैं तो शुरुआत में तो जिसको सैलरी आपको देनी है दे देते हैं, घर में जो आपके काम करते हैं जो मदद करते हैं उनको दे देते हैं, स्कूल की फीस वगैरह चली जाती है। उसके बाद 15 तारीख से ही फिर ऐसा लगता है खिंचातानी से कुछ शुरू होने
2: जाती है कि भाई अब बजट बनाए, हाँ, खर्चा
1: क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है,
2: कोई कुछ कहता तो नहीं भाई अभी रुक जाओ, अभी नहीं,
1: सही बात।
2: बचत करने के बारे में हम सभी सोचते हैं और महिलाएं खासकर सोचती है, हालांकि थोड़ा वो खर्चा भी थोड़ा करती है मनमर्जी की, लेकिन बचत के प्रति वो जागरूक भी रहती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन देखो मौसम को हम लोग थोड़ा सब जगह भेज देते हैं गीतों के द्वारा, तो सभी सखियों और सखाओं को सुनाते हैं ये गीत।

0: साथियों, अभी तो सावन आया नहीं है, लेकिन हम उसे पुकार रहे हैं कि आए। लेकिन फिलहाल आषाढ़ के महीने में ये जो बरसात है हर जगह पहुंचे, हमारी तो यही शुभकामनाएं।
1: क्योंकि हरियाली छा जाती है, तो हरियाली छाते बस सावन याद आने लग जाता है। और सावन का मतलब होता है कि बस अब हाथों में मेहंदी लगाएंगे, श्रृंगार करेंगे, हरी हरी चूड़ियां पहनेंगे,
0: सब होगा, सब होगा मंजरी। लेकिन पहले चलो सुन लेते हैं कहानी
1: कथा सुधा।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना

0: अच्छा लगेगा।
1: हिंदी कथा साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी है दो बहनें। शीर्षक के अनुरूप कहानी दो बहनों के पारस्परिक संबंधों पर केंद्रित है। प्रेमचंद ने कहानी के मुख्य पात्र, दोनों बहनों के बाह्य आकार और रूप रंग का वर्णन करने के साथ ही उनके मन का भी सूक्ष्म विवेचन और विश्लेषण किया है। कहानी में प्रवाह है, धन की संपन्नता और विपन्नता के अनुरूप पात्रों का चरित्र चित्रण और पात्रों के चरित्र का विकास बहुत स्वाभाविक रूप में किया गया है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में आदर्श और यथार्थ का अद्भुत समन्वय है। दोनों बहनें और उनके पति जिस मानसिक अवस्था और शैक्षिक स्तर के हैं, उसी के अनुसार शब्दों के प्रयोग, नाटकीयता के गुण और संवाद योजना के कारण कहानी जीवंत होती है। वे यथार्थ का चित्रण करते हुए सदा आदर्श पर दृष्टि रखते हैं, यही इस कहानी में भी परिलक्षित होता है। मुंशी प्रेमचंद की स्पष्ट धारणा है कि साहित्यकार को मानवीय स्वभाव की उज्ज्वलताओं को दिखाने वाला होना चाहिए, यही इस कहानी का मर्म भी है। भाव और पात्र के अनुकूल भाषा का सफल प्रयोग इस कहानी की विशेषता है। अत्यंत मार्मिक और हृदय को छू लेने वाली कहानी है दो बहनें। इसमें प्रेरणा देने की शक्ति के साथ साथ पाठक को चिंतन में लीन करने की भी अद्भुत क्षमता है। तो आइए सुनते हैं कथा सुधा में मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। आज इस कहानी की पहली कड़ी।
2: दो बहनें दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है। बेशकीमत साड़ी और बेलदार उन्नाबी मखमल के जंपर ने उसके हुस्न को और भी चमका दिया है। वही राम दुलारी जो लड़कपन में सर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी, आखिरी बार रूप कुमारी ने उसे उसकी शादी में देखा था। दो साल कबल तक भी उसकी शक्ल और सूरत में कुछ ज्यादा तगय्युर ना हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर उतनी ही दुबली, उतनी ही जर्दरू और उतनी ही बदतमीज, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो और हुस्न उसने कहां छुपा रखा था।
3: नहीं नहीं, नजरों को धोखा हो रहा है, ये हुस्न नहीं महज दीदा जेबी है। रेशम मखमल और सोने की बदौलत नक्शा थोड़े ही बदल जाएगा, फिर भी वो आंखों में समाई जाती है। 50 औरतें जमा हैं मगर ये कशिश और किसी में नहीं।
2: कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते वक्त उसने अपनी सूरत देखी थी, उसे चमकाने के लिए जितना साइकिल कर सकती थी वो किया था, लेकिन अब वो सूरत जैसे याददाश्त से मिट गई है। उसकी महज एक धुंधली सी परछाई जहन में है, उसे फिर से देखने के लिए वो बेकरार हो रही है। यूं तो उसके साथ मेकअप के लवाजमात के साथ आईना भी है, लेकिन उस मजमे में वो आईना देखने या बनाव सिंगार करने की आदि नहीं है। ये औरतें दिल में खुदा जाने क्या समझे, यहाँ कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में तो ज़रूर होगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई और कदे आदम शीशा में अपनी सूरत देखी। उसके खद व खाल बेएब हैं, मगर वो ताजगी में, वो शगुफ्तगी, वो नज़र फरेबी नहीं है। राम दुलारी आज खुली है और उससे खुले जमाना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसे तस्कीन नहीं हुई। वो राम दुलारी से हेटी बनकर नहीं रह सकती।
3: ये मर्द भी कितने अहमक होते हैं, किसी में असली हुस्न की परख नहीं। उन्हें तो जवानी, शोखी और नफासत चाहिए बस। आंखें रख कर भी अंधे बनते हैं। मेरे कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा

0: फिर देखो ये सारा जादू कहाँ उड़ गया है। चुड़ैल सी नजर आए, अब इन हमकों को कौन समझाए। से राम दुलारी के घर वाले तो इतने खुशहाल न थे, वो शादी में जो जोड़े और जेवर आए थे वो भी बहुत दिल शिकन थे। उसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और शौहर कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी 2-4 दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं। अब अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने का मर्ज कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है, लेकिन इस तरह बन ठन कर निकलेंगी गोया कहीं की राजकुमारी है। बिसातियों के, दर्जियों के और बजाज के तकाजे सहेंगी, शौहर की घुड़कियां खाएंगी, रोएंगी, रूठेंगी, मगर नुमाइश के जुनून को नहीं रोक सकें। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहां तो बेहयाई पर कमर बांध ली। कोई कितना ही हंसे, बेहया की बला दूर। इसको तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर उसकी खूब तारीफें की जाए। राम दुलारी ने जरूर जरूर किसी से जेवर और कपड़े मांग लिए हैं। मैं जानती हूं ये बेशर्म जो है,
1: उसके चेहरे पर गुरूर की सुर्खी झलक पड़ी। ना सही उसके पास जेवर और कपड़े, किसी के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं, भगवान उन्हें जिंदा सलामत रखे। वो इसी में खुश है, खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से ही तो जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं पर इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी की बद्दुआ तो नहीं लेते। इस तरह अपना दिल मजबूत करके वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा,
2: जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं।
1: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़ रे दिमाग, गोया उसका शौहर लाठ ही तो है। अकड़ कर बोली,
0: हाँ तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल ये भी गनीमत है, मैं तो अच्छे अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। और तेरा शौहर अब बीए में होगा? हा?
2: नहीं, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया है बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं, अब 250 रुपया माहवार कमाते हैं, कमीशन ऊपर से 500 रुपया रोज सफर खर्च के भी मिलते हैं। अब ये समझ लो 500 का औसत पड़ जाता है। 150 रुपया माहवार तो उनका जाती खर्च है। बहन ऊंचे होदे पर है तो अच्छी हैसियत भी बनाए रखनी लाजिमी है ना।
0: वो तो है भाई।
2: 350 रुपया बेदाग घर दे देते हैं और उसमें 100 रुपए मुझे मिल जाते हैं। 250 में घर का खर्च खुशफेली से चल जाता है। अब एमए पास करके भला क्या करते।
1: रूप कुमारी उसे शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा वक्त नहीं देना चाहती थी, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी सदाकत है कि चेहरे पर शिकस्त की बदमजगी साफ झलक रही है। मगर उसे अपने होशो हवास को कायम रखना है तो इस असर को दिल से मिटा देना पड़ेगा। उसे जिरहों से अपने दिल को यकीन करा देना पड़ेगा कि इसमें 1/4 से ज्यादा हकीकत नहीं है। वहां तक तो वो बर्दाश्त करेगी, इससे ज्यादा कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है, अगर ये रुदात सच निकली तो वो कैसे राम दुलारी को मुंह दिखा सकेगी। उसे अंदेशा है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तमस्खुर के

0: आज से पूछा।
1: जब एजेंटी में इतनी तनख्वाह और भत्ते मिलते हैं तो ये तमाम कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते, भला बताओ जरा। हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं, हा?
0: रामदुलारी बहन की खिफत का मजा उठाते हुए बोली,
2: बहन तुम यहां गलती कर रही हो। एमए तो सभी पास हो सकते हैं।
1: अच्छा,
2: मगर एजेंटी करना किसको आता है भला? ये तो बहुत हुनर का काम है। कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे मगर जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट हो जाए। रुपया पैदा करना दूसरी चीज है, इल्मी फजीलत हासिल करना दूसरी चीज है। अपने माल की खूबी का यकीन पैदा कर देना या जहन नशीन करा देना कि इससे तो बेहतर और देरपा चीज बाजार में मिल ही नहीं सकती, आसान काम नहीं है।
1: वो तो है भाई,
2: एक से एक ग्राहकों से उनका साबिका पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों की ताली कल्ब भी करनी पड़ती है, औरों की तो उन राजाओं और नवाबों के सामने जाने की हिम्मत भी न पड़े, और किसी तरह पहुंच जाए तो सवाल न निकले। शुरू शुरू में उन्हें भी झिझक हुई थी बहन, मगर अब तो इस दरिया के मगर है मगर। अगले साल तरक्की भी होने वाली है।
1: सही कहती हूँ।
0: रूप कुमारी की रगों में जैसे खून की हरकत बंद हुई जा रही है।
1: जालिम आसमान क्यों नहीं गिर पड़ता, बेरहम जमीन क्यों नहीं फट जाती? ये कहाँ का इंसाफ है कि मैं जो हसीन हूँ, तमीजदार हूँ, किफायत शियार हूँ, अपने शौहर पर जान देती हूँ, बच्चों को जान से अजीज समझती हूँ, इस खस्ता हाली में बसर हो रही है मेरे, और ये बदतमीज तन परवर चंचल छोकरी रानी बन गई है। लेकिन कुछ तो उम्मीद है बाकी, शायद मेरी तस्कीन कल्ब का कोई तो रास्ता निकल आए।
0: उसी तमस्खुर के अंदाज से बोली,
1: तब तो शायद 1,000 मिलने लगे होंगे। हा?
2: 1,000 तो नहीं, मगर 600 में शुभा नहीं।
1: हाँ, ऐसे ही कोई आँख का अंधा मालिक बन गया होगा।
2: बहन, व्यापारी आँख के अंधे नहीं होते। हाँ, जब तुम उन्हें 6,000 कमा कर दो ना, तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कोई क्या बेवकूफ बनाएगा भला।
0: तमस्खुर से काम न चलते देख रूप कुमारी ने तहकीर शुरू की।
1: हाँ, वैसे मैं उसको बहुत मुअज्जज पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तोमार बांधो, क्या ये ठीक विद्या है?
2: अरे, इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी गलत करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकीलों को हम अपना लीडर कहते हैं, उन्हें अपनी कौमी सभाओं का सदर बनाते हैं, उनकी गाड़ियां खींचते हैं, उन पर फूल बरसाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है, पैसा। पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता। जिसके पास पैसा हो उसकी पूजा होती है। जो बदनसीब हैं, नाकाबिल हैं, पस्त हिम्मत हैं, वो जमीर और अखलाक की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछ लेते हैं। वरना जमीर और अखलाक को भला कौन पूछता है।
0: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है, इससे मुजीर नहीं। तमस्खुर या तहकीर से वो अपनी तंगदिली के इजहार के सिवा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वाकई लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो वो अपनी किस्मत को ठोक कर बैठ रहेगी। समझ लें कि दुनिया में कहीं इंसाफ नहीं है, कहीं ईमानदारी की कदर नहीं है।
3: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। आज आपने सुनी पहली कड़ी। पात्र परिचय इस प्रकार है: रूप कुमारी, रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी, ममता सिंह, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की पहली कड़ी सुनी। आगे यह कहानी क्या मोड़ लेती है जानने के लिए अगले हफ्ते जरूर सुनिएगा कथा।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी, आईवीएफ या आईयूआई एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लैट्रोस देते हैं, टेट्राजोल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3 और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: तो दीपा, अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं और बात करते हैं बचत के ऊपर.
1: बहुत तो जरूरी है
0: दीपा, बचत करने से पहले हम एक उसी का ही कमेंट है वो उठा लेते हैं. हमारे साथ ही लिखते हैं कि बचत हम दोनों ने अपनी बेटियों और बेटों को अजमेर शहर के बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाया, बहुत ही महंगी शिक्षा थी, तो हमें और बच्चों को भी शुरुआत से ही हाथ टाइट करके बचत करना अनिवार्य हो गया था. कभी बेटों को जब मैं स्वयं ही स्कूल की छुट्टी के बाद लाता और ये कहता कि कचौड़ी खा लो, तो बेटे कहते पापा जी खर्चा नहीं करना है, वैसे ही घर पहुंचकर भोजन करेंगे. ये सुनकर खुशी के मतलब उनकी आंखें जो हैं वो नम हो जाया करती थी और कहते मैं मेरा मन सोचता था कि मेरी मेहनत सफल हुई. अगर बच्चे समझने लग जाएं कि हमें कहाँ पे खर्चा करना है कहाँ पर नहीं करना है, तो समझ लो कि माता पिता की आधी समस्या तो वैसे ही हल हो जाती.
1: बिल्कुल सही कहा. देखो ना, कई बार ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे हम जब खर्च करते चले जाते हैं, तो फाइनेंशियल यानी कि जो वित्तीय अनुशासन है वो अगर हम नहीं रख पाते हैं, तो हमें कभी ना कभी एक आर्थिक तनाव वो आ जाता है, थोड़ा सा एंजाइटी, टेंशन, ये सब चीज़ें आई जाती है. और फिर सहेलियों के मन में ये सवाल आता ही है कि आखिर पैसे इतनी जल्दी खत्म हो क्यों जाते हैं. होता है ना ऐसा?
0: बिल्कुल ऐसा होता है. और यही होता ना कि अक्सर हम जो है बिना योजनाएं बनाए खर्च करते रहते हैं, और छोटे छोटे जो खर्च होते हैं वो सुविधाओं के नाम पर होने वाला व्यय, अचानक की गई खरीदारी होती है, और बचत को टालने की आदत यानी धीरे धीरे पूरे बजट को जो है वो बिगाड़ ही देती है.
1: अरे अरे मंजरी, इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं है. और सखियों, हम आपसे भी कहते हैं इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम अगर थोड़ा सा आपस में अभी जो विचार विमर्श कर रहे हैं और जो बहुत सारे संदेश आए हैं, तो हम कुछ जानेंगे आसान बदलाव के बारे में कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, आपको क्या सही लगता है क्या गलत, वो जरूर बताते चलिएगा.
0: बिल्कुल. और अक्सर लोग ये तय नहीं कर पाते हैं दीपा कि उनकी आय का कितना हिस्सा कहाँ खर्च होना चाहिए. और अब देखिए ना, कुछ खर्चे तो बिल्कुल निश्चित होते हैं कि जैसे मकान का किराया, राशन की खरीदारी करनी है, पेट्रोल भराना है, बिजली पानी वगैरह वगैरह, जैसे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, घर में दूध का बिल देना है, तो बच्चों की फीस जमा करनी है, इन सब खर्चों के लिए पहले से ही राशि तय कर लेने से क्या होता है कि फिजूल खर्च से हम बच सकते हैं. यानी कि जब आप सैलरी लेकर आएं तो एक एक छोटे छोटे बॉक्स बना लें, उसमें सबके हिस्से के पैसे डाल दें.
1: इस तरह से भी कर सकते हैं. बिल्कुल. और कई बार ये भी देखने में आता है मंजरी कि बहुत सारे लोग महीने की शुरुआत में खुलकर खर्च कर देते हैं, फिर जनाब नतीजा तो तय ही होता है ना कि आखिरी दिनों में आर्थिक जो एक टेंशन सी आ जाती है वो बढ़ने लग जाती है. इसलिए जरूरी खर्चों के बाद बचे रकम को पूरे महीने के हिसाब से अलग अलग हिस्से में बांट कर देखना चाहिए, जैसा अभी आप बता रही थी. तो वैसे भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 से 10 तारीख का खर्च अलग रख दो, 11 से 20 का अलग रख दीजिए, और फिर 21 से 30 का खर्च आप अलग अलग एक सेगमेंट बना करके अलग अलग रख सकते ये भी करके हम देख सकते हैं.
0: बिल्कुल. और अक्सर दीपा हम लोग यही सोचते हैं कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे बचत में डाल देंगे, लेकिन क्या होता है ऐसा होता नहीं है. और पता ही नहीं चलता है कि मतलब सैलरी मिलते ही 20-30% राशि बचत के लिए जो हमने रखी है या नहीं रख पाए हैं वो कहाँ चली गई, खर्च होते ही चले जा रहे हैं. तो हमें बचत के लिए भी सोचना पड़ता है, और सच में यही बचत आने वाले दिनों में आर्थिक सुरक्षा का आधार बनाती है, जो हम कटौती करते हैं. और दीपा, एक और रास्ता है कि आप एक कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए खर्चे को.
1: बिल्कुल.
0: तो आप अगले महीने उसको सोचिए कि हमने कहाँ पे खर्चा ज्यादा किया है, तो उस चीज को फिर अगले महीने आप बजट से हटा सकते हैं. ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है.
1: बिल्कुल. और इसी तरह से एक इमरजेंसी फंड भी हम जरूर रखना चाहिए हमें, जैसे बीमारी हो गई या नौकरी में बदलाव हो गया, इस तरह की कोई परिस्थिति अगर बन जाती है, तो बिना तैयारी के जो ये आर्थिक दबाव आता है, ऐसे में 3 से 6 महीने का खर्च के बराबर का एक इमरजेंसी फंड अगर हम रखें ना अलग से, बहुत मुश्किलें, देखिए बोलना आसान होता है करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा बचा करके हम कुछ ऐसा करने के 3-1 महीने की सैलरी जितना पैसा अगर हमारा अलग से रखा हुआ है, तो कभी भी अचानक कुछ अगर इमरजेंसी आ गई है तो हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि अरे क्या करें क्या नहीं करें और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे मदद मांगे, किसको बोले कि हमें

0: थोड़ा सा पैसा, पैसे की ज़रूरत है, तो
1: बिल्कुल
0: आप प्लीज़ हमें कुछ हेल्प करेंगे क्या? तो इस तरह की स्थिति हमारे सामने आने से हम बच जाएंगे,
1: बच जाएंगे। और दीपा देखो, पहले के समय में ऐसा होता था ना, महिलाएं जो हैं दादी नानी काकी लोग, इनको देखो तुम अलमारी के पेपर के नीचे पैसे रख देती थी, या अपने साड़ी के फलाने साड़ी के पल्लू में बांध के रख दिए, या अलमारी के अंदर उन्होंने एक छोटी सी डिब्बा रख दी, तो वो हर जगह थोड़े थोड़े पैसे रखती थी और मुसीबत के समय वही पैसे उनके काम आते थे। तो सिर्फ बचत करने से काम नहीं चलता है दोस्तों, थोड़ा सा निवेश भी होता रहना चाहिए। इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निवेश करने की आदत जरूर बनाएं, फिर वो चाहे महीने के 1,000 या 2,000 रुपए की शुरुआत क्यों ना हो, शुरू किया जाए। और आप गुल्लक भी बना सकते हैं, अपनी गुल्लक भी बनाइए, बच्चों की भी, हस्बैंड की भी, और सबसे बोलिए इसमें सब लोग पैसे बचाइए, तो आप इस तरह से भी पैसे बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल। और आप अपने लिए कुछ ऐसे दिन भी चुन सकते हैं जहाँ हम सिर्फ ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी करेंगे और फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा आप करेंगे, महीने के 3-4 दिन भी अगर ऐसे आ गए, तो आप देखिएगा थोड़ा सा पैसा तो हमारे पास बच जाएगा। एक और तरीका भी हो सकता है कि 24 घंटे का नियम बना लें, यानी कि कभी भी ऑनलाइन कोई लग्जरी आइटम या ऐसी कोई चीज़ जो कि आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं हमें लेना है, वो ऑनलाइन पे दिख गई, अब हमें लगता है खर्चना तो है या हमें ये ख़रीदना तो है, तो आप 24 घंटे का इंतज़ार करिए, उसके बाद ही उसे ख़रीदने की सोचें। देखिए, आवेग में आकर के बहुत चीज़ हम ऐसे खरीद लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा रुक जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है नहीं ये फिजूल लग रहा है, अगले महीने ले लेंगे।
1: आदत होती दीपा खर्चा करने की, हाथ में खुजली होती तो नहीं लगता है, मतलब पैसे वाले की, अब कुछ तो कर ले, तो उन्हें ऑनलाइन सबसे अच्छा माध्यम लगता है।
0: तो उन्हीं लोगों के लिए ये है कि आप रुकिएगा, बिल्कुल तुरंत ही वो चीज जो है ऑनलाइन उसकी शॉपिंग ना करिएगा,
1: बिल्कुल
0: थोड़ा सा रुक जाइए। हम कह रहे हैं 24 घंटा, आप 24 घंटा भी नहीं, आप 12 घंटे रुकिएगा, 12 घंटे के बाद आपके मन में वो जो उतावलापन है ना, वो हम बिल्कुल
1: शांत
0: कम
1: हो जाएगा। और जब खरीदने का मन भी करे, तो आप अपने आप से ये कहिए कि ये मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, इसकी कितनी जरूरत है या नहीं जरूरत है। तो इस तरह की जब बातों पर विचार करेंगे तो भी आप अपने को रोक सकते हैं। और दीपा, हम खुद को एक वित्तीय चुनौती देकर भी देख सकते हैं, जैसे कि 15 दिन से हम कोई एक तय हुई राशि में ही काम चलाएंगे, उसे चलाएंगे, ये ऐसा करके देख सकते हैं कि सोची हुई राशि से हम अपने 15 दिन निकाल सकते हैं या नहीं। अक्सर लोग केवल किराया, राशन, बिल जैसे तय खर्चों को ही बजट में शामिल करते हैं, लेकिन रोजमर्रा के कई छोटे छोटे अनियोजित व्यय धीरे धीरे पूरे वित्तीय संतुलन को बिगाड़ देते हैं।
0: ये बात तो बिल्कुल सही कही। और अब देखिए, कुछ ऐसे भी खर्च होते हैं जो अचानक से आ सकते हैं, जैसे उपहार खरीदना है, या कभी कभी ऐसा होता है ना, फल सब्जियों की अचानक कीमतें बढ़ जाती हैं, या बाहर कभी खाना खाने जाना पड़ सकता है कोई, या अचानक से कोई ट्रैवल यानी यात्रा पे निकलना पड़ सकता है, कोई मेडिकल खर्च भी आ सकता है, या दफ्तर में कोई छोटे छोटे योगदान होते हैं ना, हमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, इस तरह के भी खर्च आ जाते हैं। तो इस ये सब भी आपका, इन सब का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बजट में शामिल करके रखना जरूरी है।
1: बिल्कुल। और देखो, हमारे साथी भी लिखते हैं कि महीने की शुरुआत और बचत का सीधा संबंध है, शुरुआत अच्छी तो महीना अच्छा, सैलरी मिलते ही शुरुआती दिन में सबसे ज़रूरी वही खर्च करें जिनकी तारीखें फिक्स होती हैं, मसलन घर का किराया, बिजली का बिल, गैस पेमेंट, EMI, बच्चों की फीस वगैरह, फिर आता है राशन, और घर में कोई पेशेंट है तो दवाइयाँ। इसके बाद कुछ पैसा घर में इस तरह से रख लो कि लगभग ऐसा लगे कि जैसे है ही नहीं, जो आड़े वक्त काम आ सके, किसी से मांगना ना पड़े। फिर इसके बाद आते हैं शौक वाले खर्च, जो तो वो अपनी आय और बचत के अनुसार करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को देख कर। अगर आय के अनुसार बजट बनाकर खर्च किया जाए तो महीना बहुत आराम से निकल जाता है।
0: और एक संदेश ये भी आ रहा है कि एक गीत सुना दीजिए।

0: बताइए आपके दिल में क्या है?
1: मेरे दिल में तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, हम संदेश ही पढ़ेंगे फिलहाल तो अपने विषय पर।
0: हाँ।
1: तो हमारे साथी लिखती हैं कि आजकल बचत के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, पर अपनी माँ के ज़माने में हम देखते थे कि माँ एक अलग से अपना गुल्लक टिन या पाउडर वाले डिब्बे या किसी तरह के डिब्बे रखती थी। वे ज़्यादातर रसोई घर में छुपा के रखा जाता था और कुछ महीने के अंत में कभी ज़रूरत पड़ा तो उसमें से निकाला जाता था पैसा। हम बच्चों को डरवाया जाता था उस डिब्बे में कोई नहीं छूगा, उसमें भगवान का पैसा रहता है, पाप लगेगा। अब कभी माँ निकालकर कुछ खर्च करके बाजार से मंगवाती थी तो हम कहते थे कि ये तो भगवान का पैसा। माँ बोलती थी कि अन्नपूर्णा भी देवी माँ ही है, उन्हीं के नाम पर आ रहा है। क्या बात है,
0: क्या बात
1: माँ तो माँ ही होती है आखिर, है ना?
0: सही कहा। और एक संदेश में हमारे श्रोता भाई ने लिख भेजा है कि मेरे बड़े भैया अक्सर कहा करते थे कि जीवन में 3 मित्र जरूरी हैं। इससे बचत के स्रोत कहिए या मित्र, वो ऐसे मित्र हैं जो विपरीत परिस्थितियों में हमारे संकट मोचक साबित हो सकते हैं। पहला आपकी बचत, दूसरा है सोना या गहने का, और तीसरा है आपके खुद का मकान। मैंने उनकी बातों का अनुसरण करते हुए छोटी छोटी बचत के द्वारा शुरुआत की, जैसे पोस्ट या बैंक में 5 साल की अवधि के लिए रिकरिंग अकाउंट खुलवा लिए। इन अकाउंट की अवधि पूरी होने पर उसी रकम को फिक्स डिपॉजिट में तब्दील करता गया। 15 साल के बाद खुद का मकान बनाने में मुझे बड़े भाई जैसा साथ मिला हो ऐसा महसूस हुआ, वो भी बगैर लोन लिए। उसके बाद बेटे बेटी की शादी के लिए अग्रिम तैयारी स्वरूप समय समय पर गहने बनवाता गया। क्या बात है। और आज सेवानिवृत्त होने के बाद भी सब कुछ बातें ठीक ठाक चल रही हैं। तो भाई इस तरह के अगर परिवार का साथ हो तो फिर तो देखिए बचत में और आपको दुगनी सहायता ही मिलेगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारी साथी लिखती कि जब पहली तारीख को तनख्वाह आती तो इतना सारा पैसा एक साथ देकर मन ही मन बहुत से प्लान शुरू हो जाते थे, उस समय हाथ रुक भी नहीं पाता था। पर जब एक एक करके पैसे देने यानी फीस, राशन पानी, दवा, डॉक्टर आदि में निपटाने लगते थे तो कैसे फुर से उड़ जाता था पैसा, पता ही नहीं चलता था। और महीने के शुरू से ही कुछ एक चौथाई पैसा अलग दबा रख देते और भूल जाएं, और फिर पूरे महीने का राशन, दवा और डॉक्टर के पैसे, बच्चों की फीस, घर में काम करने वाली महिलाएं आदि को दे दे, बीच बीच में 50-100 रुपए एक अलग गुल्लक में डाल दे। अगर हाथ में पूरा पैसा होगा तो अधिक तेजी से खर्च होता है, दबाए हुए पैसे आड़े वक्त में काम आते। बहुत अच्छी सी सबने बात लिख के
0: जी बिल्कुल। और हमारे सभी साथी बचत के मामले में

0: इतने सतर्क हैं और हमेशा करते हैं और अलग अलग सुझाव दे रहे हैं, उसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं। मंजरी हमसे एक सवाल पूछ रही थी, क्या सवाल था मंजरी?
1: ये सवाल हम ये पूछ रहे थे कि ये बताओ कि वन तुमने देखा है ना, हरियाली वहाँ की बहुत मन को मोहती है, तो क्या कभी तुमने उस पर ध्यान दिया कि वन में कौन कौन से वृक्ष लगे होते हैं?
0: बहुत सारे लगे होते हैं, कई बार जाते हैं ना तो लगातार कभी बरगद के पेड़ दिखने लग जाते हैं, नीम होते हैं, पीपल होते हैं और भी कई कई तरह के, कहीं कहीं पे आम के बगीचे लगातार दिखते हैं यात्रा में जाते हैं ना।
1: और देखो वनों में जब हम जाते हैं तो ये तो तुमने सही बताया, लेकिन इसके साथ साथ महुआ है, पलाश है, तेंदू है, सेमल है, आंवला है, जामुन है, खैर, बबूल, चंदन, शीशम, चीड़, देवदार, साल, सागौन, ये सारे पेड़ भी वहाँ पर दिखते हैं। तो जब कभी वन की तरफ रुख करना तो इन पत्तों को, इन पेड़ों को बहुत ध्यान से देखना,
0: बिल्कुल
1: तो मजा आएगा,
0: बहुत मजा आता है। उनके अलग अलग आकार, किसी कोई पत्ता चौड़ा होता है, कोई लंबा होता है, किसी की धारियां बहुत साफ सफाई से दिखती,
1: कोई बड़े खुरदुरे भी होते हैं कि उंगली लगाओ तो तुम्हारे उंगली में भी छिलने जैसा एहसास होगा, ऐसा भी होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो भाई देखो कहते हैं ना कि वन महोत्सव जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है, तो एक पेड़ लगाए 100 खुशियां पाए, हरियाली बढ़ाए, धरती को स्वर्ग बनाए, इस वर्ष की थीम है हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण है। इसके अलावा ये मुहिम चलाई जा रही है कि एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ धरती लगाओ बचाओ जैसे नारे जागरूकता बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने जो पौधा रोपण किया है दीपा, उसकी देखभाल एवं उसके बढ़ने फलने फूलने तक का ध्यान रखा जाए, पानी समय पर देना है, उसको कोई और क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल। और इसकी शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर के एम मुंशी इनके द्वारा हुई थी, तभी से इसे पेड़ लगाने का त्यौहार भी कहा जाता है। हर साल एक, जैसा कि अभी आपने बताया, हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे हमारे देश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। पेड़ों से हमें प्राण वायु ऑक्सीजन मिलती है, वर्षा चक्र संतुलन में रहता है, तापमान नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, इनमें अनेक जीव जंतु पशु पक्षी निवास करते हैं, उन्हें भोजन मिलता है और हम सभी को अनेक आवश्यकताएं इन्हीं से पूर्ण होती है।
1: बिल्कुल। और इनको बचाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कटाई इसकी रोकनी होती है, वरना आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा, जो वनों को बहुत काटते जाते तो उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और इसको अगर थामा नहीं तो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और गर्मी की दिक्कतें हमें झेलनी पड़ जाती है। तो कहना चाहिए प्रति व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए और उसकी देखभाल के प्रति भी सजग रहना चाहिए।
0: बिल्कुल। और इसी तरह के बहुत सारे संदेश भी हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे, लेकिन सुनते है क्या
1: एक गीत।

0: ऐसे ही जो काली काली घटाएं है ना, हर जगह हर तरफ बस ये बरखारानी इसी तरह से बाहर बरसा दे, यही हम चाहते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे साथ ही लिखते हैं दीपा, वन महोत्सव के सप्ताह के दौरान स्कूल कॉलेज या सरकारी संस्थान वृक्षारोपण अभियान वहाँ पर चलाया जाते हैं और लोगों को पौधे वितरित करते हैं और पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम और आम बहार आपके द्वार जैसे विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें देशी और फलदार वृक्ष जैसे आम, जामुन, अमरूद, नीम के रोपण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। और दीपा, जो हमारे जो पेड़ हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है? वृक्ष जब लगे होते तो देखो लकड़ी और इमारती सामान मिलता है, जलावन की लकड़ी मिलती है, औषधि जड़ी बूटियाँ, शहद, फल, जामुन, आंवला, बेल आदि, मेवे, मशरूम, बांस और बेत भी मिलते हैं, गोंद, लाख, राल, ये सब चीज़ें, इन सब में घास और चारा मिलता है पशुओं के लिए। और वन्य जीव पक्षी जो है वो वहाँ पर, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी वो सब वहाँ पर निवास करते हैं। तो कहना चाहिए कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए और वनों को कटने से, उसको जो है रोकने से बचाना चाहिए और तभी हमारा जो जीवन है वो सफल हो पाएगा।
0: बिल्कुल, सफल जीवन के लिए देखिए अच्छा वातावरण तो बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और स्वास्थ्य अच्छे के लिए अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिख भी भेजा है, बहुत सारे रेसिपीज आज अलग अलग तरह से आई है, पंजाबी छोले और भटूरे की। तो मंजरी आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़ें?
1: कोई भी पढ़ सकता है,
0: पढ़िए आप, पढ़िए।
1: चलिए, तो हमारे एक साथी लिखते हैं छोले भटूरे की रेसिपी। 2 कप काबुली चने रात भर भिगोए हुए, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर पिसे हुए, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2-3 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, इतना ही आप हल्दी लें और 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 या 2 छोटे चम्मच ले सकते हैं, और लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच छोटा छोले मसाला पाउडर लेना है और 1/2 चम्मच छोला मसाला लेना है, इन्होंने लिखा है। नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया, भीगे हुए चनों को नमक प्रेशर कुकर के साथ में और पानी डालकर 5-6 सीटी के साथ इसको उबाल लें। 1 कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें प्याज सुनहरा होने तक भूने, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, टमाटर और सारे मसाले डालकर तब तक पकाएं जब तक तेल अलग ना हो जाए। अब छोले और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर 10-15 मिनट धीमी आँच पर पकाएं, अंत में हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें। भटूरे के लिए सामग्री, दीपा इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच सूजी, 2 बड़े चम्मच दही, 1/2 छोटा चम्मच चीनी, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 बड़ा चम्मच तेल, गुनगुना पानी, तलने के लिए तेल लेना है आपको। मैदा, सूजी, नमक, चीनी और बेकिंग सोडा मिलाएं, दही और तेल डालकर गुनगुने पानी से मुलायम आटा गूंथ लें, आटे को ढककर 2-3 घंटे के लिए रख दें, छोटी छोटी लोइयां बनाएं जब आपको बनाना हो और गर्म तेल में मध्यम तेज आँच पर गर्म तेल करें और मध्यम तेज आँच होनी चाहिए और दोनों तरफ भटूरों को आप उसमें सुनहरा तल लें और बस भटूरे तलने पर बहुत ही अच्छे बनते हैं। और आप इसको परोसना है तो आप कटा प्याज, हरी मिर्च, नींबू और आम के अचार के साथ छोले के संग में परोसें।
0: ये भोजन का आप स्वाद का आनंद लीजिए और साथ में लीजिए इस गीत का आनंद।
2: अरे

0: तो साथियों, आज तो देखिए समय कह रहा है कि हमारे भी चलने का वक्त हो गया है,
1: लेकिन से पहले एक बात बताते हैं। हमारी सखी ने लिखा है, जंगल की जब हम लोग बात कर रहे थे वनों की, तो उन्होंने कहा है कि कभी कभी वो ऐसे वन भोज में शामिल हुई जहाँ पर उन्हीं पत्तों पर वहाँ की सब्जियाँ साग परोस जाते थे और झाड़ बेरियाँ और जंगली पत्तों पर बैठ कर प्रेम से भोजन करते थे, इन्होंने लिखा है। तो भाई वन तो ऐसे हैं कि हम उनको छू कर महसूस कर सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी आत्मिक शांति मिलती है।
0: बिल्कुल। तो हम तो आशा करते हैं आज का कार्यक्रम में आपने खूब आनंद लिया होगा। आप अपना, अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा।
1: और अब लेते हैं विदा कार्यक्रम से। तो सभी को मंजरी वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लता देवलीकर को। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और ये है कार्यक्रम सेहतनामा। दोस्तों स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और जब बात महिलाओं के स्वास्थ्य की हो तो जागरूकता और सही जानकारी बेहद जरूरी हो जाती है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर महिला के जीवन से जुड़ा है। महिलाओं का स्वास्थ्य, हार्मोनल बदलाव, PCOD, प्रजनन स्वास्थ्य और आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव। तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर जो नासिक से आई हैं। डॉक्टर आशा लता देवलीकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार। थैंक यू।
1: कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा।
1: स्टूडियो में आकर
2: बहुत ही अच्छा लगा
1: जी। आज एक

0: बड़ी समस्या हो गई है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है, जिस पर सजगता बहुत जरूरी है, वो है पीसीओडी। ये पीसीओडी क्या है और क्या ये हार्मोनल बदलाव के कारण होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: यस, अभी पीसीओडी यानी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। और पीसीओडी क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसका फुल फॉर्म है पॉली यानी ज़्यादा और सिस्ट यानी सिस्ट। पीसीओडी के दो है, पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो पीसीओडी है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है और पीसीओडी में क्लियरली होता है सिस्टिक ओवरीज। और जो पीसीओएस है जो उसमें मल्टीपल डिसऑर्डर होता है, सिंड्रोम्स होते हैं, ज़्यादा लक्षण होते हैं, इसमें फर्टिलिटी पर इफेक्ट करता है। ये आजकल यही है पीसीओएस।
0: इसके लक्षण क्या है, मतलब क्या है इसमें खतरा क्या है?
1: पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और ये जो है ये फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है। फर्टिलिटी पे तो इफेक्ट करता ही यही है, लेकिन उसके साथ साथ में शुगर, बीपी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है और आगे बहुत आगे चल के एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। ये जितना सिंपल है उतना खतरनाक भी है ये बीमारी।
0: तो पीसीओडी असल में क्या है, ये क्या हार्मोनल इंबैलेंस?
1: पीसीओडी एक हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से होता है। क्या होता है, अभी जो ओपीडी में बच्ची आती है हमारे पास, 10 बच्चियों में से 6 बच्चियों में ये साइन दिखता है पीसीओडी। तो इसका बहुत ज़्यादा ही प्रमाण हो गया है। रिप्रोडक्टिव एज जो होता है बच्चियों का 14 से 35 तक ये इफेक्ट करता है और ज़्यादातर 20 से 30 तक उम्र के बच्चों में ये ज़्यादा दिखता है
0: जी।
1: ये जो डिसीज़ है लाइफस्टाइल चेंज डिसीज़ है, लाइफस्टाइल चेंजिंग, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। और ये तीन फैक्टर के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है
0: जी।
1: और इंसुलिन रजिस्टर हो जाने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो इंसुलिन रजिस्टेंस के वजह से मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं और एंड्रोजन बढ़ने लगता है। और ये बढ़ने के वजह से ओवुलेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसके वजह से नॉर्मल ओवुलेशन नहीं आता है, पीरियड रेगुलर नहीं आता है, ओरी सिस्टिक हो जाती है और इरेगुलर सब हो जाता है
0: जी। तो इसके जैसे कि आप लक्षण बता रहे हैं, पीरियड्स हाँ। नहीं आते हैं रेगुलर, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हाँ। हो जाती है ना लड़कियों की, महिलाओं की, उनको स्ट्रेस और बढ़ेगा। अगर स्ट्रेस और बढ़ेगा तो ये समस्या और बढ़ेगी, तो इसका क्या इलाज है?
1: हाँ, तो इसके लक्षण बताती हूँ मैं। पहला इसमें फर्स्ट लक्षण दिखता है पीरियड का इरेगुलर हो जाना और पीरियड का फ्लो कम हो जाना, स्कैंटी पीरियड्स बोलते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाना। कभी 2 महीने के अंदर पीरियड आते हैं, 3-3 महीने आते हैं, ये 6-6 मंथ भी नहीं आते हैं। और कभी कभी मेडिसिन लेके ही पीरियड्स आ जाते हैं, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, रफ फेस दिखता है
0: जी।
1: और मूड स्विंग्स होते हैं, आलस आता है, बाल झड़ते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर, चीन पे हेयर आते हैं, अपर लिप्स पे हेयर आते हैं, बॉडी पे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं और इनफर्टिलिटी में ये बहुत इफेक्ट करता है। आगे चल के शुगर, थायराइड, वो सब होता है
0: जी। तो इसका इलाज किस तरह से संभव है?
1: हाँ, इसका इलाज संभव है। इसका इलाज है कि नेचुरल वे से संभव है, जैसे वेट लॉस। पीसीओडी के पेशेंट में देखो तो 80% पेशेंट में ओवर वेट रहते हैं, पेशेंट वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका इलाज है वेट लॉस और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, यानी
0: मेडिटेशन,
1: हाँ वो थोड़ा। तो एक्सरसाइज, योगा, सूर्य नमस्कार, पावर योगा, वॉकिंग, एरोबिक्स, कार्डियो, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, ये सब एक्सरसाइज में कर सकते हैं। 30 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम एक्सरसाइज इतना किया तो भी 35% तक पीसीओडी रिवर्स हो जाता है और डाइट।
0: तो अब आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं, आपकी पसंद का कौन सा गाना?
1: अच्छा, एक प्यार का नगमा।
0: एक प्यार का नगमा है मौजू की रवानी, सुनते हैं ये गाना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है इसमें।

0: इस गाने के बाद डॉक्टर आशालता, आपने जिक्र किया था कि PCOD यानी कि ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, असंतुलन है, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होता है। तो इनफर्टिलिटी के लिए जब पता चले कि हाँ बच्चा नहीं हो रहा है किसी कपल को, तो क्या है जांच पद्धति और क्या है उसका ट्रीटमेंट, बताइए। हाँ, पहले जांच पद्धति बताइए। हाँ, किस तरह
1: तो
0: से
1: जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो 1 ईयर कुछ प्रिकॉशन यूज करते हुए भी उनको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, तो फर्स्ट थिंग हम करते हैं लेडीज में, फीमेल में, ओवुलेशन स्टडी। कि ओवुलेशन स्टडी एक सोनोग्राफी होती है
0: जी,
1: और उसमें पता चलता है कि उसका यूटेरस सही है, यूटेरस की मेजरमेंट क्या है, ओरी सही है, गर्भनलिका जो है वो सही है, एंडोमेट्रियम थिकनेस जिसको हम बोलते हैं अंदर का अस्तर वो सही है, ये सब पता चलता है। और फिर उसके कोई हार्मोनल टेस्ट रहती है, उसमें रहता है ब्लड टेस्ट रहते हैं, वो पीरियड के सेकेंड डे से करना पड़ता है, और वो खाली पेट करते हैं, उसमें FSH रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन बोलते हैं, LH रहता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल रहता है, और सबसे बड़ी चीज़ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, ग्लूकोज का पूरा टेस्ट करते हैं, फास्टिंग, PP, और उसमें कुछ आ गया 120 के आसपास तो HbA1c ये टेस्ट रहता है। और फर्टिलिटी के लिए AMH लेवल, एंटी मिलेरियन हार्मोन की लेवल रहती है, वो करना पड़ती है। इतना ब्लड टेस्ट रहता है और UHG सोनोग्राफी, ये दो टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और मेल पार्टनर में हम सेमेन काउंट, सेमेन एनालिसिस करते हैं।

0: और अभी तो तकनीक काफी एडवांस हो गई है, तो इनफर्टिलिटी के जांच के लिए और भी कुछ जांच की पद्धति आ गई है, तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ इन्हें बच्चा ना होने का क्या कारण है। उसके बारे में भी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को, जैसे लेप्रोस्कोपी है तो क्या
1: हाँ,
0: उस
1: वो
0: समय।
1: थोड़ा जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी या IVF या IUI एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम नेचुरल वे से करते हैं, पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने ज़माने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टी विटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर, और शिफ्ट नहीं हो रहा है तो टेस्ट रहते हैं आगे चल के उनका ट्यूबल ब्लॉक है कि नहीं, वो एक अच्छी सी टेस्ट रहता है, तो वो सब ठीक है। अभी नहीं हो रहा है नॉर्मल, कुछ ज़्यादा दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आगे चल के उनको लेप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं।
0: तो ये भी इनफर्टिलिटी भी एक ऐसा कारण है जो स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। आज हम बात करना चाह रहे हैं PCOD और महिलाओं के अन्य तमाम समस्याओं पर, और आपने कहा डॉक्टर साहिबा कि जब PCOD का इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती, लक्षण हैं जैसे कि पीरियड्स का इररेगुलर हो जाना। तो पीरियड्स का इरेगुलर होता है, कई बार कई महिलाओं को, कई लड़कियों को हैवी ब्लीडिंग होती है, भयानक पेन होता है, तो दर्द से निजात पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? और ये भी सुना है कि फिर फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं क्या हैवी ब्लीडिंग की वजह से, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या है फाइब्रॉइड्स और।
1: यूटेराइन फाइब्रॉइड और सीस्टी जो है, तो मेडिसिन लेकर देखते हैं पेशेंट को, अगर उसका साइज ज़्यादा हुआ, फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वो सर्जरी करना पड़ता है इसका।
0: कैसे पता चलता है कि फाइब्रॉइड्स है या नहीं?
1: USG में, सोनोग्राफी में उसका परफेक्ट मेजरमेंट आता है,
0: जी तो
1: सोनोग्राफी एक ही माध्यम है उसको।
0: जी तो क्या फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन करना जरूरी होता है या ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है?
1: शुरू शुरू में तो ट्रीटमेंट नहीं देना ज़रूरी है, और ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है मेजरमेंट उसका, तो सर्जरी करना पड़ती है
0: जी।
1: उसकी।
0: तो एक गाना और सुने आपकी पसंद का,
1: अच्छा,
0: कौन सा?
1: अजीब दास्ता।
0: अजीब दास्ता है जी, सुनते हैं, बेहतरीन गाना चुना है, लता मंगेशकर की आवाज है।

0: आपने कुछ लक्षण बताए हार्मोनल असंतुलन होता है तो, और क्या क्या लक्षण होते हैं जब हार्मोनल असंतुलन होता है, और इनको क्या नजरअंदाज करती हैं कई बार महिलाएं, तो क्या कुछ मुश्किलें आती हैं जब इन्हें नजरअंदाज करती हाँ। छोड़ देती हैं?
1: ये तो जब फिजिकली होता है तो हमको समझ में आता है कि नहीं उसको ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है इसमें, उसको नज़रअंदाज कर दिया जा सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन है जिसे, और काउंसलिंग पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा।
0: तो काउंसलिंग किस तरह की होनी चाहिए?
1: काउंसलिंग जब डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर भी अच्छे जब काउंसलर डॉक्टर हो गए तो पेशेंट का रेपो अच्छा हो जाता है उनसे, फ्रेंडली जब वो अच्छे से समझाते हैं तो आधा काम इधर ही हो जाता है ऐसा मुझे लगता है
0: जी।
1: और डीप ब्रीदिंग जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट एक थिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी अभी जो चाहिए इस जमाने में, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, और उसका स्लीपिंग जो पार्ट है प्रॉपर स्लीप वो होना चाहिए, और समझाना चाहिए सब। और एक है पॉजिटिव विजुलाइजेशन, जो तुम मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, पॉजिटिव प्रोसेस, पॉजिटिव थिंक प्रोसेस और पॉजिटिव विजुलाइजेशन, ये बहुत बड़ी बात है
0: जी। डॉक्टर आशालता, पीसीओडी एक बड़ी समस्या है, हार्मोन्स का असंतुलन, तो इसमें डाइट्स का कितना बड़ा योगदान है? क्या डाइट्स के जरिए ठीक किया जा सकता है, खान पान के जरिए?
1: डाइट
0: किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
1: डाइट के जरिए 35 तक ठीक कर सकते हैं पीसीओडी, 35% तक ठीक कर सकते,
0: 35%
1: हाँ। तो डाइट में, डाइट ही बहुत ज़रूरी है पीसीओडी यानी वुमन हेल्थ में, एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर बहुत ज़रूरी है। और डाइट में हम देखें तो अभी फास्ट फूड खाते हैं बच्चियाँ, बस फास्ट फूड ही खाती है, बर्गर खाएगी, पिज़्ज़ा खाएगी, बाहर का सब खाएगी, तो ये सबसे बुरी बात है। कार्ब्स कम करना है इसमें, और फाइबर इंटेक करना है, जैसे सैलड हो, कच्चे स्प्राउट्स हो, कैलोरीज पर ध्यान देना है। हाँ, जो हमको डेली में लगता है 1800-2000 तक कैलोरीज
0: जी,
1: और बच्चियां लड़कियां खाती है 4000-5000 कैलोरी, तो कहाँ पर कम करना है, और कैलोरी अगर खा लिया तो बर्न कैसे करना है, तो उसको बर्न करना है एक्सरसाइज से। तो डाइट हम लोग जैसे बोलेंगे तो टाइम पे सोना है, उठना है पीसीओडी में, पानी पीना है 3-4 लीटर, स्ट्रेस ना लेना है, और शुरू में उठते बराबर सुबह सुबह थोड़ा गर्म पानी पीना है, और अगर मेथी, थोड़ा जीरा, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा ये भी डाले तो ये टी हो सकता है, हर्बल टी, उससे भी थोड़ा सा पीसीओडी कम होने

0: में मदद कर सकते हैं। नाश्ते में फाई आलमंड, वाइट एग ये ले सकते हैं, स्प्राउट्स ये ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में मूंग दाल वगैरह ये चीले ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। लेकिन उपमा, पोहा, शिरा ये कार्ब्स है, उससे वजन बढ़ता है और अफेक्ट करता है। और हरी सब्जियां बहुत ज़रूरी है, जैसे सभी मेथी, पालक ये सब। और हरी सब्जियां से भी 25% तक पीसीओडी या वुमन हेल्थ कम कर सकता है। और शुगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शुगर एकदम बंद। पीसीओडी के पेशेंट में हम शुगर बंद कर देते हैं, शुगर, मैदा, वाइट जो चीज़ें, राइस जैसे
1: जी।
0: हाँ, और हाई प्रोटीन डाइट हम बोलते हैं पेशेंट को कि थोड़ा प्रोटीन लो। तो प्रोटीन किस में होता है, जैसे मिल्क है, टोफू है, पनीर है, गुड प्रोटीन होता है ड्राई फ्रूट्स में, वो भी हम बोलते हैं। और सप्लीमेंट्स भी लेना ज़रूरी है, हम उनको बोलते हैं, जैसे ओमेगा फैटी हो गया, विटामिन डी थ्री हो गया, विटामिन डी,
1: विटामिन डी धूप से मिलता है।
0: हाँ, सनलाइट,
1: और आजकल धूप की बहुत कमी है,
0: बहुत कमी है।
1: लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, तो मिलता नहीं, तो धूप सेकना बहुत जरूरी है। धूप का ही एक गाना है, एक टुकड़ा धूप का, फिल्म थप्पड़ से, आप कहें तो वो गाना सुनवा दे, आप कहें तो कोई और गाना।
0: नहीं नहीं, जरूर, वो बहुत अच्छा गाना है।
1: तो ठीक है, ये गाना सुनते हैं जिसमें धूप है।

0: डाइट का कितना योगदान है?
1: डाइट का बहुत सारा योगदान है।
0: तो और क्या क्या डाइट्स ले सकते हैं?
1: अभी डाइट में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते हैं, जैसे कोक हो गया और जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, हाँ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रहता है उसमें, वो बिल्कुल नहीं, चॉकलेट्स भी नहीं। और इससे बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ता है और शुगर लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। बाहर की चीज़ें जैसे रिसाइकलिंग ऑयल में हम जैसे बोलते हैं समोसा, जो
0: हाँ
1: नहीं खाना चाहिए,
0: समोसे के ट्रांसफैट के लिए मुश्किल है,
1: ये ट्रांसफैटी एसिड बढ़ता है और वो भी ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। और पैकेज फूड जो होता है, पैकेट बंद पैकेट का फूड, वो भी नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग फूड, नमकीन, भुजिया, जो सॉल्टी फूड्स है, वो भी नहीं।
0: तो और आपने कहा कि शक्कर एक बंद कर देना चाहिए एकदम, तो कई बार एकदम से शक्कर

0: डॉक्टर साहब, आप पीसीओडी की बात करें और महिलाओं की और भी बीमारियां होती हैं जो महिलाएं जिनसे बचती भी हैं, जिन्हें छुपाती भी हैं, संकोच करती हैं। जैसे कि एक समस्या और है कि एक खास समय पर टीनेज पर 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं मासिक धर्म, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये बताया नहीं जाता, अवेयर नहीं किया जाता है, माँ बाप उन्हें इस बात की शिक्षा नहीं देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से उनको जागरूक बनाया जाए, उनको जानकारी कैसे दी जाए इसके बारे में कुछ?
1: अभी जो है टीनेज में आने का, जो मेनार्क बोलते हैं हम लोग, पीरियड स्टार्ट होने का, वो एज बहुत अर्लियर हो गया है,
0: जल्दी आ
1: जाता है। हाँ, जल्दी आ गया है। हम लोगों में जब 14-16 था, 12 से आता था, 12 ईयर से, अभी वो 8.5-9 साल की लड़कियों में भी दिख जाता है कि इसको मेनार्क स्टार्ट हो गया, इसको पीरियड स्टार्ट हो गए। और ये बहुत ज्यादा डरने की चीज है, डरने की चीज।
0: तो क्या वजह है इसकी?
1: इसकी वजह है जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है, 2-3 साल की, खाने लगती है, तो बस उसको फास्ट फूड देते हैं। हाँ, कोक ये वो सब। मोटी होती है बच्ची, ध्यान नहीं देते, खाती है। और जब जितना अर्लियर मेनार्क स्टार्ट हो गया, जितना अर्लियर तुमको पीरियड स्टार्ट हो गए, उतना पीसीओडी का खतरा बढ़ता है। और अभी पीरियड्स कैसे स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं, यूटेरस क्या चीज़ है, उसका फंक्शन कैसा है, ये सब स्कूल में इसके सब शोज होते हैं, बातें करती है डॉक्टर, और अवेयरनेस बहुत ज्यादा है।
0: और आपने ये गर्भाशय में सिस्ट बन जाता है,
1: गर्भाशय में सिस्ट बन जाता है,
0: क्या समस्या है और इसका इलाज कैसे?
1: गर्भाशय रहता, गर्भाशय के साइड में दो गर्भनलिकाएं रहती है, और गर्भनली के नीचे ओरिस रहती है। और जनरली देखा जाए तो 30 डेज की साइकिल रहती है, 30, 28, 30। तो फर्स्ट 10 डेज, बीच के 10 डेज और लास्ट 10 डेज, इसे 30 डेज। तो फर्स्ट 10 डेज में ओवुलेशन नहीं होता है, लास्ट 10 डेज में ओवुलेशन हो जाता है, और बीच के 10 डेज जो होते हैं उसमें ओवुलेशन होता है, यानी ओरी से एक फॉलिकल निकलता है, अंडा निकलता है, वो रिलीज होता है, बाहर आता है, और जब स्पर्म उससे मिलता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और नहीं मिलता है तो पीरियड्स आ जाता है। ये नेचुरल नॉर्मल लेडी में होता है, बीच के 10 डेज ओवुलेशन पीरियड। और पीसीओडी के पेशेंट में ये होता है कि उनका वो जो एग है वो रिलीज नहीं होता है, वो बाहर नहीं आता है, वो बाहर ना आने जाने की वजह से मोतियों जैसी, मालाएं जैसी ओरी में सिस्ट दिखती है, छोटी-छोटी सिस्ट होती है, और बाहर न आने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है।
0: जी, तो उस सिस्ट का इलाज कैसे किया जाता है, क्या ऑपरेशन होता है या दवा?
1: वो सिस्ट तो नेचुरल सिस्ट, मैंने जैसे बार बार बोला है कि वो अच्छे से डाइट, एक्सरसाइज, पहले नेचुरल वे से कंट्रोल करते हैं, नेचुरल वे से नहीं कंट्रोल हुआ तो मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, नहीं हुआ तो सिस्ट का ड्रिल होता है, ड्रिलिंग लैप्रोस्कोपी से, सर्जिकल प्रोसेस है।
0: जी, तो उसका कोई खतरा नहीं?
1: नहीं, उसका कोई खतरा नहीं, सर्जिकल होता है और मेडिकली वो होता है ठीक ठाक।
0: जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
1: सुरमई अखियो
0: में
1: नन्ना मुन्ना एक सपना,
0: सुंदर गाना, सदमा फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया और डॉक्टर आशा रता विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर, हमें बताइए कि आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया था कि पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी होती है, तो उसके तो बहुत सारे इलाज आजकल संभव है। अखबारों में विज्ञापन आता है कि इतने हजार में आप IVF तकनीक से बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा IVF तकनीक के बारे में बताइए किस तरह से वो बच्चे का जन्म होता है, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो गांव में भी हैं जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी बताइए, और कितना टाइम लगता है, कितना रिस्की होता है।
1: तो पेशेंट जिसे इनफर्टिलिटी उनको डिटेक्ट हुआ, चलो तो डायरेक्टली IVF नहीं करना चाहिए और करते भी नहीं है, उनको प्रॉपर नेचुरल वे से ट्राई करते हैं और फिर इनफर्टिलिटी जर्नी किसी को नहीं होना चाहिए, इतनी सफर होती है पेशेंट उसमें बहुत सारे, तो नेचुरल ट्राई करते हैं, नेचुरल ट्राई नहीं हुआ तो डॉक्टर मेडिसिन देके ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है और फिर IUI का सेटिंग करते हैं।

0: है। आईयूआई भी नहीं हुआ तो
1: आईयूआई क्या है
0: आईयूआई है इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको, डायरेक्टली यूटेरस में सीमेन डाल देते हैं। आईयूआई जब करते हैं कि जैसे स्पर्म काउंट कम हो, उसकी मोर्टेलिटी कम हो और स्पर्म काउंट जीरो भी हो, एजोस्पर्मिया उसको जो बोलते हैं, तो डोनर से बोल लेते हैं। लैब में ये सब किया जाता है
1: और लैब से भी डोनेट,
0: हाँ डोनर कर देते हैं। और डोनर को पता नहीं रहता है पेशेंट कौन है, पेशेंट को पता नहीं रहता है, ये सब बहुत ही लीगली होता है, बहुत ज़्यादा लीगली होता है। और आईयूआई के जैसे परसेंटेज सक्सेस रेट बहुत कम है, 5-7% इतना ही सक्सेस रेट है, बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट कम है। और फिर नहीं आईयूआई हुआ तो वो फॉर आईवीएफ, आईवीएफ के तरफ जब जाते हैं तो आईवीएफ क्या होता है, तो आईवीएफ में ओवम पिकअप करते हैं फीमेल का,
1: जो प्रेग्नेंटली
0: हाँ सीरिबीज, हाँ उसमें सब मेडिसिन पहला देकर उसको मैच्योर करते हैं और वो पिकअप करते हैं। और स्पर्म तो लैब में उसको एम्ब्रियो बनाते हैं, उसका एम्ब्रियो बन जाने के बाद में यूटेरस में
1: तो ट्रांसफर करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पीरियड्स के किस दिन से शुरू होता है ये प्रोसीजर?
0: हाँ पीरियड्स के सेकेंड थर्ड से स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर। हाँ। फर्स्ट तो इंजेक्शंस मेडिसिंस और फिर बाद में ओम पिकअप करते हैं जब मैच्योर हो जाता है श्रीबीज अंडा, और फिर बाद में
1: तो कई बार कपल जो पति पत्नी होते हैं जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको घबराहट भी होती है कि ये क्या प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कैसे होता है, क्या जैसे महिलाओं के गर्भाशय से जब अंडे रप्चर होते हैं वो निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, उस समय कैसे फिर उनको कोई तकलीफ तो नहीं होती है?
0: वो थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर रहता है। हाँ। तकलीफ तो होती है उनको,
1: एनेस्थीसिया वगैरह देना?
0: एनेस्थीसिया नहीं, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं रहती है। और स्पर्म तो ऐसे ही लैब में कलेक्ट हो जाते हैं और उसका एम्ब्रियो बनाते हैं लैब में।
1: तो फिर इसमें किसी तरह का खतरा कोई रिस्क नहीं होता है?
0: नहीं, अभी तो सब लैब टेस्टिंग होता है, पूरा सब लीगली प्रोसीजर्स होता है, खतरा कोई नहीं होता है।
1: कितने साइकिल में ये संभव हो पाता है, डॉक्टर के पास कितनी बार जाना पड़ता है?
0: वो बोल नहीं सकते, कभी वन साइकिल में हो जाता है, कभी सेकंड साइकिल में, कभी थर्ड साइकिल में भी हो जाता है, वो बोल नहीं सकते, कभी फेल भी हो जाता है। लेकिन आईवीएफ जो फेल हो गया वो लास्ट है
1: जी,
0: लास्ट टप्पा है। आईवीएफ फेल हो जाने के बाद में तुम नेचुरल वे में नहीं आ सकते
1: जी जी। तो पीसीओडी के कारण क्या ये भी होता है कि मेनोपॉज जल्दी हो जाए या फिर बहुत देर से हो, ये समस्या भी होती है?
0: हाँ होती है, पीसीओडी में पीरियड से ही रेगुलर रहते हैं और ट्रीटमेंट नहीं किया तो मेनोपॉज ही हो जाता है, कभी कभी दवाई लेके ही पीरियड आता है
1: जी,
0: ये भी होता है
1: जी। तो इसकी क्या वजह है कि नींद की कमी
0: और... हाँ नींद की कमी, डाइट और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस।
1: कई बार हमने देखा है कि महिलाओं में ब्लीडिंग ज्यादा होती है और कई महिलाओं में बहुत कम
0: हो जाती है स्केंट पे,
1: और कुछ महिलाओं को दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी क्या वजह होती है?
0: वो जेनेटिक फैक्टर भी रहता है, कभी कभी दर्द होता है, मेनोर्जिया बोलते हैं उसको, और डाइट का भी इफेक्ट करता है वो, और एक्सरसाइज भी नहीं होती है तो होता है। जो महिलाएं एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, काम करती है, उनको नहीं इतना कुछ होता है।
1: तो
0: जो महिलाएं बहुत सुख वस्तु है, कुछ भी नहीं करती, योगा भी नहीं करती है, तो उनको ये सब पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज पेनफुल होता है।
1: तो ये गंभीर रूप कब ले लेता है?
0: इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये गंभीर ही रूप लेता है।
1: क्या कुछ खतरा होता है?
0: हाँ यूटेराइन कैंसर भी होता है, एंडोमेट्रियम कैंसर, ओरीज का कैंसर हो सकता है बाद में, और ये सब इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा।
1: तो क्या इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है कि इससे?
0: वैक्सीन उपलब्ध है लेकिन उसका सक्सेस रेट कितना ये पता नहीं है।
1: और कई बार महिलाओं के गर्भाशय में छोटी मोटी गांठ होती है, कई बार फाइब्रॉइड्स को भी लोग गांठ समझ लेते हैं और हाँ। कैंसर का डर पैदा होता है, तो ऐसा कहाँ तक सच्चाई है इसमें?
0: सभी गांठें कैंसर की होती है ऐसा नहीं है
1: जी,
0: कभी कभी ये पीसीओडी की तो सिस्ट पानी जैसे होता है उसका
1: जी,
0: हाँ कभी कभी हेमोरेजिक होती है, खून भी रहता है उसमें, हेमोरेजिक सिस्ट भी होता है,
1: मतलब पानी
0: सिस्टिक
1: हाँ
0: होता है, और कभी कभी हेमोरेजिक भी होती है।
1: यूरिन के रास्ते से यूरिन पानी आता है ऐसा?
0: हाँ वो अलग चीज है, यूरिन के रास्ते जो सफेद पानी है तो वाइट डिस्चार्ज होता है, वो इन्फेक्शन के कारण हो जाता है
1: जी। हाँ तो उसका क्या इलाज है?
0: वो तो क्लीनिनेस और फिर थोड़ा एंटीबायोटिक और

0: सभी देख के वो क्लियर हो सकता है
1: जी। तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये रात भीगी भीगी,
1: ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, चोरी चोरी फिल्म का गाना है, सुनते हैं ये गाना।

0: पीसीओडी की जो समस्या होती है डॉक्टर, तो उसमें आपने जिक्र भी किया था कि अनावश्यक बाल हो जाते हैं चेहरे पर, जो लड़कियों को महिलाओं को बहुत बुरा लगता है और उसका ट्रीटमेंट ढूंढती हैं, तो इसके बारे में बताइए कि इसका क्या इलाज है।
1: पीसीओडी का लक्षण है अनवांटेड हेयर।
0: हाँ।
1: और लड़कियां बोलती है कि हमको पीसीओडी चलेगा लेकिन ये अनवांटेड हेयर नहीं, हर 2-3 दिन के बाद हेयर ग्रोथ हो जाती है, कभी रेजर करते हैं, कभी वैक्सिंग करते हैं, कभी थ्रेडिंग करते हैं, और उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये बाल तो जैसे पीसीओडी इम्बैलेंस रहा, हार्मोनल इम्बैलेंस, तब तक आते ही रहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये बाल होते हैं। और इसमें भी LHR बोलते हैं उसको, लेज़र कर देते मशीन से, हेयर लेज़र रिमूवल, वो भी बहुत अच्छी एक है।
0: जी, जब हार्मोन्स का असंतुलन होता है तो मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, किस तरह से होता है?
1: मानसिक स्वास्थ्य ही प्रभावित होता है, चिड़चिड़ापन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है।
0: जी, तो इसका इलाज क्या है?
1: इसका इलाज मेडिटेशन, शांत रहना।
0: डॉक्टर, आज के युग में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारी महिलाओं के बारे में सुना जाता है उन्हें ब्रेस्ट कैंसर से वो महिला जूझ रही है, तो इसका परीक्षण कैसे करें?
1: हाँ, इसका परीक्षण सेल परीक्षण भी कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े होके अपना पाल्म ये है इसका थोड़ा सा टच करके, कुछ लगे हार्ट तो जल्दी से डॉक्टर को बता देना चाहिए। और महीने में एक बार तो भी सेल परीक्षण करना चाहिए। और फिर कुछ लगा ऐसे कि हार्ड होता है, कुछ गठे जैसी लग रही है, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए। और ब्रेस्ट फर्स्ट सेकेंड स्टेज में तो बहुत ही अच्छा हो जाता है।
0: और इसके लिए एक तकनीक भी

0: इसकी जांच के लिए उपलब्ध है ना मेमोग्राफी?
1: मेमोग्राफी कर,
0: तो
1: मेमोग्राफी, सोनोग्राफी, एपेनेसी, नीडल बायोप्सी।
0: लेकिन महिलाएं डरती हैं इस तकनीक से?
1: महिलाएं डरती नहीं है, महिलाएं वो करना ही पड़ता है, वो जरूरी है, डरने का ये नहीं है। महिलाएं कभी डर गई तो बढ़ जाएगा, थर्ड फोर्थ स्टेज में कुछ नहीं होता है।
0: और पीसीओडी में मूड स्विंग बहुत
1: होता है,
0: तो इसका क्या इलाज है मूड स्विंग का? कि अचानक किसी महिला को देखा है, अचानक चीखने चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, अचानक बिल्कुल शांत,
1: मेंटल स्ट्रेस।
0: तो इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है?
1: उसका डाइट से, डाइट एकदम मसालेदार, बहुत चटपटा, बहुत बाहर का, अंदर से पूरा हीट बढ़ गया, ऐसे वो, इसका इलाज भी मेडिटेशन है, शांत रहना है
0: जी,
1: एक्सेप्टेंस करना है, और जो मैनेजमेंट रहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट वो आना चाहिए
0: जी,
1: अच्छे से किताब पढ़ो, अच्छे से थोड़ा माइंड डाइवर्ट करो, फोकस करो करियर पे, जो चीज़ तुमको बुरी लगती है उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, जो तुमको थोड़ा सा अच्छा लगता है, हॉबीज है कुछ, उस पर ध्यान दो।
0: और पीसीओडी की समस्या से निपटने के लिए और क्या सलाह देंगी आप हमारे श्रोताओं को?
1: पीसीओडी से निपटने के लिए तो फास्ट फूड बंद करो। जब पीसीओडी का पेशेंट आता है तो हम यही बोलते हैं कि फास्ट वॉक, अवॉइड फास्ट फूड बस, और नींद लो अच्छे से
0: जी। कुछ संदेश देना चाहती हैं हमारे श्रोताओं को?
1: बस हैप्पी रहो, किसी को पीसीओडी ना हो। जो महिला योगा करती है अच्छे से खुद को माइंड फ्रेश रखती है, हैप्पी रहती है, और उनको पीसीओडी, मेनार्क, मेनोपॉज, ये वो सभी समस्या से वो आराम से गुजर जाती है, आराम से हो जाता है सब। और जो महिलाएं नहीं, चिड़चिड़ापन ही रहता है उनका, बाकी कुछ ज़्यादा सोचती नहीं, बस चिड़चिड़ चिड़चिड़, तो ये सब जो हमारे स्टेजेस हैं महिला के जीवन में, मेनार्क है, जैसे पेरीमेनोपॉज है, मेनोपॉज है, अभी ये पीसीओडी आ गया, तो इससे वो नहीं जूझती है, उनको तकलीफ होती है इससे सब बाहर निकलने के लिए
0: जी।
1: पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज़ है, और लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचो, सभी अच्छा होता है। पॉजिटिव विजुलाइजेशन, पॉजिटिव मेडिटेशन, सात्विक सकारात्मक
0: जी
1: जीवन शैली।
0: डॉक्टर आशा लता, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें हमारे श्रोताओं को बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।
2: ये थी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। बारिश के साथ जैसे छा गई है उदासी की धुंध, आसमान जैसे बरस रहा है, और दुनिया के जितने उदास लोग हैं यह आसमान उनका साथ दे रहा है, यह आसमान उनकी जबान में कह रहा है अपनी बातें। ये बारिश नहीं है, ये कुदरत का दुख है।

ये दुनिया, ये खंजर वाली दुनिया, ये पीठ फेरते ही हमला करने वाली दुनिया, उफ ये दुनिया, उफ इस दुनिया के धोखे।

कभी कभी यूं लगता है जैसे हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, जैसे अनगिनत अनजान चेहरों वाली इस भीड़ भरी दुनिया में हम

एक अजनबी हैं, एक अजनबी जिसे हर कोई धक्का मार रहा है, एक अजनबी जो इस संगदिल दुनिया में तलाश रहा है अपना ठौर। कभी

कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं और ये तेज हवाएं अपने साथ कुछ चीजें उड़ा कर ले जाती हैं, वो चीजें जिन्हें आप दिलो जान से चाहते हैं। तेज हवाएं खतरनाक हो सकती हैं, कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं।

कहते हैं कि इंसान का चेहरा सब कुछ बयान करता है। कितने इंच की है सामने वाले की मुस्कान, वो आईना बन जाती है उसके दिल का। मुस्कान ही नहीं, आंसू भी बयां करते हैं दिल की हालत का।

शाम के सुरमई आसमान पर तुम्हारा ख्याल जैसे डूबता हुआ सूरज, इस ख्याल को भी सूरज की तरह डूब जाना है। शाम के इस सुरमई आसमान पर आखिरकार अंधेरा छा जाना है। शाम का ये सुरमई आसमान अंधेरे में डूबा हमारा दिल है।

0: आज के छाया गीत में थे मोहम्मद रफी के चंद उदास नगमे, फिल्मों के नाम।
1: आपके पहलू में आकर रो दिए आपके।
0: मीरा साया, राजा मेहंदी अली खां, मदन मोहन।

0: दो बदन, शकील बदायूनी, रवि।
1: ये आंसू मेरे दिल की जुबान है।
0: हम राही हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन।
2: हुई शाम का ख्याल गया।
0: मेरी हमदम मेरे दोस्त आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: आप सुनी रहा नी माण की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिव कुमारी और रामदुलारी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा,

0: देवांगन और पराग टेलर।
1: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष श्रीवास, शिव कुमारी और राम दुलारी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
0: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
1: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
1: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
1: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं।
1: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं, जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
1: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं।
1: 8800440559। और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
2: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
2: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
0: जी,
2: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
0: जी,
2: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
0: जी।
2: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है इसका नंबर है 8448440632। 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने

0: है कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम डेढ़ घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस डेढ़ घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
1: जी।
0: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है, इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
0: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है
1: जी,
0: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
1: जी,
0: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा करियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी,
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी, और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
1: जी।
0: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है

0: तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को संकोच किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए।
1: जी जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
0: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यानपूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
1: जी,
0: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
0: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है।
1: जी।
0: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती, जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
0: जी, रिजल्ट से।
1: जी,
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है।
1: जी हाँ।
0: ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाएं, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है।
1: जी।
0: आज के समय में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
1: जी।
0: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है।
1: जी।
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है, बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहिए, क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ, जी।
0: तो वो गेम जो भी रहे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी, जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि आपको चित्रकला में कुछ काम करिए,

0: कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें, तो क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल।
0: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया। जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो।
1: हाँ।
0: तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है, और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल रहे,
0: तालमेल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर, या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर आपको जानकारी हो तो, जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
1: जी,
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे, तो इस तरह की जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार, सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं, उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, तो उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, तो बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज

0: सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं,
1: जी
0: तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो अब डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
1: हाँ।
0: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है
1: जी।
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है
1: जी।
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है,
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
1: जी, उसी को।
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
1: हाँ, होती है।
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
1: प्रयास
0: वो सफल
1: किया।
0: नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए, गलती से भी कुछ सीखा ना,
1: हाँ, होता
0: तो,
1: है।
0: तो इसका मतलब क्या हुआ
1: जी?
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि है उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए, विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
1: थोप
0: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: हाँ, प्रोत्साहित करें,
0: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
1: जी।
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल,
1: ये
0: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं।
0: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
1: जी,
0: 8-44-844-0632 8-44-844-0632 ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 1-44-16 ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।
0: और अगर किसी प्रकार का

0: ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansail@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं, और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं।
1: जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 101.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: स्वागत है आप सभी का युववाणी कार्यक्रम में। मैं हूँ सौंदर्या, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में जान लेते हैं हमारे आज के दो सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर का वह कौन सा एकमात्र हिस्सा है जहाँ खून की सप्लाई नहीं होती? और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा इक्वेटर को दो बार पार करती है? दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: एक लाख दो बच जाओ।

0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों, स्वस्थ शरीर और शांत मन एक बेहतर जीवन की पहचान है। सुनते हैं व्यायाम से जुड़ी उपयोगी जानकारी पायल त्रिपाठी जी से।
6: नमस्कार, योगा टीचर हूँ। आजकल की लाइफस्टाइल में सबसे बड़ी दिक्कत शायद यही हो गई है कि लोगों के पास हर चीज़ के लिए समय है, लेकिन खुद के लिए समय कम होता जा रहा है। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर जल्दी जल्दी काम और देर रात तक जागना, धीरे धीरे ये आदतें शरीर और मन दोनों को थका देती हैं। पहले के समय में लोगों की दिनचर्या थोड़ी अलग हुआ करती थी। लोग सुबह जल्दी उठते थे, थोड़ा पैदल चलते थे, घर के कामों में हाथ बटाते थे और शरीर नेचुरली एक्टिव रहता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने काम आसान तो कर दिए हैं, पर फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है। शायद यही वजह है कि कम उम्र में भी लोग स्ट्रेस, बॉडी पेन और डाइजेशन जैसी समस्याओं की बात करने लगे हैं। ऐसे में योग को सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की तरह देखा जाता है। योग का मतलब सिर्फ कठिन आसान करना नहीं होता, कई छोटी छोटी आदतें भी योग का हिस्सा मानी जाती हैं, जैसे समय पर उठना, सही तरीके से सांस लेना, सही शरीर को स्ट्रेच देना और थोड़ी देर मन को शांत रखना। कई लोग सुबह की शुरुआत सूर्य नमस्कार से करना पसंद करते हैं। सूर्य नमस्कार में शरीर की अलग अलग मूवमेंट्स शामिल होती हैं और इसे पूरे शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। लगातार बैठे रहने वाले लोगों के लिए ये शरीर को एक्टिव महसूस कराने में मदद कर सकता है। वहीं कुछ लोग ब्रीथिंग एक्सरसाइज यानी प्राणायाम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, कपाल भाती और गहरी सांस लेने की आदत। माना जाता है कि इससे मन थोड़ा शांत महसूस कर सकता है और स्ट्रेस कम करने में मदद मिल सकती है। आजकल की तेज जिंदगी में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर भी परेशान हो जाते हैं, वहां कुछ मिनट शांति से बैठना भी ज़रूरी लगने लगा है। आजकल एसिडिटी और डाइजेशन की समस्या भी काफ़ी कॉमन हो गई है। बाहर का खाना जल्दी जल्दी खाना या खाने के तुरंत बाद लेट जाना, ये सब इसकी वजह से है। ऐसे में खाने के बाद कुछ देर वज्रासन में बैठना फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें पैरों को मोड़कर एड़ियों पर बैठा जाता है। कई लोग इसे डाइजेशन के लिए अच्छा मानते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक लैपटॉप या मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से गर्दन, कंधों और पीठ में दर्द की शिकायत भी बढ़ने लगी है। ऐसे में ताड़ासन, भुजंगासन और हल्की स्ट्रेचिंग वाले योगासन शरीर को थोड़ा आराम महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात यह भी है कि योग को कभी जल्दबाजी या कंपटीशन की तरह नहीं करना चाहिए। कई बार लोग शुरुआत में ही कठिन आसन करने लगते हैं, जिससे शरीर पर उल्टा असर पड़ जाता है। इसीलिए प्रैक्टिस बढ़ाना बेहतर माना जाता है। योग की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी महंगे सामान या बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ी सी जगह।

0: कुछ मिनट का समय और नियमितता काफ़ी मानी जाती है। और सच कहें तो हेल्दी रहने के लिए हमेशा बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते, कभी कभी छोटी छोटी अच्छी आदतें भी लंबे समय में बड़ा फर्क ला सकती हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।
1: दोस्तों, अभी हमने सुना पायल त्रिपाठी जी को। दोस्तों, सेहत से जुड़ी बातें जानी हमने, पर हम बाजार से खाने पीने की चीजें खरीदते हैं, लेकिन क्या हम कभी उनके पैकेट पर लिखे शब्दों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं? उदाहरण के लिए, बाजार में मिलने वाले मलाईदार बिस्किट, अगर आप उनके पैकेट को ध्यान से देखें तो वहां अंग्रेजी में क्रीम की जगह क्रेम लिखा होता है। क्रीम की स्पेलिंग CREAM होती है और क्रेम की स्पेलिंग CREME होती है। आमतौर पर हम इसे सिर्फ एक स्पेलिंग या लिखने का तरीका मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी छिपी है जो एक उपभोक्ता के तौर पर हम सबको पता होनी चाहिए। दरअसल, खाद्य मानकों के अनुसार क्रीम शब्द का उपयोग केवल वहीं किया जा सकता है जहां असली दूध या डेयरी उत्पादों का इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन जिन बिस्किट्स पर क्रेम लिखा होता है, जिनकी फिलिंग में दूध की मलाई नहीं होती, तो फिर वो मीठी फिलिंग बनती कैसे है? वो मुख्य रूप से वनस्पति तेल जैसे कि पाम ऑयल, शुगर यानी कि चीनी और सुरक्षित कृत्रिम सुगंध आर्टिफिशियल फ्लेवर्स को मिलाकर तैयार की जाती है। इसमें डेयरी उत्पाद शामिल नहीं होते, इसलिए पैकेट पर क्रीम की बजाय क्रेम लिखा जाता है। एक जागरूक उपभोक्ता होने के नाते हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि अत्यधिक मात्रा में प्रोसेस्ड चीनी और वनस्पति तेलों का नियमित सेवन हमारी सेहत, विशेषकर हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए अगली बार खाद्य सामान खरीदने से पहले सिर्फ सामने का विज्ञापन ना देखें, पैकेट को पलटकर उसके पीछे लिखी सामग्री यानी इंग्रेडिएंट्स की सूची भी अवश्य पढ़ें। जानकारी के बाद सुनते हैं दोस्तों ये गीत।

दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का क्रम कुछ बातें कुछ गीत। अभी हम बिस्किट के पैकेट पर लिखे क्रीम और क्रैम के छिपे हुए अंतर की बात कर रहे थे, लेकिन जानते हैं क्या, ये जो हमारे साथ चतुर शब्दों का खेल खेला जाता है ना, ये सिर्फ बाजारों के पैकेट तक सीमित नहीं है। आज जब हम सब अपने मोबाइल फोन से टिकट बुक करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ भी हमारे साथ कुछ ऐसे ही मज़ेदार लेकिन हैरान करने वाले खेल खेले जाते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप ट्रेन या फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे हो और फाइनल पेमेंट के वक्त अचानक बिल में कुछ एक्स्ट्रा पैसे जुड़ जाएं? आप ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि ऐप ने अपने आप ही ट्रैवल इंश्योरेंस या डोनेशन वाले बॉक्स पर पहले से ही टिक का निशान लगा रखा था। अब आप उसे हटाना भूल गए और आपके पैसे कट गए। या फिर जब आप कोई सामान देख रहे होते हैं तो स्क्रीन पर अचानक एक उल्टी गिनती टाइमर चलने लगती है, जल्दी कीजिए सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, स्टॉक खत्म होने वाला है। हम घबरा कर बिना सोचे समझे तुरंत ऑर्डर कर देते हैं, और मज़े की बात पता है क्या है, आधे घंटे बाद जब आप दोबारा वही पेज खोलते हैं तो वह सामान वही होता है और टाइमर फिर से 2 मिनट से शुरू हो जाता है। तकनीकी दुनिया में इसे ग्राहकों को प्रभावित करने वाला डिजिटल पैटर्न कहा जाता है। कंपनीज हमारी जल्दबाजी और घबराहट का फायदा उठाकर हमसे ऐसा सामान या सर्विस खरीदवा लेती है जिनकी हमें शायद जरूरत भी नहीं थी। लेकिन घबराइए मत, एक समझदार उपभोक्ता के तौर पर इस खेल से बचना बेहद आसान है। जब भी ऑनलाइन शॉपिंग या बुकिंग करें तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। फाइनल पेमेंट बटन दबाने से पहले बिल की हर एक लाइन को ध्यान से देखें कि कहीं कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं जुड़ गया। ऐसे ही और जानकारी जानेंगे, पर उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

वैसे दोस्तों ऑनलाइन दुनिया का एक और खेल है जिसमें हम में से लगभग हर कोई कभी ना कभी गुजरा ही होगा, वो है मुफ्त यानी कि फ्री ट्रायल का ऑफर। मोबाइल पर कोई नई ऐप डाउनलोड करो या गाने और फिल्में देखने का कोई नया प्लेटफॉर्म खोलो, स्क्रीन पर बड़ा बड़ा लिखा आता है, पहले 30 दिन बिल्कुल मुफ्त, अभी सब्सक्राइब करें। हम भी खुश हो जाते हैं कि चलो एक महीना तो मुफ्त में मज़ा उठाएंगे, लेकिन जैसे ही हम स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करते हैं वो हमसे हमारे ATM कार्ड या UPI की डिटेल्स मांगते हैं। हम सोचते हैं पैसे तो कट नहीं रहे, सिर्फ डिटेल ही तो देनी है, तो दे देते हैं और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। हम एक महीना तो आराम से ऐप का इस्तेमाल करते हैं और फिर भूल जाते हैं। ठीक अगले महीने की पहली तारीख को हमारे मोबाइल पर अचानक एक मैसेज आता है, आपके बैंक खाते से ऑटो डेबिट के जरिए 499 रुपये कट गए हैं। तब हमें याद आता है कि अरे वो तो फ्री ट्रायल कल खत्म हो गया था। कंपनीज जानती है कि रोज़मर्रा की भागदौड़ में हम तारीख याद रखना भूल जाएंगे और इसी भूल का फ़ायदा उठाकर वो हमारे खाते से पैसे ऑटो डिटेक्ट कर लेती है। इससे बचने का उपाय बहुत सीधा है दोस्तों, जब भी कोई फ्री ट्रायल ले तुरंत अपने फ़ोन के कैलेंडर में वो दिन का एक अलार्म लगा लें ताकि समय रहते आप उसे कैंसिल कर सके, मुफ्त के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई को व्यर्थ ना जाने दे। वक्त चला है गीत का, सुनते हैं दोस्तों ये गीत।

दोस्तों, कभी सोचा है कि बाजार में या ऑनलाइन सामानों की कीमत हमेशा 99, 199 या 999 रुपए ही क्यों होती है? गोल मटोल 100, 200 या 1000 रुपए क्यों नहीं होती? इसे विज्ञापन की दुनिया में चार्म प्राइसिंग कहा जाता है। हमारा इंसानी दिमाग संख्याओं को हमेशा बाई से दाई ओर, लेफ्ट टू राइट पढ़ता है। जब हम किसी कपड़े पर 499 रुपए लिखा देखते हैं तो हमारा दिमाग केवल पहली संख्या यानी 4 पर ध्यान केंद्रित करता है और हमें लगता है यह सामान 400 कुछ रुपए का है यानी सस्ता है, जबकि असल में वह 500 रुपए से सिर्फ 1 रुपया कम होता है। अगर वही दुकानदार उस पर सीधा 500 रुपए लिख दे तो हमें वह महंगा लगने लगता है। केवल 1 रुपए का यह अंतर हमारे दिमाग को यह भ्रम देता है कि हम एक बहुत अच्छी और सस्ती डील कर रहे हैं। दोस्तों, आजकल हम सब एक नए रोग से गुजर रहे हैं जिसे मैं कहती हूँ रिव्यू देखने की बीमारी। ऑनलाइन कोई भी शर्ट खरीदनी हो, नया हेडफोन लेना हो या किसी नए रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना हो, हम सबसे पहले अपने फ़ोन में देखते हैं कि उसे कितने स्टार मिले हैं। अगर 4.5 या 5 स्टार रेटिंग है तो नीचे लोगों ने लिखा है वाह, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, तो हम आंखें बंद कर उसे ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस 5 स्टार रेटिंग और तारीफों के पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम करता है? बाजार में ऐसी कई एजेंसीज हैं जो कंपनीज से पैसे लेकर उनके प्रोडक्ट्स के लिए नकली यानी फेक रिव्यू लिखती है। कई बार तो जो लोग उस सामान को कभी इस्तेमाल भी नहीं करते वो भी पैसे लेकर लिख देते हैं यह दुनिया का सबसे बेस्ट सामान है। हम सोचते हैं कि जब इतने सारे लोग तारीफ कर रहे हैं तो सच ही होगा और हम झांसे में आ जाते हैं। तो इस खेल से कैसे बचें? तरीका बहुत सरल है। जब भी किसी सामान के रिव्यू पढ़े तो सिर्फ 5 स्टार वाले रिव्यू मत देखिए। सबसे पहले 1 स्टार 2 स्टार वाले रिव्यूज को निकाल कर पढ़ें। जो लोग सामान से असंतुष्ट होते हैं वे अक्सर उसकी असली कमियां विस्तार से लिखते हैं। अगर कमियां छोटी मोटी है तो सामान खरीद लिए, लेकिन अगर सब ने एक ही बड़ी खराबी लिखी है तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। तो दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

दोस्तों, ये तो था हमारा आज का क्रम, कुछ बातें कुछ गीत। कैसा लगा आपको, हमें पत्रों और ईमेल्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। वक्त हो चला है कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव का। जान लेते हैं आरंभ में पूछे गए दो सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तरों को। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न था, मानव शरीर का वह कौन सा एकमात्र हिस्सा है जहाँ खून की सप्लाई नहीं होती? तो इसका उत्तर है आँख का कॉर्निया। यह सीधा हवा से ऑक्सीजन लेता है। और दोस्तों, हमारा आज का दूसरा प्रश्न था, वह कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा इक्वेटर को दो बार पार करती है? तो इसका उत्तर है कांगो नदी। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त करने की दे अनुमति आपकी दोस्त सौंदर्या को। नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम युववाणी एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: ब्रह्मास्त्र, लीजिए सुनिए अब इस मूवी का गीत, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

इरशाद कामिल के बोल और एआर रहमान का संगीत। इसमें सुनिए रांझणा इस मूवी का गीत। इसे गाया है जावेद अली, कीर्ति और पूजा वैद्यराज ने।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के 7 बजने को है। समय हो चला है समाचारों का। अब आप सुनेंगी हिंदी में समाचार दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। संदीपोन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस के साथ तीसरे भारतीय ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टि

0: महत्वपूर्ण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तकनीक आधारित द्वभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली में भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषीय व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषीय व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंधन संस्थाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। सरकार ने कहा कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ सकता है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
2: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
1: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
2: क्यों?
1: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
2: वो कैसे?
1: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे

0: सकते हैं।
1: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
0: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
1: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
0: आप कब आ रहे हैं?
1: आकाशवाणी खंडवा पर।
2: दोस्तों, हर रविवार युववाणी में प्रसारित किया जाता है आपकी फरमाइशी गीतों का क्रम
3: हेलो फ्रेंड्स,
2: जिसमें हम करते हैं आपसे आपके दिल की बातें और सुनवाते हैं आप ही के पसंद के फिल्मी गीत।
4: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूँ ना।
2: तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से कॉल कीजिए और सुनिए अपने पसंदीदा फिल्मी गीत। साथियों, हेलो फ्रेंड्स की रिकॉर्डिंग की जाती है हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे के बीच। आकाशवाणी खंडवा का टेलीफोन नंबर है 2226063 और खंडवा का STD कोड है 0733।
3: तो फोन करना ना भूलें। कार्यक्रम है हेलो फ्रेंड्स।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
5: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
2: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
0: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
2: अब क्या करोगे?
0: फ्री वाईफाई है ना?
1: बुद्धू सुधर जा।
2: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
0: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
2: RBI कहता है
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भव्य स्वागत। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चा और आपसी साझेदारी में हुई प्रगति की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के सतगड़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी। कहा बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी मध्य प्रदेश में कर रहे निवेश। ज्ञान भारतम ऐप पर दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों को सहेजने और संरक्षित करने में देश में प्रथम मध्य प्रदेश। और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय, आज 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने तीन देशों के हिंद प्रशांत दौरे की शुरुआत की। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया

0: राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और भारतीय प्रवासी समुदाय ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया, जिसमें पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थीं। ये प्रधानमंत्री श्री मोदी की इंडोनेशिया की चौथी यात्रा है और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किए जाने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अपनी यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे। वहीं तीसरे और अंतिम चरण में श्री मोदी 10 जुलाई को न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। राष्ट्रवादी चिंतक और भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रियल पार्क की सौगात दी। लगभग 173 एकड़ में विकसित होने वाला यह स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार का नया आधार माना जा रहा है। इसमें आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, आईटी एवं एआई आधारित सुविधाएं और लॉजिस्टिक तथा वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। ये परियोजना वर्क लिव ग्रो मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें उच्च मूल्य विनिर्माण, गारमेंट, टॉयज, आईटी और एआई से जुड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यहां कहा कि अमेरिका, इंग्लैंड, जापान जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ से अधिक का निवेश कर रहे हैं।
2: विश्व के बड़े बड़े देश अब हमारे साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जापान, कोरिया, ऐसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे अपने राज्य में लगा रहे थे। ये है हमारे काम करने का तरीका। छोटे मझोले उद्योग जो काम करने आ रहे हैं, उनका अगर कोई देनदारी है तो ये हमने गए महीने तक की देनदारी पूरी कर दी।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की मौजूदगी में आज भोपाल में कुवैत की अग्रणी मत्स्य कंपनी और कामदार्स केयर इंदौर के बीच 7,430 करोड़ रुपए के निवेश और बायबैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। ये एग्रीमेंट मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 के अंतर्गत हुआ है। इस करार के तहत कुवैत की कंपनी इंदिरा सागर, बर्गी, बाणसागर और बारना जलाशय में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी, जिससे 35,000 रोजगार सृजित होंगे। इस करार से प्रदेश के लगभग 6,000 करोड़ रुपए के मत्स्य निर्यात का अनुमान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर में संभाग स्तरीय उन्नत कृषक संवाद सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने किसानों से संवाद कर उनके प्राकृतिक खेती से संबंधित अनुभव भी सुने। मुख्यमंत्री ने यहां से हाईटेक नर्सरी और फ्लोरिकल्चर गार्डन का भूमि पूजन भी किया। इस नर्सरी और फ्लोरिकल्चर गार्डन के प्रथम चरण के कार्य के लिए सरकार द्वारा 13 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भारत सरकार की डिजिटल पहल ज्ञान भारतम ऐप के अनुसार दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों की सूचना दर्ज करने और उनके संरक्षण के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। ज्ञान भारतम ऐप के माध्यम से 3 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश ने अब तक कुल 34,45,439 पांडुलिपियों के पन्नों का पंजीकरण किया है। 12,13,127 पांडुलिपियों का ज्ञान भारतम द्वारा सफलतापूर्वक सत्यापन हुआ है। शेष सत्यापन की प्रक्रिया में है, जिनका चरणबद्ध तरीके से परीक्षण एवं प्रमाणीकरण किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग शिव शेखर शुक्ला ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि आज भी विश्वभर के मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों और संग्रहालयों में संरक्षित भारतीय पांडुलिपियां हमारी समृद्ध ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर हैं। अब रुख करते हैं मानसून का। प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। आज प्रदेश के 23 जिलों में अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक आज सागर, दमोह, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, उमरिया, सिवनी, छिंदवाड़ा और अनूपपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं

रतलाम, उज्जैन, धार, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, गुना, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी और पन्ना में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और शिवपुरी सहित प्रदेश के बाकी जिलों में भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मंडला शहर में आज शाम 4 बजे से शुरू हुई बारिश लगभग 2 घंटे तक लगातार होती रही। वहीं छिंदवाड़ा में बीते 24 घंटों के दौरान 24.2 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। इंदौर जिले में इस सत्र में अब तक 314.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यूजी 2026 प्रवेश परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा 7 जुलाई यानी कल तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाते विवरण की पुष्टि की है उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत कल नीमच जिले के हरकिया खाल स्थित श्री बालाजी मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। छतरपुर के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के स्थापना दिवस पर वन स्टॉप सेंटर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। शहडोल के सरहट की आजीविका हल्दी प्रसंस्करण इकाई से जुड़े 135 किसानों ने रिकॉर्ड 130 मीट्रिक टन हल्दी का उत्पादन किया है। बैतूल विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 8 जुलाई को टैगोर वार्ड के आंगनवाड़ी केंद्र में विशेष शिविर में बिजली संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। सीहोर जिले के आष्टा पचोर शुजालपुर मार्ग पर एक कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 यात्री घायल हो गए हैं। खंडवा में 7 दिवसीय सिविल डिफेंस स्वयंसेवक प्रशिक्षण का आज शुभारंभ किया गया। कटनी पुलिस द्वारा सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। अशोकनगर पुलिस ने 88,000 रुपये के नकली नोटों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शौर्य स्मारक भोपाल में कल आदिवासी क्रांतिवीर स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के 50 से ज्यादा वक्ता काव्य गोष्ठी के माध्यम से आदिवासी क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भव्य स्वागत। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चर्चा और आपसी साझेदारी में हुई प्रगति की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के सतगढ़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी। कहा, बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी मध्य प्रदेश में कर रहे निवेश। ज्ञान भारतम ऐप पर दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों को सहेजने और संरक्षित करने में देश में प्रथम मध्य प्रदेश। और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय, आज 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका
2: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है, प्रस्तुत है खेती गृहस्थी कार्यक्रम।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम लेना आज आपका साथ आपके बहन सीमा। कार्यक्रम सुनने वाला सबे किसान भाई बहन नख राम राम। बूंद बूंद सी जीवन महकज, हरियाली सी हर रंग दमकज, बरसात प्रकृति को वो अनमोल उपहार छे जिका सी धरती को श्रृंगार छे। भाई बहन हुन प्रकृति न हम मनुष्य नख कई अनमोल उपहार दिया जेमा वर्षात को मौसम सबसे महत्वपूर्ण छे। वर्षात पानी की बूंद न को धरती पर गिरनो नहीं बल्कि जीवन को आधार छे। बढ़ता

तापमान से हम सब परेशान था। पानी की कुछ बूंद न सी प्रकृति में तो नवचेतना आई गई, पर हम सब का हृदय भी एक नवचेतना को संचार करी रही। नदी नमो पानी कम हुई गयो, खेत खाली पेड़ पौधा मुरझाई गया था, पर दो चार बारिश की बूंद न सी चारों तरफ हरियाली छाई गई। हमारी संस्कृति में तो बरसात का वरदान माने गयो, नए को स्वागत उत्सव की तरह हम सब करान। हमारा किसान भाई बहन भी बोनी का काम में लगी गया। कहीं कहीं खेत में नन्ना पौधा न को अंकुरण होना सी खेत मानो सजना सवरना लग्या। समय पर होने वाली बारिश अच्छी फसल को आधार छे। धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन जैसी फसल न पानी सी अच्छी तरह पोसाएज। एका लेना संतुलित न समय पर होने वाली बारिश देश की अर्थव्यवस्था का लेना भी बहुत आवश्यक छे। बरसात पर्यावरण का शुद्ध करना में भी सहायक रहे। धूल धुआं जैसा प्रदूषक तत्व नीचे बैठी जाए, न हवा शुद्ध हो जाए, पेड़ पौधा की पत्ती न पर जमा धूल का कण साफ हो जाए, नो प्रभावी ढंग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करी पावे, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी जाए, न हम सब स्वच्छ न ताजी हवा को आनंद लेवान। बढ़तु प्रदूषण, अंधाधुन, वन की कटाई न जलवायु परिवर्तन का कारण आज हम सब देख ही रहे। बरसात को स्वरूप भी बदली गए, खंड वर्षा हुई रही, कहीं बाढ़ का हालात छे तो कहीं सूखा को सामनो करनो पड़ी रोज। इना सब कारण न का दोषी हम सब छे, जिन्हें प्रकृति का साथ हमने जो व्यवहार करे। वन न की कटाई बरसात का सबसे अधिक प्रभावित करे, पेड़ पौधा वातावरण में नमी बनाए रखे, बरसात लवणा में सहायक रहे, जंगल कम होना से बरसात को संतुलन बिगड़ी गयो, नहीं ना असंतुलन का ठीक करने की जवाबदारी भी हम सब की छे। हम सब अपना जीवन में कम से कम एक पौधो लगाई ना उनकी देखभाल करा, हमारी करी गई भूल न को प्रायश्चित करी सका। इस समय वन महोत्सव का तहत कई कार्यक्रम न का आयोजन भी करो जाई रो, ताकि हर प्राणी में पर्यावरण सुधार का लेना जागरूकता आवा। उ प्रकृति का प्रति अपना कर्तव्य को निर्वहन एक पेड़ लगाई न करी सका। आने वाली पीढ़ी खबी ना कार्य से जोड़ना का लेना, स्कूल कॉलेज नमा एक पेड़ माँ का नाम से लगाई जाई रो। भाई बहनों, प्रकृति का प्रति अपना इना कर्तव्य का हम सब जरूर पूरा करा। भाई बहनों, याद करो बचपन की वो कागज की नाव, मोर को नाच, मिट्टी की सौंधी खुशबू, हरियाली से भरा खेत। आओ बरसात हमका अवसर दे रही कि हम सब अपनी भूल न का सुधारते हुए प्रकृति का इना अनमोल खजाना का बचावना का लेना घर का हर सदस्य का पेड़ लगावना का लेना प्रेरित करा। प्रकृति की गोद का आनंद को हम ऋण चुकावा। भाई बहनों, ने ये तो थी आपकी न हमारी बातचीत। आओ आप सुनान बलिराम आशाराम यदुवंशी सी यो लोकगीत।

भाई बहनों, अभी हम सुन रहा था बलिराम आसाराम यदुवंशी से ये लोकगीत। अब समय छे आज का प्रश्न को। प्रश्न छे, मानसून का समय संक्रमित चारा पानी न दूषित मिट्टी सी पशु न का कौन सा रोग होने की संभावना रहे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लो, मानसून का समय संक्रमित चारा पानी न दूषित मिट्टी सी पशु न का कौन सा रोग होने की संभावना रहे। इना प्रश्न का उत्तर हम आपको बतावांगा कार्यक्रम का आखिरी में। पूरा कार्यक्रम में बना रहो हमारा साथ। भाई बहनों, इस समय हम देखी राज कि हमारे यहाँ बुआई जोर शोर से चली रही। इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश में खाद्यान्न उत्पादन को एकमात्र सहारो छे हमारी कृषि। हरित क्रांति न खाद्यान्न उत्पादन बढ़ावना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन समय का साथ साथ रासायनिक उर्वरक न कीटनाशक न का प्रयोग करना सी उत्पादन में बढ़ोतरी तो हुई, परंतु मिट्टी की उर्वरता कम होने लगी, भूजल प्रदूषित होने लगे, किसान भाई बहन की कृषि लागत बढ़ती जा रही, साथ ही रासायनिक अवशेष वाला खाद्य पदार्थ

का कारण हमारा स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ी रोज। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक खेती एक प्रभावी न टिकाऊ खेती का रूप में हमारा सामना आई। प्राकृतिक खेती को मूल सिद्धांत यही है कि प्रकृति स्वयं एक संतुलित व्यवस्था है। यदि खेती प्राकृतिक संसाधन का उचित प्रयोग से करी जाए तो बिना रासायनिक पदार्थ न का भी अच्छी उपज प्राप्त करी जा सके। इन्हीं पद्धति में गोबर, गोमूत्र, जीवामृत, बीजामृत, मल्चिंग न फसल विविधता जैसी तकनीक न को उपयोग करो जा सकज। एमा मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीव न की संख्या बढ़ज न भूमि की उर्वरता भी बनी रहे, फसल को स्वास्थ्य भी अच्छो रहे। प्राकृतिक खेती का कई लाभ छे। सबसे पहलो लाभ ही छे कि मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे। प्राकृतिक खेती में जैविक पदार्थ न की मात्रा बढ़ज न मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, जेकासी जल संरक्षण हो जा। मल्चिंग जैसी तकनीक नसी मिट्टी में नमी लंबा समय

0: मिट्टी का कई लाभ छे। सबसे पहलो लाभ ई छे कि मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे। प्राकृतिक खेती में जैविक पदार्थ न की मात्रा बढ़े न मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, जेका सी जल संरक्षण हो जा। मल्चिंग जैसी तकनीक नसी मिट्टी में नमी लंबा समय तक बनी रहे। सिंचाई की आवश्यकता कम हो, जेका सी पर्यावरण प्रदूषण नहीं होतो न मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से भी प्राकृतिक खेती से प्राप्त अनाज फल न सब्जी सब शुद्ध रहे। आज हम देखी राज कि नित नवी बीमारी न देखना न सुनना माई रेज। प्राकृतिक खेती से उत्पन्न खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य की रक्षा करे। साथ ही प्राकृतिक खेती किसान न कलेना आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनावज। रासायनिक खाद कीटनाशक न महंगा बीज खरीदने से किसान नखल लागत कम हो, साथ ही जैव विविधता का संरक्षण में भी सहायक छे। खेत में कई प्रकार की फसल न पेड़ पौधा पक्षी कीट न सूक्ष्म जीवन को संतुलन बने न रखत। रासायनिक खेती इना संतुलन का बिगाड़ी देस, जबकि प्राकृतिक खेती इनका सुरक्षित रखने को काम करें, जेका से पर्यावरण साफ न संतुलित रहे। भाई बहनों, हम सब जलवायु परिवर्तन का प्रभाव का देखी रहे। अनियमित वर्षा सूखो बाढ़ न बढ़तो तापमान खेती का प्रभावित करी रोज। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव से निपटना को प्राकृतिक खेती एकमात्र उपाय छे। भाई बहनों, हम कई सकान की प्राकृतिक खेती आज की सबसे बड़ी आवश्यकता नमसी एक छे। रासायनिक खेती का दुष्परिणाम का कम करी न मिट्टी की उर्वरता का हम बढ़ाई सकान, जल प्रदूषण पर्यावरण संकट से बचे सकान। उन्हीं प्रकृति जैमा की स्थानीय संसाधन जैविक पदार्थ न प्राकृतिक प्रक्रिया न को उपयोग करी न फसल उत्पादन का हम बढ़ाई सकान। यदि हमको स्वस्थ समाज सुरक्षित पर्यावरण समृद्ध कृषि व्यवस्था को निर्माण करनो तो प्राकृतिक खेती का अपनावन होएगा। प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी का उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला भी छे। भाई बहनों, इतो थी आपकी न हमारी प्राकृतिक खेती का अपनावना पर बातचीत। न भाई बहनों, आओ अब चलन जानकारी की तरफ न सुनान भेंटवार्ता। विषय छे मशरूम की खेती। जानकारी दे रही कृतिका सैनी।
1: जैसा कि आप जानते ही हैं, कृषि इस समय लाभ का व्यवसाय बनती जा रही, लेकिन हम देख रहे हैं कि परंपरागत खेती के साथ साथ अगर किसान भाई अन्य फसलों का भी उत्पादन लेते हैं तो उन्हें एक अतिरिक्त आय अर्जन हो सकती है। इसी क्रम में आज हमारे साथ फोन से जुड़ रही है कृषि से स्नातक कुमारी कृतिका सैनी, जिन्होंने अपने सानिध्य में कई किसानों को लेकर मशरूम की खेती के विषय में उन्हें जानकारी दी और उनके उत्पादन से उनको बहुत लाभ हुआ है। तो हम जानते हैं कि मशरूम क्या है और किस प्रकार से इसकी खेती की जा सकती है। तो कृतिका सैनी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: कृतिका सैनी जी, जैसा कि आपने अपनी शिक्षा से अर्जन किया है खेती में नवाचार किया जाए, तो खेती में नवाचार के अंतर्गत आपने किसान भाइयों को किस खेती के लिए प्रेरित किया?
2: जब मैं अपना स्नातक अपनी डिग्री कंप्लीट कर रही थी तो उस दौरान मैंने सोचा कि क्यों ना जो किसान आज की समस्याओं से घिरे हुए हैं तो उन्हें एक आय का एक स्रोत उन्हें समझाया जाए। आज किसान के पास जो सारे फसल उत्पादन करने के अलावा जो भी स्रोत है की जानकारी तो है, लेकिन उसको अगर हम उन्हें करके जब तक नहीं दिखाते हैं, हम जैसे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट लोग, तो वो उसका लाभ नहीं ले पाते। तो मैंने जब अपनी डिग्री के दौरान जब मैंने मशरूम की खेती पर काम किया तो इसको मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये किसानों तक इस चीज को पहुंचाऊं, इससे क्या लाभ हो सकते हैं उसे मैं उनकी जानकारी दूं और ये कैसे उनकी आय का एक अच्छा स्रोत बन।
1: कृतिका जी, जैसे आपने कहा कि आपने किसानों को बताया अपनी शिक्षा का उपयोग करते हुए कि उन्हें किस प्रकार से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं परंपरागत खेती के साथ, तो आपने मशरूम के विषय में किस प्रकार से बताया कि मशरूम क्या है?
2: मशरूम को अगर हम सबसे पहले समझे तो लोगों के मन में बहुत मशरूम को लेकर धारणाएं हैं ना। मशरूम को हम आम भाषा में कुकुरमुत्ता भी कहते हैं और ये बहुत ही आम धारणा है कि ये जो स्वान होता है, कुत्ता होता है, उसके मूत्र से उत्पन्न होता है। तो इस धारणा को मैं सबसे पहले मिटा दूं उनके मस्तिष्क से कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मशरूम एक कवक है जिसको हम कह सकते हैं फंगस, आप फंगस से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे।

0: वो एक फंगस है। फंगस भी दो प्रकार की होती है, खाने योग्य होती है और खाने योग्य कुछ नहीं होती। जो मशरूम होता है वो खाने योग्य फंगस में क्या अंतर्गत आता है?
1: मशरूम क्या है, इस विषय में आपने किसानों को समझाया, और इसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं किसान भाई, क्या फायदे हैं इसमें, क्या ऐसे तत्व हैं जो इसके उत्पादन से किसानों को लाभ दे सकते हैं?
0: जी, अगर हम इसके फायदे की बात करें तो बहुत सारे फायदे। फायदे जब तक हम किसी को भी नहीं बताते हैं तो लोग उसकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं। तो अगर आप किसी भी चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके फायदे आप लोगों तक। तो मशरूम के जो फायदे हैं उसमें सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। इसमें विटामिन की भरपूर मात्रा होती है, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, विटामिन सी, और साथ ही साथ जैसे न्यूट्रिएंट कैल्शियम पोटेशियम का भी बहुत स्रोत होता है। इसमें अमीनो एसिड भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो फायदे और इसकी अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छी।
1: जैसे आपने बताया कि इसमें कई तरह के पोषक तत्वों का मिश्रण होता है, क्या ये औषधीय रूप से भी ये उपयोगी फसल है?
0: जी बिल्कुल, औषधि रूप से भी इसका उपयोग किया जा रहा है। इसकी बहुत अच्छी मेडिसिनल वैल्यू है जिसके कारण कई बीमारियां, हम जानते हैं आज की तारीख इस जिस शैली में हम जी रहे हैं, हम बहुत सारी बीमारियों से, हम नहीं मतलब दुनिया पूरी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है, बड़ी बड़ी। वैसी बीमारियों से लड़ने के लिए ये बहुत अच्छा सिद्ध हुआ है, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज और जो हृदय रोग होते हैं, साथ ही साथ ही कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी बहुत मदद करता है। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। इसमें आयरन काफी अच्छी मात्रा में होता है। ये एनीमिया डिसीज को भी से भी लड़ने में हमारी मदद करता है। साथ ही इसमें होता है कैल्शियम और पोटेशियम, जैसा कि मैंने बताया, ये हमारी हड्डियों को मजबूत करने में काफी सहायक होता है।
1: तो कृतिका जी, आपने इसके जो औषधीय गुण हैं उनसे भी अवगत कराया, लेकिन क्या इसकी अलग अलग प्रजाति होती है? क्या इसको किस प्रजाति को उगा सकते हैं, किस प्रकार से इसका चयन किया जाता है?
0: जी, इसकी प्रजातियों की बात की जाए तो दुनिया भर में 3,000 से ज्यादा इसकी प्रजातियां मौजूद है। लेकिन जिसे हम फसलों के रूप में कह सकते हैं, जिसे खाने योग्य माना गया है, वो 60 है। और उसमें से भी जो भारत में लगाई जा रही है वो कुछ 10 से 12 है।
1: जी
0: और जिसके मैं उदाहरण दूं तो सबसे पहला जो हम बहुत अच्छे से अवगत हैं जिससे, वो होता है बटन मशरूम। जो आपको मार्केट में जो भी आपने अगर मशरूम देखा होगा वो बटन मशरूम ही होता है, क्योंकि भारत में 90% से ज्यादा बटन मशरूम ही लगाया जाता है। दूसरा होता है ऑयस्टर मशरूम, फिर मिल्की मशरूम, ऐसे बहुत उदाहरण है।
1: कृतिका जी, ये तो बताया आपने इसकी वैरायटी, लेकिन क्या हमारे यहाँ की जो जलवायु है, क्या हमारे यहाँ का जो मौसम है मशरूम के उत्पादन के लिए अनुकूल है?
0: एक तो इसे हम दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो हम उसे प्राकृतिक रूप से लगा सकते हैं जिसमें हम प्राकृतिक जो कंडीशन होती है जैसे तापमान होता है, आर्द्रता होती है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते, उसे कहते हैं प्राकृतिक रूप से लगा। तो अगर हम प्राकृतिक रूप से लगाएं तो फिर इसके लिए जो सुटेबल बोल सकते हैं जो जलवायु होती है वो होती है हिमाचल। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि भारत में सिर्फ 25% ही प्राकृतिक रूप से लगाया जा रहा है, मतलब बाकी 75% जो है वो आर्टिफिशियल लगाया जा रहा है। वो कैसे लगाया जाता है, वो बहुत ही आसान है। उसके लिए बस आपको वन टाइम सेटअप करना होता है। एक बार अगर आप छोटी सी जगह पर भी एक कमरे में भी सेटअप कर लेते हैं तो आप उसे लगा सकते हैं। इसके लिए आपको जलवायु या फिर मौसम इस पर निर्भर होना नहीं हो, फिर हम इसे किसी भी मौसम में जलवायु में लगा सकते।
1: जैसा आपने कहा कि इसका सेटअप लगाना होता है, तो आप हमारे किसान भाइयों को इसको विस्तार से समझाइए कि किस प्रकार से हमारे किसान भाई मशरूम का सेटअप लगा सकते हैं, किस प्रकार से इनका उत्पादन ले सकते हैं।
0: हम बड़ी बड़ी बात ना करते हुए, क्योंकि हमारे जो किसान हैं वो भारत में 85% जो है छोटे किसान है। हम छोटी बात, अगर हम एक कमरा होता है जो नॉर्मल साइज का जो भी, और अगर कच्चा हो तो और ही अच्छा, इस तरीके का एक कमरा ले लें, बस इस छोटे से कमरे से हम 500 किलोग्राम जो मशरूम है वो निकाल सकते हैं, वो भी एक सीजन में। एक सीजन में मतलब सिर्फ 3 महीने की क्रॉप में आप इतना ले सकते हैं। इसमें करना ये होता है कि आपने जो भी एक रूम सिलेक्ट किया है उसमें आपको टेम्परेचर, तापमान कहते हैं, तापमान को मेंटेन करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये 15 डिग्री टेम्परेचर पर ही ग्रो कर। तो अगर आप

0: एक बार सेटअप कर लिया, अब
1: हुँ.
0: वो आप पर निर्भर करता है कि आप उसको सेटअप कैसे करेंगे. तो सिंपल उदाहरण क्या करते हैं, जो टाट होता है हमारा जूट का, उसे लिया जाता है और कमरे के अंदर की चारों दीवारों को उस टाट से कवर कर दिया जाता है और उसे पानी दिया जाता है और वहां पर एक ठंडा सा एक वातावरण, वहां पर एक सूक्ष्म वातावरण वहां पर बना लिया जाता है. कुछ लोग जो होते हैं जिनके पास, सब भारत में कहते हैं ना जुगाड़ से बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो कुछ लोगों के पास ऐसा भी सिस्टम है कि वो जुगाड़ से कूलर होते हैं वो उसको भी इसके अंदर रख लेते हैं, कुछ के पास एसी की व्यवस्था होती है नॉर्मल रूप से जो हमारा जो जूट का टाट होता है उससे, और अगर आप फैन की व्यवस्था हो तो वो कर दें जिससे ठंडक बनी रहे वहाँ उस कमरे में, ये कर सकते हैं. दूसरी चीज, आपको ये जो मशरूम के बैग्स होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम बात करेंगे, कि वो बैग्स को आपको नीचे नहीं रखना होता. अब इस रूम में आपको रेक की व्यवस्था करनी होगी, जमीन से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हमने वहां पर ठंडक बनाए रखा और ठंडक जब उस कमरे में होगी तो जीव जो है वहां पर ठंडी जगह पर रहने वाले आ सकते, आपको काफी खतरा हो सकता. तो पहली चीज तो, और मशरूम को जैसे जमीन में रखेंगे तो वो जमीन की जो तापमान होगा वो उसको ग्रहण कर ले, तो अच्छा है कि आप उसे ऊपर ही रखें.
1: बिल्कुल,
0: इस सिंपल से सेटअप में आप इसे लगा.
1: कृतिका जी, आपने सेटअप बताया और एक साधारण तरीके से एक सामान्य वर्ग का किसान इसका सेटअप लगा सकता है. अब बात करते हैं कि इसको लगाने की विधि क्या है और इसकी देखभाल के लिए क्या विशेष सावधानी रखी जाती है.
0: जैसे कि हमने बात की, जो मशरूम होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, अलग अलग वेराइटी है, तो इसकी जो विधि है वो भी मशरूम को लेकर अलग अलग है. एक कॉमन जो मेथड मैं आपसे साझा करती हूँ, कॉम लेयर मेथड, जो कि बहुत आसान सा तरीका है मशरूम को उगाने का. इसमें हम क्या करते हैं, हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है पहले वो बात, हमें इसमें जरूरत पड़ती है गेहूं की या फिर चावल की भूसे. दूसरी चीज, हमें स्पॉन की जरूरत पड़ती है, वो मैं आपको बताऊंगी स्पॉन क्या होता है, और पानी और फॉर्मल लीव. ये चार चीजें हैं जिससे हम देखते हैं कैसे लगाते हैं. सबसे पहले तो हमें ये करना होता है कि 24 घंटे एक बड़े से पॉट में पानी भरकर उसमें गेहूं की या फिर चावल की जो भूसी आपने लिए उसको डालकर रख दिया जाता है, भिगो कर रख दिया जाता है. दूसरे दिन उसे क्या किया जाता है, उसमें से निकाला जाता है. ध्यान रखिए कि जो भी आप पॉट ले रहे हैं उसे और जो पानी लिया है उसमें आप 5% फॉर्मेलिन जरूर है. फॉर्मेलिन क्या होता है, फॉर्मेलिन एक टाइप का सैनिटाइजर आप समझ सकते हैं, जो कि जीवाणु और विषाणुओं से उस पानी को और उस जो आप गेहूं की भूसी ले रहे हैं अगर उसमें कोई रोगजनक जीवाणु विषाणु कवक होंगी तो उसे वो मुक्त कर देगा, नष्ट कर. फिर इस तरीके से उसे भिगो कर रखेंगे. दूसरे दिन उसे हमें धूप में सुखाना होता है, उसे इतना सुखाना होता है कि उसमें मॉइस्चर कितना ले जाए, उसमें मॉइस्चर रखना भी होता है और जो अतिरिक्त जो उसमें नमी होती है उसे निकाल देंगे, बस इतना ही उसे सुखाया जाता है. इसको चेक करने के लिए आप हथेली में दबाकर जो आपकी देसी विधि होती है उससे चेक कर सकते हैं उसमें कितना नमी मौजूद है. फिर इसके बाद इसको लेयर बनाएंगे, इसके लिए हमें चाहिए होती है पॉलिथीन बैग्स. पॉलिथीन बैग्स जो होती है वो 1 से 1.5 फीट की आपको चाहिए. इन पॉलिथीन बैग्स में हमें लेयर बनानी होती है. तो अब हमने ले लिए एक पॉलिथीन बैग, उसमें हम डालेंगे एक लेयर जो हमारा गेहूं की भूसी है उसका, फिर उसके ऊपर डालेंगे हम स्पॉन. स्पॉन क्या है और हम गेहूं की भूसी क्यों ले रहे हैं ये समझ लेते हैं. जो गेहूं की भूसी है, जो हमारे किसान भाई है जब खेत में लगाने जाते हैं फसल, उन्हें क्या चाहिए होता है, मिट्टी चाहिए होती है और बीज चाहिए होता है
1: जी.
0: सबसे पहले तो आपकी गेहूं की भूसी है समझ लीजिए वो मिट्टी है, और जो आप स्पॉन डाल रहे हो वो एक स्पॉन होता है. जो आप मशरूम लगाने जा रहे हैं उस फंगस का स्पॉन होता है जो कि आप बीज होता है. उस बीज जो आपने गेहूं की भूसी लिए उसमें स्पॉन को डाल देंगे. सबसे नीचे अब हम विधि देखें. सबसे नीचे हमने एक लेयर बनाई गेहूं की भूसी, उसके ऊपर हमने स्पॉन की लेयर बनाई, फिर उसके ऊपर एक गेहूं की भूसी की लेयर बनाएंगे, फिर उसके ऊपर एक स्पॉन की लेयर डाल. ऐसे लेयर बाय लेयर हमें क्या करना होता है, ऊपर तक पॉलिथीन के बैग को भर लेना होता है. थोड़ी सी जगह में पंजे की छोड़ देंगे, उसको मरोड़ के उसकी पूरी एयर उसमें से बाहर निकल जाए, उसमें एयर ना रहे आपकी जो है. इस तरीके से उसे मरोड़ के बांध दिया जाता है और फिर उसमें छेद कर दिए, उसमें छेद कर दिए जाते हैं कुछ 20 से 25 और फिर छोड़ दिया जाता है. ये आपका एक पैकेट तैयार हो गया. ऐसे आपको पैकेट बना देने हैं. आपके रूम, आपने कितना बड़ा कमरा लिया उसके हिसाब से जितने आप जगह है जितने पैकेट बन जाए वैसे. इतनी सी ही इसकी मेथड है. इसमें आपको पानी देना होता है जब आपको लगे कि सूखा हो गया है अब थोड़ा सा, इसमें आप पानी छिड़ा.

0: लेकिन जो आपने जूट की टाट की जो बोरियां लगाई हैं उससे अच्छे से आपको गीला करके रखना होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो सूखे।
1: ये तो विधि बता दी है कि किस प्रकार से हमारे किसान भाई मशरूम को लगा सकते हैं। अब बात आती है कि इसका जो उत्पादन है वो कितने दिनों में किसान को प्राप्त हो जाता है?
0: इसका उत्पादन बहुत ही कम समय में मैं कह सकती हूँ, बाकी जो फसल किसान लगाता है उसकी तुलना में कम समय में लग 3 से 4 महीने में ये फसल आपकी तैयार हो जाती है। तो एक साल में किसान 3 से 4 फसल ले सकता है अगर उसका जोरदार उसका सेटअप हो।
1: अब कृतिका जी, मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि मशरूम किस प्रकार से निकाला जाता है, क्या कब पक गया है और कब अब इस फसल को किसान बाजार में ला सकता है, इसकी क्या पहचान है?
0: जी, इसकी पहचान ये एक तरीका का फंगस है। पहली तो 15 दिन में क्या होता है कि इसके माइसीलियम निकल जाते हैं, मतलब इसकी जो ग्रोथ है वो आपको दिखने लगती है, व्हाइट कलर की होती है। और जिस विधि की मैंने बात की है इससे ऑयस्टर मशरूम लगाया जाता है जो कि इसे पत्ती के आकार का होता है। तो वो उसकी पहचानने की विधि यही है कि अब ये मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो गया है, ये अपनी फुल ग्रोथ कर ले। जब आपको पूरा ऐसा फूल खिला हुआ दिखने लगे, मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रही हूँ कि ऐसा फूल खिला हुआ पूरा मशरूम का दिखने लगे, उसने अपना पूरा साइज ले लिया हो, तब ये मार्केट के लिए तैयार हो जाता है। और इसके को लगते हैं कुछ 2.5 से 3 महीने और कुछ थोड़े ज्यादा भी लगते हैं, इतने समय में ही ये तैयार हो जाता है।
1: कृतिका जी, जैसे कि ये 3 महीने या 4 महीने में हमारे किसान भाई इसको बाजार में ला सकते हैं, तो इसकी मार्केट वैल्यू किस प्रकार की होती है, इससे किसान भाइयों को क्या लाभ मिल सकता है?
0: सब किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि उन्हें किसान बेचना नहीं चाहता है, एक समय होता है ऐसा कि वो अपनी उपज को बेचना नहीं चाहता है, लेकिन उसकी उपज जो है वो खराब हो जाए इसलिए वो बेच देता है कम दामों में, इसे डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज हमारे किसानों की। तो मशरूम के केस में क्या होता है कि मशरूम का जो उपयोग है वो सिर्फ सब्जियों में, ताजी सब्जियों के रूप में तो किया जाता ही है, साथ ही साथ जो उसकी उपज निकल रही है वो जाकर सब्जियों के रूप में बेच सकता है। इसका ओपन मार्केट है, वहाँ जाकर ये इसे बेच सकता है, ये होटल्स पे जाकर वहाँ पर भी डायरेक्ट सेल कर सकता है। और इसके बाद भी अगर इनके पास मशरूम बच जाए तो ऐसा नहीं है कि ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाएगा या फिर मतलब हार्वेस्ट कर लिया के बाद ये आपका खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इससे आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको स्टोर करके आप अचार बना सकते हैं, आप इसका मुरब्बा बना सकते हैं कि कैंडीज बनने लगी है। और इसे सबसे सिंपल तरीके से आप धूप में सुखा दें, धूप में सुखाने के बाद इसका एक पाउडर बना दें। और आज के युवाओं में ये बहुत ज्यादा चलन है प्रोटीन पाउडर को पीने का, और जैसा कि मैंने बताया कि मशरूम प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो धूप में इसे सुखा देना है, इसका पाउडर बना लेना है और पैकेट में आप सेल कर, और ये ब्रांड बन गए हैं तो, और ब्रांड के नाम पर प्रोटीन पाउडर के रूप में मशरूम का पाउडर सेल हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी है, छोटे किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज है कि वो इससे अपनी आय ले सकते हैं, एक अतिरिक्त आय निकाल।
1: कृतिका जी, अंत में मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या इसके लिए शासन द्वारा भी किसानों को मदद की जा सकती है?
0: इससे गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा मशरूम की खेती को प्रमोट कर रही है, और ये नई चीज नहीं है। जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इस योजना के बारे में जानकारी होगी, अब ये पुरानी है योजना, किसानों की मदद की जाती है, इसमें जो भी कॉस्ट आता है किसानों का, स्मॉल और मार्जिनल जो किसान होते हैं, छोटे किसान भाई जो होते हैं उनके लिए 40% तक सब्सिडी उन्हें मिल जाती है। नाबार्ड जो है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बहुत सी सब्सिडी इस मशरूम के लिए दे रहा है और किसान भाइयों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, बहुत ही बोल सकते सरल रूप
1: सरलतर। मशरूम के विषय में आपने कितने किसान भाइयों को अपने क्षेत्र में उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया है?
0: हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा है, हमने उनसे जुड़कर कार्य किया था मशरूम की खेती से के संबंध में। तो जब हम ये कार्य कर रहे थे तो कृषि विज्ञान केंद्र पर बहुत से ऐसे फार्मर्स थे हमारे आसपास के, जो आया करते हैं हमेशा, और ट्रेनिंग वहां से उन्हें मिलती है। और जब हम साथ में मिलकर काम कर रहे थे तो हमने आसपास के क्षेत्र के, जैसे 6 गांव माखन और इस तरह के जो खंडवा के आसपास का क्षेत्र, इनके बहुत से किसानों को हमने इसके बारे में बताया।
1: कृतिका सैनी जी, आपने हमारे किसान भाइयों को मशरूम की खेती

0: किस प्रकार कर सकते हैं और इसके क्या क्या लाभ हैं, किसान भाई व्यापार किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार
2: भाई बहन। अभी हम सुनी रहा था भेंटवार्ता, विषय थो मशरूम की खेती, जानकारी दे रही थी कृतिका सैनी। भाई बहन आप समय छे आज का कृषि समाचार को। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव ना किसान नसी अल्प वर्षा की स्थिति का देखते हुए कम पानी न कम अवधि वाली फसल को रकबो बढ़ावना की अपील करी, उन प्राकृतिक खेती कमा न जैविक खेती का अपनावना की बात कही, नसरी अन्न यानी मोटा अनाज का उत्पादन का प्राथमिकता पर जोर दियो, जल संरक्षण वर्षा जल संचयन सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को उपयोग महत्वपूर्ण छे, कोदो कुटकी रागी ज्वार बाजरा जैसी फसल न जलवायु परिवर्तन की चुनौती न का अनुरूप होने का साथ कम लागत अधिक पोषण न आय में वृद्धि को अच्छो विकल्प छे, उन वैज्ञानिक कृषि पद्धति अपनावना का साथ सोशल मीडिया पर आधारित मानसून की जानकारी को उपयोग करना को आह्वान करे। भाई बहन होने तो था आज का कृषि समाचार। कृषि उपज मंडी से प्राप्त उपज का भाव इना प्रकार से रहा, सोयाबीन न्यूनतम भाव 5000 न अधिकतम 7300, गेहूं को न्यूनतम भाव 2400 अधिकतम 2645 रुपए प्रति क्विंटल, लोकवन गेहूं को भाव रहे हो 2700 न्यूनतम न अधिकतम, तुअर को न्यूनतम भाव 5001 अधिकतम 7250, चना को न्यूनतम भाव 4700 अधिकतम 6000 रुपए प्रति क्विंटल, डालर चना को भाव रहे हो 5000 न अधिकतम 6650, उड़द को न्यूनतम न अधिकतम भाव एकज रहे हो 6631 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग को न्यूनतम भाव 5238 न अधिकतम 7251 रुपए प्रति क्विंटल, मटर को न्यूनतम भाव 2850 न्यूनतम न अधिकतम एकज रहे हो, मक्का को न्यूनतम भाव 2135 न अधिकतम 2154 रुपए प्रति क्विंटल। ये तो था कृषि उपज मंडी से प्राप्त उपज का भाव। मौसम की जानकारी में सूर्योदय 5:46 पर न सूर्यास्त 7:10 पर हुयो, दिन को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहो न रात को न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। न भाई बहनों आओ अब सुनान मेवाराम नायक न उनका साथी नसी यो लोकगीत।

भाई बहनों, अभी हम सुनी रहा था मेवाराम नायक न उनका साथी न सीओ लोकगीत। अब समय छे आज का प्रश्न का उत्तर को। हमने आज से प्रश्न पूछो थो कि मानसून का समय संक्रमित चारा पानी न दूषित मिट्टी सी पशु नमा कौन सो रोग होने की संभावना रहे। तो भाई बहनों, मानसून का समय संक्रमित चारा पानी दूषित मिट्टी सी पशु नमा लंगड़ा बुखार होने की संभावना रहे। न भाई बहनों, पशु असामा जुगाली करनो बंद कर दे जान मनो रहे। इन्हीं बात को ध्यान रखते हुए पशु नख तुरंत चिकित्सालय में बतावा। एक साथ आज का कार्यक्रम को समय यहाँ पूरा हो। आज्ञा देव। राम राम।

अभी खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: टाइपराइटिंग मशीन है या बला। मेरे नाखून का पॉलिश उड़ गया, उंगलियां दर्द करने लगी, दो लाइन भी टाइप ना हो सका। अभी बड़े साहब के साहब ज्यादे आएंगे और खोजेंगे सारा काम। सारा कुछ करके थक गए, अब शौक चल रहा है कविता लिखने का। लो, वो आ गए।
1: वाह वाह वाह, जवाब नहीं मेरा, यानी झगरू प्रसाद चमचम का। आए हाय हाय, क्या सूझबूझ है मेरी, क्या बढ़िया आइडिया इस कविता का। घर में है बेगम, नाक में है दम, छोड़ा छेड़ा जो गाना, हो गया बेगाना, मारी जो सीटी, निकल गई निकल गई निकल गई। अरे अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा।
0: निकल गई जूती, ये कैसा रहेगा चमचम जी।
1: अरे निकल जाएगी जूती तो मेरे सर की सलामती का जिम्मा आप लेंगी क्या।
0: सर लेकिन बेगम तो अभी आई नहीं है।
1: आने वाली है ना। अरे आई नहीं है तो क्या हुआ, आ जाएंगी आ जाएंगी।
0: हाय हाय, हम तो उनकी प्रतीक्षा में अभी से पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। क्या कहते हैं सर वो हम भी तो खड़े हैं राहों में।
1: हाय प्रमिला जी, मैं तो देखते ही बाग बाग हो गया। एक काम कीजिएगा प्लीज, जैसे ही पापा से आपकी भेंट हो ना, आप उनसे बेधड़क कह दे मुझे वे पसंद है, अब जल्दी ही शादी का पैगाम भेज दीजिए बस।
0: जरूर जरूर, मैं दिवाकर बाबू से कह दूंगी सर।
1: हाँ, ये तो हुआ। अब जरा ये बताइए कि मैंने वो पहली वाली कविता जो आपको टाइप करने के लिए दी थी वो हो गई है ना।
0: जी, अभी तो उसी में झक मार रही हूँ सर।
1: क्या?
0: जब से आई हूँ उसे ही टाइप करने में लगी हूँ, मगर कम वक्त, ये मशीन है ना पूरी जान की बला है सर।
1: क्यों, अभी 2 महीने पहले ही तो ये नई मशीन खरीद कर आई है, पापा ने इसे

0: सिर्फ आपके कहने से आपकी पसंद की दुकान से खरीदी है। हाँ
1: तो सर यही तो रोना है सर। पहले मैं सेठ बिस्मिल्ला प्रसाद की सेक्रेटरी थी, वो मुझे कितना चाहते थे, पर जब आपके पापा दिवाकर बाबू की खूबियों का पता चला ना सर, तो मैं यहाँ आ गई हूँ। लेकिन सर आप मेरी थोड़ी भी कद्र नहीं करते।
0: देखिए देखिए आप तो सब कुछ रोने लग पड़ी। जान लीजिए प्रमीला जी, मैं किसी को पिटते देख सकता हूँ पर रोते नहीं। ले लीजिए मेरा रुमाल, अपनी आंख और अपनी नाक पोंछ लीजिए और फिर फटाफट मेरी पहली और अभी वाली कविता मैं मान गया मारी जो सीटी निकल गई जूती टाइप कर दीजिए और फौरन से पेशतर इसे गोजू के संपादक जी को भेज दीजिए। उसके बाद मैं महाकवि हो जाऊंगा।
1: लेकिन सर
0: जी,
1: कल की डाक में जो चिट्ठी आपके नाम उन्होंने भेजी है ना, उसमें साफ लिखा है कि ऐसी कविताएं उन्हें आप ना भेजें।
0: अरे उनके लिखने से क्या हो जाता है, ना भेजे अब की बार वो मेरा लोहा मान जाएंगे। हाँ अगर ना माना तो मैं अपना नाम चमचम से बदल कर दमखम रख लूंगा। जल्दी कीजिए फौरन, अभी पापा आने वाले होंगे और वैसे भी उनसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है।
1: बहुत अच्छा सर, अभी करती हूँ।

0: आप आ गए श्री श्री दिवाकर प्रसाद जी। ओह, आपने तो अपना नाम लेने से मना किया था सर, या कि श्रीमान कहने को कहा था ना सर, पर क्या करूं सर, ये जुबान है ना कि फिसल ही जाती है सर।
1: तुम ये भूल जाती हो कि तुम मेरी निजी सेक्रेटरी हो
0: सर।
1: तुम्हारा काम है मुझे सर कहना, पर तुम मुझे दिवाकर प्रसाद कहने से बाज नहीं आती है।
0: सॉरी सर।
1: आइंदे से ध्यान रहे, और फिर कभी मुझे दिवाकर प्रसाद कहा तो तुम्हारी छुट्टी ही कर दूंगा बस।
0: सॉरी सर, आप दिवाकर प्रसाद नहीं, दिवाकर बाबू ही कहूंगी सर। सॉरी सर।
1: फिर तुमने मेरा नाम लिया।
0: सॉरी।
1: यदि मेरे जिगरी दोस्त शेख बिस्मिल्ला प्रसाद ने तुम्हारी सिफारिश न की होती तो मैं तुम्हारी कल की छुट्टी कर देता
0: सर।
1: मगर ये यहाँ तो रामदीन भी नहीं दिखता, अब वो मेरे सपूत झगड़ू प्रसाद जी भी नजर नहीं आते, कहाँ गए ये सब के सब?
0: श्रीमान, ये रामदीन है ना, ये तो एक नंबर का आलसी है, मेरे यहाँ आते ही चला गया। मैं क्या कहूँ सर, अरे उसकी आंखें ऐसी लाल थी कि देखकर ही हंसी निकल जाती थी सर।
1: आंखें लाल थी?
0: कोई तुक्का जरूर गुनगुना रहा था।
1: तुक्का?
0: हाँ सर। खैर, अभी घंटी बजाती हूँ, वो आ जाएगा।
1: क्यों रामदीन, तू अब आ रहा है? मुझे आए 3.5 मिनट से ऊपर हो गए, कहाँ गया था अभी तक, है? बता अभी।
2: हुजूर, गंगा मैया की कसम, मुझे मैडम ने कहा था कि जाकर सो जाओ, तो हुजूर रात भर चौकी काठी करता रहा ना, थोड़ी जबकि आ गई थी।
1: अभी भी तेरी आंखें लाल हैं, तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगा, अब तेरी छुट्टी करनी होगी।
2: ऐसा गजब ना करे सरकार, याद करे, याद करे।
1: क्या?
2: जब से आप सेवा में आए मैं आपका चली रहा, आप रिटायर हुए मैं रिटायर हुआ,
1: तो
2: जिंदगी भर आपके साथ रहा हुजूर, अब कहा जाऊंगा।
1: अरे आप ज्यादा नखरे ना बना। आप जानते हैं पिछले 15 मिनटों से मैं आपको खोज रहा हूँ, और आप है कि न जाने किन लोगों में विचर रहे हैं।
3: जी, मैं तो आपकी आज्ञा पालन में लगा हूँ पिताजी, आपने जो कहा था मैंने वो सब कुछ पूरा कर लिया है।
1: पढ़ाई लिखाई से तो जी चुराते रहे, अपने कुछ बन पाए नहीं। खैर, ये बताइए आपका मुर्गी खाना कैसा है?
3: जी, 8.5 दर्जन मुर्गियाँ और पूरे 2 दर्जन मुर्गे हो रहे हैं, रोज 50 अंडे मिल रहे हैं। वो क्या है पिताजी, 6 तो मैं खा जाता हूँ, 4 मैडम ले जाती है।
1: बागी के अंडों से मैंने कहा था कि बच्चे निकले।
3: हाँ, मैंने ढोना राम कछुआ मल जी की दुकान में बच्चे पैदा करने वाला बढ़िया मशीन देखाया हूँ, उन्हें खरीद लिया जाए तो अच्छा रहेगा।
1: और मैंने सुअर पालने के लिए जो कहा था आपसे?
3: जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप अपने पुराने दोस्त रंगीला चंद जी जो आपकी

0: यहाँ पर पशुपालन अधिकारी है, उन्हें खबर दे दें, उनका भेजा हुआ सुअर यहाँ पहुँच गया है।
1: श्रीमान, छोटे साहब को ठंडी राम जी की कन्या भा गई है। बड़ा अच्छा रहेगा श्रीमान, वहाँ भी शादी का पैगाम भेज दिया जाए।
2: अच्छा, तो सुबुद्धि इस माशा को भी आ गई है, और मैं ये काम भी किए देता हूँ
3: पिताजी।
2: अच्छा तो बताओ कि वो मेरे बचपन के साथी पंडित अजूबे लाल के लड़के यहाँ अभी तक आए कि नहीं?
3: हाँ, उनका भला सलाम है। छबीला पांडे जी, बड़ा अच्छा नाम है, वो यहाँ आ गए हैं, उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम लिखवाना है, वो यहाँ रहेंगे तो मेरा भी मन लग जाएगा पिताजी।
2: अबे उनके रहने का प्रबंध हो गया?
3: बिल्कुल हो गया है जी, मैंने उन्हें फर्स्ट क्लास का कमरा दे दिया है और अभी वे उसमें आराम फरमा रहे हैं।
2: ठीक है, आप जाकर ये सारे प्रबंध कीजिए।
3: जी बहुत अच्छा।
2: मिस प्रमिला,
1: आज्ञा हो श्रीमान।
2: आप डिक्टेशन की नोटबुक लेकर तुरंत आइए और फौरन से पेस्टर ये चिट्ठियां लिखकर टाइप करके आज ही भेज दीजिए।
1: अभी आई सर।
2: हाँ तो मैडम प्रमिला
1: जी, सर
2: सबसे पहले आप मेरे होने वाले समधी श्री श्री ठंडी राम जी को लिखिए, आपकी सलोनी कन्या मेरे सपूत झगरू प्रसाद जी को 100% पसंद है, आप जल्दी से शादी की तारीख पक्की कर खबर भेजें।
1: श्रीमान ये सारी बातें लिख ली गई।
2: ठीक है,
1: लेकिन सर अभी सुअर के पहुंचने की खबर भी तो देनी है।
2: ओहो ठीक ठीक ठीक। अच्छा ऐसा करो, मेरे परम प्रिय साथी पशुपालन अधिकारी जी को लिखो कि उनका भेजा हुआ सुअर यहाँ पहुंच गया है। हाँ, उसके रहने सहने के लिए खास व्यवस्था कर दी गई।
3: पिताजी पिताजी, अब परम मित्र छबीला पांडे जी के पिता श्री पंडित अजूबे लाल को भी खबर दे दी जाए कि उनके सपूत यहाँ सकुशल पहुंच गए हैं और बड़ी मस्ती से रह रहे हैं, उनके रहने खाने पीने सोने आदि सारी चीजों का फर्स्ट क्लास इंतजाम कर दिया गया है।
2: देखा मैडम प्रमिला, आपने लिख लिया ना?
1: जी सर।
2: अरे आखिर सपूत मेरे ही है ना। कैसा अच्छा डिक्टेशन दिया है, इसे पढ़कर मेरे बचपन के दोस्त अजूबे लाल जी फूले नहीं समाएंगे। वे भी क्या कहेंगे, अरे यही कहेंगे कि मैं इतना बड़ा होने पर भी उन्हें नहीं भूला।
1: मैंने सारी बातें लिख ली श्रीमान।
2: ठीक, अब तुरंत इन्हें टाइप करो और आज ही भेज दो। देखो पता ठिकाना ठीक से लिखना।
1: सर मैं आंखें बंद करके बस 2 मिनट में ही ये कर लूंगी, आप जरूर मुझे इनाम देंगे सर।
2: क्यों नहीं क्यों नहीं।
1: श्रीमान आपने जो पत्र भेजे थे उन चारों के उत्तर आज डाक से आ गए हैं।
2: बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आप उन्हें खोलिए और खुद पढ़कर सुनाइए।
1: जी सर, ये पत्र आया है आपके होने वाले समधी श्री श्री ठंडी राम जी का। इन्होंने लिखा है सर। हाँ। लिखा है कि लानत है आप पर।
2: क्या लगती हो?
1: जी सर ये आप खुद ही पढ़ लीजिए सर। ये
2: आप इधर लाओ। दिवाकर बाबू, लानत है आप पर। लानत भेजी है?
1: जी सर।
2: मैं आपको भला आदमी समझकर आपके यहाँ रिश्ता करना चाहता था, पर आप तो निहायत घटिया आदमी निकले। मैं ये रिश्ता खत्म करता हूँ, आगे से कोई खत ना लिखे। प्रमिला ये तुमने क्या घोटाला कर दिया?
1: सर मैंने तो बस 2 मिनट में ही लिखकर भेज दिया था सर।
2: क्या 2 मिनट में लिखकर भेज दिया था? जी चाहता है तुम्हें कच्चा निकल जाऊं। वे जगुल प्रसाद
3: जी,
2: ये दूसरा पत्र तुम पढ़ो।
3: जी बहुत अच्छा। हाँ ये आया है ढूंढा राम कछुआ मल जी की दुकान से। उन्होंने लिखा है कि आपके सुपुत्र यानी मैं ताक झाक कर देख गए घर की बेटियों को, उस पर तुर रहा है कि आप शादी का पैगाम भेज बैठे, लानत है आप पर, आईना से आप मुझसे कोई संबंध ना रखें।
2: अच्छा वो मेरे साथी रंगीला चंद जी ने क्या लिखा है?
3: जी मैं पढ़ता हूँ।
2: मैं पढ़ लूंगा इसे। उनका पत्र आइए, लिखा है आपने मेरे भेजे हुए सुअर को मेरा सपूत लिखकर संबोधित किया है, और ये भी लिखा है कि उसका सारा इंतजाम कर दिया गया है। मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता था। हाय राम हाय राम, लगता है सुअर वाली चिट्ठी मेरे बचपन के दोस्त पंडित अजूबे लाल को मिल गई। मैं क्या करूं?
3: पिताजी आगे लिखते हैं, मैं आगे से आपसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता, मेरा बेटा आज ही आपके घर से चला जाएगा, मुझे आपके एहसान की जरूरत नहीं है।
2: इस बस 2 मिनट वाली सेक्रेटरी प्रमिला ने तो मेरा सारा भंडाधार कर दिया है, मैं कहीं का नहीं रहा।
3: पिताजी और मैं भी कुंवारा मर जाऊंगा, आपके वंश की वृद्धि नहीं होगी।
1: सर सर भूल हो गई सर, बस 2 मिनट में मैं इन्हें फिर से ठीक कर देती हूँ सर।
2: क्या 2 मिनट में ठीक कर
1: सर,
2: देती हूँ?
1: 2 मिनट में
2: बस
1: सर।
2: 2 मिनट में तुम यहाँ से दफा हो जाओ।

0: सारी इज्जत निजाम पर चढ़ा दी, मैं क्या करूंगा?
1: हाय हाय, सारा दोष मेरे थोड़े ही है सर।
0: सोच नहीं, मैं कहता हूँ निकल जाओ 2 मिनट के अंदर यहाँ से।
1: सर बस 2 मिनट सर, 2 मिनट सर, 2 मिनट सर।

अभी आप सुन रहे थे मदन बिहारी शरणदीप का लिखा प्रहसन बस दो मिनट, निर्देशक श्याम सुंदर प्रसाद। ये आकाशवाणी पटना की प्रस्तुति थी।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, चित्रलोक कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। पहला जो गीत है ये केदारनाथ फिल्म का गाना देवनेगी की आवाज़ में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल अमित त्रिवेदी का संगीत।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए रोबोट फिल्म का गाना। एआर रहमान, काश एंड क्रिसी और सुजैन की आवाजें हैं। स्वानंद किरकिरे के बोल और संगीत है एआर रहमान का।

ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। लव यात्री इस फिल्म का गाना आतिफ असलम की आवाज़ में, मनोज मुंतशिर, शब्बीर अहमद और अराफात महमूद का लिखा हुआ गाना, तनिष्क बागची का संगीत।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए रॉय फिल्म का गाना। अंकित तिवारी की आवाज में अभिन्द्र कुमार उपाध्याय ने इस गाने को लिखा, संगीत अंकित तिवारी का।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना सिंघम रिटर्न्स। इस फिल्म का गाना अंकित तिवारी और तुलसी कुमार की आवाजों में, संगीत अंकित तिवारी का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा

0: प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
1: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
3: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में

0: प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
1: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए, और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
2: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरल, माहे ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले तीन से चार दिन तक ऐसे ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ. जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ. अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्लाह अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी

0: का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्र गिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का पहला गाना मेरे सनम, इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत ओपी नैयर का।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है लाट साहेब फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: और अगर मैं अपना नाम जरी हरी भाई जरी वाला दूं स्क्रीन पे तो मैं दो दिन नहीं चलूंगा। अगर तू ये नाम देगा तो तू नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोई प्रोनाउंस नहीं कर सकता। बंगाली में परीक्षित कहते हैं, पंजाबी में कुछ परीक्षित कहते हैं, यहाँ पे हिंदी वाले परीक्षित कहते हैं। ये नाम बड़ा मुश्किल है, और मैं सच सच आज कह रहा हूँ आपको, मैं अपने आप को बड़ा बदकिस्मत समझता हूँ कि मुझे पिताजी ने ये नाम दिया। ये नाम दरअसल दिया टैगोर साहब ने। टैगोर साहब वहाँ पे बैठे अपना क्या नाम है शांति निकेतन में, जब मेरी माताजी के गर्भ में था मैं, जब वो गर्भवती थी, जब मैं उनकी कोख में था, तो वो इम्तिहान दे रही थी बीए का, वही शांति निकेतन में। अब मेरे पिताजी और माताजी वहाँ काम किया करते थे एज प्रोफेसर, तो वो बीए का इम्तिहान दे रही थी। तो गुरुदेव टैगोर ने कहा अभी ये इसके पेट में जो बच्चा है उसने भी दे दिया बीए का इम्तिहान, इसका नाम परीक्षित रखना अगर लड़का होगा तो।
1: अभिनेता संजीव कुमार ने परीक्षित को अपना मनपसंद नाम दिया अजय साहनी। उनकी शुरुआती कई फिल्मों में उनका यही नाम था अजय साहनी।
0: और उसके बाद फिल्म हिट हो गई तो पवित्र पापी हिट हो गई, फिर उसके बाद वो हिट हो गई क्या नाम है समाज को बदल डालो, फिर बस अजय साहनी शुरू हो गया। और मुझे लगे कि ये हो क्या गया दुनिया में।

0: परीक्षित साहनी के नाम से दोस्तों यूं तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिल्मों में प्रवेश के समय उनका फिल्मी नाम था अजय साहनी। परीक्षित से अजय बनने की कहानी आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: जब मैं अनोखी रात में काम कर रहा था तो संजीव ने कहा, यार मेरा नाम दरअसल है हरी भाई जरीवाला।

परीक्षित साहनी की अधिकतर पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल्स में हुई। बाद में दिल्ली और पूना में उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करने

0: वो रूस जा पहुंचे। हालात कहीं अकस्मत, जब वो लौटे तो डायरेक्टर बनते बनते इंडिया में आकर एक्टर बन गए।
1: कहानी बड़ी अजीब गरीब है कि अपना अशीत सेन साहब मॉस्को आए थे, उनके साथ दोस्ती हो गई मेरी, और जब मैं वापस लौटा तो मैं ये पवित्र पापी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा था। हमने सुनील दत्त साहब को साइन कर लिया था, तनुजा को साइन कर लिया था, गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। मैं अपने आप को बड़ा इम्पोर्टेंट महसूस कर रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे कि मैं अपने डायरेक्शन करने जा रहा हूँ। तो बीच में एक थोड़ा वक्त था फिल्म शुरू होने में, तो अशीत सेन साहब एक दिन मिल गए, और मुझे याद आया कि तो मॉस्को में मुझे मिले थे, और उन्होंने कहा भी मैं एक छोटी सी फिल्म बना रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, हम 24 दिन में ख़त्म कर देंगे, और उसमें एक छोटा सा रोल है। तो मेरे एक आदत थी उसूलन, जब मैं बड़ा हो गया मैं झिझकता था पिताजी से पैसे मांगने में, इसलिए जब इन्होंने कहा कि भाई तुम्हें 10,000 रुपये देंगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी वो, तो मैंने हाँ कर दी वो अनोखी रात फिल्म के लिए। और फिल्म जब शुरू हुई तो एक हफ्ता नहीं हुआ था कि प्रोड्यूसर साहब ने डायरेक्टर साहब को कहा कि इस शख्स को निकाल दो इस फिल्म से। वो दरअसल बात ये थी कि मैं 6 साल रूस में रह के आया था, और उस ज़माने में मैं रूसी ही बोलता था, हिंदुस्तानी से वाकिफ नहीं था ज़्यादा, डायलॉग बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी मुझे। मैं आज तक कभी कभी अपने आप को अजनबी सा महसूस करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी के 6 साल जवानी के एक जगह में बिताना, और वो भी रूस जैसी जगह में, तो वापस लौट कर थोड़ा सा एक झटका लगता है आदमी को। और ये दादा मुनि हमारे अशोक कुमार साहब भी आखिरी दम तक कहते रहे तेरी डिलीवरी बड़ी अजीब है यार, तो गलत जगह पे पॉज लेता है जी, गलत सेंटेंस को स्ट्रेस करता है। तो उस वक्त फिर असीत सेन साहब ने कहा प्रोड्यूसर को कि ये जिस तरह से बोल रहा है ऊटपटांग, लोगों को पसंद आएगी, इसको अभी मत निकालो। और यही हुआ। मैं तो सोचता था कि फिल्म आएगी और जाएगी और लोग भूल जाएंगे कौन हूँ मैं, मगर पता नहीं सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश फिल्म बड़ी हिट हो गई। मनोखी रात

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने अजय साहनी के नाम से कई फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई थी। हालांकि बचपन में भी दो तीन फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार की भूमिका अदा की थी, लेकिन उनके पिता महान कलाकार बलराज साहनी साहब चाहते थे कि उनका बेटा पहले तालीम हासिल करे और बाद में कुछ और बने। आपको याद होगा, राजश्री प्रोडक्शन की मशहूर फिल्म तपस्या में परीक्षित साहनी ने अभिनेत्री राखी के साथ एक बेहतरीन भूमिका अदा की थी। आइए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गाना।

मैं उस जमाने में भी ज्यादा रुचि मेरी पेंटिंग वगैरह में थी, मैं पेंटिंग बहुत करता था, फोटोग्राफी, ये ब्रॉडकास्टिंग में बड़ी दिलचस्पी थी मेरी। मैं मॉस्को रेडियो के लिए काफ़ी साल काम करता रहा एज एन अनाउंसर। ये रेडियो मॉस्को है, अब आप देश विदेश के समाचार सुनिए। ये स्क्रीन कैमरे के सामने एक्टिंग करना किसी हद तक ज़्यादा आसान है, पिताजी भी मेरे यही कहा करते थे। वो भी मुझे कहते थे कि बेटे मैंने एक्टिंग अगर सीखी है तो रेडियो पर सीखी है, जो मैं बीबीसी में माइक्रोफोन के सामने बैठ के एक्टिंग किया करता था वो प्लेस किया करते थे उस ज़माने में, और जो उससे मेरा तलफ़ुज़ ठीक हुआ, उससे मैंने बोलना सीखा, उससे मेरी आवाज़ ठीक हुई। और ये जो स्टूडियो में बैठकर श्रोता तो हमें सुन रहे हैं सिर्फ, बहुत दूर है मुझसे, उन्हें महसूस कर रहा हूँ मैं, मुझे देख नहीं सकते वो, इसलिए मैं सिर्फ अपनी आवाज़ के ज़रिए उन्हें मुतासिर कर सकता हूँ।

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने तमाम फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं और उनके अभिनय को आपने टीवी के पर्दे पर भी कई सीरियल्स में जरूर देखा होगा। उन्होंने अपने हर किरदार को साकार किया है और हम भी उनको यही शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपनी अभिनय यात्रा को निरंतर जारी रखें और अपने चाहने वालों का दिल बहलाते रहें।

0: दोस्तों, आज के फनकार थे फिल्म अभिनेता परीक्षित साहनी।
1: आज के फनकार।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, छाया गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

इस दिल की मंजिल तो तय है, जहां दिलदार का हसीन साया है। तेरे जलवों में गुम हैं आंखें, तुझे देखें या जमाने को, दिल इसी में भरमाया है।

दिन रात इसी सोच में डूबा है दिल कि कैसे मिले और कब मिले उनसे, और मिलने पर बस यही सोचने लग जाता है दिल कि अब क्या कहें उनसे।

बड़े खूबसूरत हो, हसीन हो, हमने तो कह दिया जहां से, ए यार करते रहेंगे तेरी तारीफें हैं जब तक ये सांसें।

हवाओं में गूंज रहे हैं तेरे मेरे उल्फत के अफसाने। खुश हैं ये जमीन और ये आसमान, लगे हैं मुस्कुराने।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी हैं। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने

0: Arlington in US tonight. In another round of 16 match, co-host US will face Belgium in Seattle tomorrow morning. England, Norway, Morocco and France have already entered the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा यहीं पर समाप्त होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।